वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी सहकर चैटर्जी। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की सोमवार, अक्टूबर माह की 1/12 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की आश्विन माह की 20 तिथि। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन

आइए दोस्तों, आप जुड़ते हैं अपने दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज This is your time, this is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत

हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2-471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जल डमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरिज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। इससे पहले आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे हिंदी समाचार। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित खेती की बातें कार्यक्रम से। श्रोताओं, ये किसान भाइयों को समर्पित कार्यक्रम है। आज हम इसमें सुनेंगे समेकित कीट प्रबंधन। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
1: किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में बातें समेकित कीट प्रबंधन की। जी हाँ किसान भाइयों, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों और आधुनिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी भरपूर व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पर्यावरण का दूषित होना, खाद्य पदार्थों में रासायनिक कीटनाशी का अवशेष पाया जाना और गौण कीटों का प्रमुख कीड़ों का रूप लेना। किसान भाइयों, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रासायनिक कीटनाशी के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। फलतः पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और किसानों को हानि उठाना पड़ रहा है। इसलिए टिकाऊ खेती के लिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी बना रहे, और इसके लिए समेकित कीट प्रबंधन कर आर्थिक लाभ को बनाए रखा जा सकता है। समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत अंगीकृत की जाने वाली जो उन्नत तकनीक है वो हम आपको बता दें। सबसे पहला कृषि कार्यगत नियंत्रण की हम बात करते हैं। इस पद्धति में किसानों द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्यों जैसे खेतों की गहरी जुताई, खरपतवार को नष्ट करना, खेतों में सड़ा हुआ गोबर, कंपोस्ट एवं करंज की खली का व्यवहार करना, अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग करना, समेकित उर्वरक का प्रयोग करना, स्वस्थ एवं उपचारित बीजों का व्यवहार करना, सिंचाई का प्रबंध करना, फसलों की उचित समय पर बुआई और कटाई, इन तरीकों को अपनाने से लागत में किसी तरह से वृद्धि भी नहीं होती है। इसलिए किसानों को समेकित कीट प्रबंधन से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जैविक नियंत्रण की बात करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली में कीड़ों का नियंत्रण उनके प्राकृतिक शत्रुओं के द्वारा स्वतः ही होते रहते हैं, पर विकट परिस्थिति में कीड़ों की संख्या अधिक होने पर परजीवी और परभक्षी कीड़ों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ता है ताकि दुश्मन कीड़ों की संख्या को कम किया जा सके। इसलिए जैविक नियंत्रण कार्यक्रम में परजीवी और परभक्षी कीड़ों के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, अब बातें घरेलू कीटनाशकों के प्रयोग की। घर में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर कीड़ों की संख्या को आप कम कर सकते हैं। इनके प्रयोग से लागत में कमी होती है और पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाने के तरीके में आप एक बाल्टी लें और नीम की पत्तियों

0: से उसे भर दें और उसको पानी में डुबोकर 4 दिन के लिए छोड़ दें। 5वें दिन नीम की पत्तियों को छांटकर मिश्रण तैयार कर लें और घोल को छानकर थोड़ा सा साबुन का घोल मिलाएं, उसके बाद छिड़काव करें। इसके कारण बहुत से कीड़ों की संख्या कम हो जाती है। नीम के बीज से कीटनाशी बनाने के लिए आप 1 किलोग्राम नीम के बीज को धूल में परिवर्तित कर लें। धूल को 20 लीटर पानी में मिलाकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दें। सुबह अच्छी तरह मिलाकर छान लें। छानने के बाद घोल में 30 ग्राम साबुन का घोल मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। नीम के बीज से निर्मित कीटनाशी अधिक प्रभावशाली होता है और अनेक प्रकार के कीड़ों के नियंत्रण में सक्षम भी होता है। हरा तीता मिर्चा और लहसुन की कीटनाशी भी आप बना सकते हैं। इसमें आप 3 किलोग्राम हरा तीता मिर्चा ले लें। मिर्चों के डंठल को हटाकर पीसकर 10 लीटर पानी में डुबोकर रात भर के लिए छोड़ दें। दूसरे बर्तन में 0.5 किलोग्राम लहसुन को कूचकर 250 मिलीलीटर किरासन तेल में डुबोकर रात भर छोड़ दें। सुबह में दोनों घोल को अच्छी तरह मिलाकर छान लें। 1 लीटर पानी में 75 ग्राम साबुन का घोल बनाकर घोल को एक साथ मिला दें। 2-2.5 घंटा स्थिर होने के बाद घोल को आप फिर छान लें। इस घोल में 70 लीटर पानी मिलाने के बाद फसलों पर छिड़काव करें। यह कीटनाशी गोभी की कीड़ों के अलावा अन्य फसलों में लगने वाले पिल्लू को भी नियंत्रित करता है। कीटनाशक रसायनों का प्रयोग अगर करना हो किसान भाइयों, तो आवश्यकता होने पर ही सुरक्षित कीटनाशक का व्यवहार उचित समय और उचित मात्रा में करें। प्रचलित कीटनाशक रसायनों के नियंत्रण के मुकाबले समेकित कीट प्रबंधन से कई लाभ देखे गए हैं, जैसे यह एक टिकाऊ और प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों पर आश्रित होने का लाभदायक है। यह पर्यावरण को शुद्ध करने में मददगार होता है, मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, कीड़ों में रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम करने में सहायक होता है, मित्र कीट और लाभदायक जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। वास्तव में किसान भाइयों, इस प्रकार समेकित कीट प्रबंधन अपनाकर हम अपनी भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रख सकते हैं, साथ ही गुणवत्ता वाली फसल को उत्पादित कर बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 MHz पर। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 295,
2: एपिसोड नंबर 295 295।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्रीराम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं चिंतन कार्यक्रम से और सुनते हैं जीवन प्रबंधन एक कला। आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी निर्मला तिवारी का है।

जीवन एक कला है और इसे आनंद पूर्वक सीखना और जीना चाहिए। जीवन जीने की कला किसी भी कला, विद्या, प्रतिभा से बड़ी होती है। अन्य कलाओं और विद्याओं में हमारा सीखने और जानने का केंद्र उसके संदर्भ में विषय होता है, जबकि जीवन विद्या में हम स्वयं को जानते हैं, समझते हैं और उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। इसके केंद्र हम स्वयं होते हैं। स्वयं के अस्तित्व का हम अध्ययन करते हैं और जीवन जीने की यही सच्ची कला है, यही आध्यात्म है। जीवन को समुचित और ठीक तरीके से समझ लेना किसी भी कला और विद्या से सर्वोपरि है, और इससे भी बड़ी बात है अपनी क्षमताओं को पहचान कर उसका उपयोग करने की कुशलता, और इसे ही हम कहते हैं जीवन प्रबंधन। प्रतिभाएं निसंदेह प्रभु की दी हुई वरदान होती हैं। क्षेत्र विशिष्ट की प्रतिभाओं की अभूतपूर्व जो क्षमता होती है, इसे हम बेशक अपने अनुसार ढाल सकते हैं। साहित्यकार की संवेदना से जो कविताएं उपजती हैं, छंद किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को संवेदित करने में सक्षम होते हैं। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक मूर्तिकार बेजान प्रस्तर खंड में जीवंत प्राण भर देता है। चित्रकार की आड़ी टेढ़ी रेखाएं एक नवीन सृष्टि को जन्म देती है। वास्तुकार मूर्तिकार ये अपनी अपनी कल्पनाओं को ऐसे उकेरते हैं कि सब कुछ जीवित और मुखरित होने लगता है। आधुनिक समय में भी प्रतिभाओं की कार्य कुशलता अपूर्व और अनोखी होती है। हम सोच सकते हैं, हमारी कल्पनाएं हम उसे उकेर सकते हैं एक कोरे कागज पर। आधुनिकतम जो भी चीजें होती हैं उसे हम अपने अनुसार ही आगे ले जाते हैं। प्रतिभावानों की ऊर्जा की दिशा अपने विषय में सिमट जाने से जीवन एकाकी हो जाता है और आवश्यक अपरिहार्य चीजें अछूती रह जाती हैं। यदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की

क्षमताओं और सामर्थ्य का कुशल नियोजन प्रबंधन संभव नहीं है, तो यह भी संभव है कि जीवन को भी इसी ढंग से देखा परखा समझा जाना चाहिए और जिया जाना चाहिए। जीवन के प्रति इतनी ही कुशलता से प्रबंधन किया जाना चाहिए कि हमारी जिंदगी बड़े सलीके से आगे चले, क्योंकि जीवन प्रबंधन यदि नहीं है तो फिर हमारा समय यूं ही व्यर्थ बीत जाता है और फिर हम पछताते रह जाते हैं क्योंकि समय पर कोई कार्य हम नहीं कर पाते हैं। जीवन जीने की कला हर किसी को नहीं आती है। कई लोग हैं कि अपनी छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, अपार खुशियां हैं उनके पास, फिर भी वो दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें जीवन जीने की कला नहीं आती है। छोटी छोटी बातें हमें शांति पहुंचाए, सुख दे, इसके लिए आवश्यक है कि हमें संतोषपूर्वक रहना चाहिए। यदि हमारे अंदर शांति है, संतुष्टि है, तो फिर हम जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं और यदि ऐसा नहीं है तो अपार संपत्ति होते हुए भी हम विचलित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर और पाने की लालसा बनी रहती है जो जीवन को अव्यवस्थित कर देती है। इसलिए जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जिसने इसे सीख लिया उसका जीवन सुंदर हो जाता है और वह शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जीता है। इसलिए जीवन जीने की कला सीखिए, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना से। आज के हमारे कलाकार हैं नरेंद्र चंचल।

0: आपने सुना नरेंद्र चंचल की आवाज में भक्ति संगीत। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा से। सुनते हैं भेंटवार्ता अस्थमा कारण एवं उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय।
1: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
2: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूं कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं ना थी।
1: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
2: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
1: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
2: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
1: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
2: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके

0: गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूंगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
1: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेनी पड़ेगी, तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
0: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं। इन्हेलर केवल एक दवा पहुंचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है, तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदि होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपकी इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए, और एक इन्हेलर ख़त्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आज कल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण है डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
0: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है, तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था, आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है, कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है, तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
1: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
0: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पर भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पर भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए, यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज के दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, अस्थमा कारण एवं उपचार। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं अपने दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं सबसे पहले संस्कृत समाचार, उसके बाद हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार। इसके बाद दोस्तों 7:10 पर हम फिर से एक बार दिल्ली से वापस जुड़ेंगे।

आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और सुनेंगे आज के प्रातःकालीन सभा में आगे होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। और उसके बाद दोस्तों 7:15 से हम सुन सकेंगे कार्यक्रम पलाश, जो लोकगीतों का कार्यक्रम होगा और इसमें हम सुनेंगे इग्नेश कुमार एवं साथियों की आवाज़ में तथा जानकी देवी एवं साथियों की आवाज़ में कुछ लोकगीत। तो आइए सबसे पहले जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रभाति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000,000,000,000 रूप्यकाणां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु मार्ग रेल परिवहनं पत्तन मूलभूत संरचना पेट्रोलियम क्षेत्रम् अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति, यस्मिन् 7,30,000,000,000 रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग कार्याणि चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं रेल स्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमस्ति। सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः सम्पर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति, उद्योग व्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते, राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीय यात्रा संस्मरदा श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकारप्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्। प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी मद्रास परिसरे सुधा गोपालकृष्णन् मस्तिष्क केन्द्रम् अपि राष्ट्राय समर्पितम्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीयचरणस्य पूनमल्ली वडपलनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 9,00,000,000,000 रूप्यकैः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्णविश्वम् उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्वेषयति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिन्दू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयन्ती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमन्त्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति।
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट्स का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
0: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैधनिगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा मेट्रोसेवा

0: सेवायाः समयानुसारं सञ्चालनम् अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरणसम्बद्धयाचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इन्दौरनगरस्य होल्कर क्रीडांगणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
3: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
2: चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
3: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
2: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर है 800-2471-234 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जल डमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वाल्थोरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 2 लापता है। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कल होर्मुज़ जलडमरू मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की निंदा की है।

सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रिटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये युद्धविराम तुरंत लागू हो गया है। इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 223 रन बना लिए। अभिषेक वर्मा ने 69 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट सैकत चैटर्जी। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद हम सुनेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। पलाश में आज हमारे कलाकार होंगे इग्नेश कुमार एवं साथी, तथा जानकी देवी एवं साथी। पलाश खत्म होने के बाद सुबह 7:45 से हम सुनेंगे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। स्वर सरिता के आज के हमारे कलाकार होंगे जगजीत सिंह। सुबह 8:00 दोस्तों हम जुड़ेंगे अपने दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे समाचार प्रभात, जबकि 8:15 पर सुन पाएंगे मॉर्निंग न्यूज, जो दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। 8:30 पे हम रांची केंद्र से जुड़कर प्रादेशिक समाचार सुन पाएंगे। दोस्तों 8:45 पर हम फिर से वापस आएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर, जुड़कर सुनेंगे पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। साथियों, गीत गुंजन समाप्त होने के बाद सुबह 9:00 हम आकाशवाणी केंद्र की प्रसारण सुनेंगे जोहार पलामू। जोहार पलामू के बाद 9:30 से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम सुन पाएंगे उमंग की कड़ी संख्या 1391। इसके बाद दोस्तों सुबह 10:00 हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से, सुनेंगे हिंदी समाचार। 10:05 पे दिल्ली केंद्र से रिले अंग्रेजी समाचार सुनने के बाद हम जुड़ेंगे दूसरी माया नगरी मुंबई से और सुबह 10:10 से सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति उजाले उनकी यादों के। 11:00 का समय होगा रंग तरंग से जुड़ने का और 12:00 से सुनेंगे विविध भारती की सदाबहार प्रस्तुति यादों की महफिल। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:00 से लेकर शाम 5:30 तक हम लगातार बारी बारी से जुड़ेंगे अपने दिल्ली, रांची और मुंबई केंद्रों से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार, विविध भारती की प्रस्तुति सुरीला सफर, दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, सेहत नामा और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को। इसके बाद दोस्तों शाम 5:30

पर हम जुड़ जाएंगे या आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और सुनेंगे अपने रेडियो साथी से सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए दोस्तों जुड़ते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश के साथ। आज हम पलाश के तहत सुनेंगे इग्नेश कुमार एवं साथियों को तथा जानकी देवी एवं साथियों को।

Sita

0: आइए श्रोताओं, पलाश कार्यक्रम के तहत अब सुनते हैं जानकी देवी एवं साथियों को।
1: राधा सज धज कर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, परंतु जब कृष्ण नहीं आते हैं तो वो बेचैन होकर अपने श्रृंगार को तोड़ देना चाहती है। स्वर है जानकी देवी और साथियों का।
2: लाली लाली तारंगे, लाली लाली तारंगे, कुसुमिता सारी भाई बसिया के ललकारी, बसिए सब दह दे।

0: लोक गीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है नागपुरी लोक गीत, स्वर है जानकी देवी और साथियों का। पहले गीत में किस्म किस्म के फूलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, गेंदा, गुलाब, कचनार, जूही, बेली, कमल, केवड़ा, कनैली जैसे फूलों को देख कवि का मन आनंदित है। राग दोहरी डमकच के इस गीत को सुनिए जानकी देवी और साथियों के स्वर में।
1: धाधा की धावैया फूले, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारा सहो, धाधा की धावैया फूले।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में ही अब सुनिए एक हरिया डमकच राग पर आधारित लोकगीत। इस गीत में कवि कह रहा है, माघ महीने के आंधी तूफान और बर्फबारी ने बसंत के आगमन का संकेत दे दिया है। खिले खिले फूल, सुगंधित बयार और कोयल की कूक वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं।
1: या गेला का आंधी धुका, आ गेलक पथल पानी, आ गेलक आंधी धुका, आ गेलक।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम पलाश। पलाश के तहत सबसे पहले आपने सुना इग्नेश कुमार एवं साथियों को, उसके बाद जानकी देवी एवं साथियों को। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए स्वर सरिता कार्यक्रम के तहत सुनते हैं जगजीत सिंह को।

यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र। आपने सुना लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश और सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वर सरिता। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्र से। बारी बारी से सुनते हैं समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: आपके साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर दो दिन में दूसरे हुती हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। जिबूती तट के पास एक नाव पलटने से 147 लोगों की मौत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री मोदी ने
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए

0: लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
1: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
1: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
3: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
1: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन दांत खांच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-471-234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
1: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडब्रू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01123104 8 01 23 7 1 7 1 7। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। YouTube पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में

0: distribute 1,300 e-autos to women and transgenders under Durga scheme. One person killed and 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days. US President Donald Trump announces an energy ceasefire between Russia and Ukraine with immediate effect. 139 people killed after overcrowded boat capsized off Djibouti coast. And in cricket, India beat West Indies by 14 runs in the third T20 international to take 2-1 lead in the 5-match series. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है. मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर एवं 100.5 एफएम पर 8:30 हो रहे हैं. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.
2: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए. अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए. 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार.
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
2: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए. इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है. वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए. 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार.
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवाओं में चुनौतियों का समाधान देने की असीम क्षमता. विकसित भारत का सपना पूरा करने में युवाओं पर जताया विश्वास. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू करने का लिया निर्णय. 50 लाख टन धान अधिप्राप्ति का रखा लक्ष्य. दुर्गा पूजा के मद्देनजर हजारीबाग पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान. छापेमारी में सैकड़ों लीटर देसी शराब बरामद. पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की. झारखंड में अगले कुछ दिनों तक तापमान रहेगा स्थिर. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया, इस साल एलनीनो के प्रभाव से झारखंड में नहीं पड़ेगी अधिक ठंड. और क्रिकेट में भारत ने कल तीसरे T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 14 रनों से हराया. भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारत के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है. श्री मोदी कल चेन्नई में जय गोपाल गारुदिया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में संबोधित कर रहे थे. उन्होंने युवाओं से अपनी क्षमता का प्रयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक प्रस्तावित मार्च पर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आदेश सी. अग्रवाल ने आपत्ति जताई है. राहुल गांधी को लिखे पत्र में डॉ. अग्रवाल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव और बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रखा जाना चाहिए. एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में हो रहे आंदोलन को लेकर प्रदेश भाजपा ने कड़ा एतराज जताया है. प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कांग्रेस के आंदोलन को विरोधाभास बताया. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने दिल्ली में आंदोलन को लेकर आरोप लगाया कि देश में विरोध की आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है.
5: कल जो दुर्घटना सामने देखने को मिला, बहुत दुर्भाग्यजनक है. पूरे देश में दावानल की तरह यह आग फैल रही है. ये देशव्यापी अब आंदोलन हो चुका है. इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि एक तरफा कार्रवाई कर रहा था उसे पद से हटाना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए.
4: गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर विभिन्न पार्टियों ने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. पीरटांड में आजसू पार्टी की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन.

0: आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि पीरटांड का ऐतिहासिक महत्व है, यहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आजसू के वरिष्ठ नेता हरेलाल महतो के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि 25 वर्षों की दोस्ती समाप्त हुई है, इस पर मंथन जरूरी है।
1: पीरटांड झारखंड का एक हृदय स्थली है, यहाँ एक पवित्र स्थली है जो तपोवन के रूप में है। संताल का पूर्व पहाड़ है, वो पूजनीय जगह है। इस एरिया में विचारों का मिलाप हुआ है, इस एरिया में डर और भय का समय भी रहा है, तो इस चुनौती के बीच में लोग कैसे रह रहे हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। किसी व्यक्ति के राजनीति आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर में मानगो नगर निगम की सफाई और पेयजल व्यवस्था की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोगों को कचरा फेंकने के लिए निर्धारित स्थान की जानकारी नहीं दी जा रही है। सुपरवाइजरों की नियुक्ति के बावजूद सफाई और पानी की समस्या बनी हुई है। सरयू राय ने उपायुक्त से दोबारा बैठक बुलाने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करने की बात कही।
2: 32 या 36 सुपरवाइजर बहाल हुए हैं, सफाई कराएंगे, पानी पहुंचाएंगे, वो कहाँ है आज, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैंने डीसीओ कहा, परसों मीटिंग बुलाए थे, फिर कहूंगा कि आपके मीटिंग का कोई असर नहीं हुआ, फिर दोबारा बुलाइए। राज्य सरकार से ये लिखिए कि सरकार इनको पर कार्रवाई करे और दूसरा इनके बदले में आदमी दे, जहाँ पानी नहीं जाता और बिल चला जाता है।
0: राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति की तैयारियां प्रशासनिक तौर पर तेज कर दी हैं। किसानों से 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू की जाएगी। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीद का लक्ष्य 50 लाख क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने धान खरीद से लेकर परिवहन भंडारण तक नजर रखने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद में दुर्गा पूजा से पहले डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने कल देर शाम केंद्रवाड़ी से गया पुल, अंडरपास, पंपू तालाब समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। डीसी ने प्रमुख सड़कों को 3 से 5 दिनों में दुरुस्त करने और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था का निर्देश दिया। इधर डीसी ने बताया कि केंद्रवाड़ी सड़क पर दरार और गैस रिसाव को देखते हुए फिलहाल सिर्फ छोटे वाहन परिचालन की अनुमति दी जाएगी। दुर्गा पूजा को देखते हुए हजारीबाग पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। कुल 28 टीमों में शामिल 198 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने 68 ठिकानों पर छापेमारी कर 375 लीटर देसी शराब बरामद की और 300 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया। पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण और खरीद बिक्री की जानकारी देने की अपील की है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक कैथ लैब की सुविधा शुरू होगी। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 4 महीने के भीतर नए और अत्याधुनिक कार्डियक केयर यूनिट और कैथ लैब निर्माण की स्थापना की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे रिम्स में दबाव कम होगा।
3: कैथ लैब में 8 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वॉल्व रिप्लेसमेंट, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम हमारे सदर अस्पताल में डील हो। 5 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट पदस्थापित हैं। मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत जो भी वैसे मरीज हैं, बीपीएल से रिलेटेड जो भी मरीज हैं, पब्लिक को निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा।
0: मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड में फिलहाल तापमान स्थिर रहेगा। इसके बाद तापमान में मामूली गिरावट आएगी। अगले 3-4 दिनों में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत ने कल रात इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्ट इंडीज को 14 रनों से हरा दिया। 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। कल की जीत के साथ भारत 5 मैचों

की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रांची में ट्रिपल आईटी में एक छात्र की संदिग्ध मौत के विरोध में रात भर हुए प्रदर्शन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस पर

0: ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, नागरिकों के प्रदर्शन का अधिकार पुलिस एक्ट के दायरे से बाहर नहीं। और हिंदुस्तान ने बोकारो के ईएसएल के प्लांट में गैस रिसाव से दो की मौत होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवाओं में चुनौतियों का समाधान देने की असीम क्षमता, विकसित भारत का सपना पूरा करने में युवाओं पर जताया विश्वास। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू करने का लिया निर्णय, 50 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का रखा लक्ष्य। दुर्गा पूजा के मद्देनजर हजारीबाग पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, छापेमारी में सैकड़ों लीटर देसी शराब बरामद, पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक तापमान रहेगा स्थिर, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया, इस साल अल नीनो के प्रभाव से झारखंड में नहीं पड़ेगी अधिक ठंड। और क्रिकेट में भारत ने कल तीसरे T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 14 रनों से हराया, भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली वो रांची केंद्र से प्रसारित समाचार वो अन्य कार्यक्रम। दोस्तों आइए अब शामिल होते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और शुरू करते हैं सुरों का सुहाना सफर गीत गुंजन।

आज गीत गुंजन कार्यक्रम में मैं सहकर आपके लिए लेकर आया हूँ संगीतकार मदन मोहन के कुछ बेमिसाल गीतों को। हम आपको गीत तो सुनाएंगे ही, साथ ही मदन मोहन जी के बारे में बताएंगे कुछ रोचक बातों को भी, ताकि सुरों का यह सफर ताजगी से भरा रह सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं संगीतकार मदन मोहन जी का असली नाम क्या था, वो कहां और कब पैदा हुए थे, संगीतकार बनने से पहले वो क्या करते थे, लता जी के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? हम ये सब आपको बताएंगे, पर आइए उससे पहले सुनते हैं फिल्म वो कौन थी से उस गीत को, जिसे संगीत तो दिया था मदन मोहन जी ने, जबकि लिखा था राजा मेहंदी अली खान और आवाज थी लता मंगेशकर की।

हैं गीत गुंजन में संगीतकार मदन मोहन के अनमोल गीतों को। मदन मोहन का असली नाम मदन मोहन कोहली था और उनका जन्म 25 जून 1924 को इराक के बगदाद में हुई थी। उनके पिता इराकी पुलिस बल के महालेखाकार पद पर कार्यरत थे। 1932 में उनका परिवार इराक से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में लौट आए थे। फिर मदन मोहन जी ने 1943 में सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए थे। बताते चले कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक सैनिक बने और उन्होंने वो कर दिखाया। पर वो नौकरी उन्हें रास नहीं आई। 1946 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी शुरू की। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में संगीतकार के रूप में काम करने से पहले उन्होंने एसडी बर्मन के सहायक के रूप में भी काम शुरू किया था। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फिल्म वो कौन थी से उस गीत को जिसे लिखा था राजा मेहंदी हसन खान ने, आवाज है लता मंगेशकर की और संगीत दिया था मदन मोहन ने।

दोस्तों, मदन मोहन जी की रफी साहब से खूब पटती थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने रफी साहब से कई बेमिसाल गीत भी गवाए। लता जी के साथ मदन मोहन जी का भाई बहन का रिश्ता था जो अंत तक निभा। कहा जाता है कि पहली बार मदन मोहन जी ने ही राखी लेकर लता दीदी के पास गए और कहा कि इसे मेरी कलाई में बांध दो, और इस तरह से लता और मदन मोहन के रिश्ते बने। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म भाई भाई से उस अमर गीत को जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और आवाज थी गीता दत्त की, जबकि संगीत आप खुद समझ गए होंगे कि मदन मोहन जी की ही थी।

0: नहीं है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत गुंजन और हम सुना रहे हैं आपको मदन मोहन के म्यूजिक डायरेक्शन में बने कुछ शानदार गीतों को। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं मदन मोहन जी के जिंदगी के कुछ जाने अनजाने किस्सों को। आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि मदन मोहन जी का जन्म इराक के बगदाद शहर में हुआ था और वो दिन था 25 जून, साल था 1924। लेकिन मदन मोहन जी का निधन मुंबई में हुई थी 14 जुलाई 1975 को और उस समय वो 51 वर्ष के थे। दोस्तों, मदन मोहन जी की पत्नी का नाम शीला कोहली था। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम संजीव कोहली है, जबकि मदन मोहन जी के पिता के नाम राय बहादुर चुन्नीलाल और माता के नाम भगवंती देवी था। श्रोताओं, आइए अब गीत गुंजन के बाद हम प्रवेश करते हैं एक और कार्यक्रम की दुनिया में जिसका नाम है जोहार पलामू।
2: जोहार पलामू।

आइए दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम के तहत सबसे पहले सुनते हैं कुछ जानकारियों की बातों को। तो आपको बताते चले दोस्तों कि ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 12 अक्टूबर वर्ष का 285वां दिन है, यानी कि साल में अभी और 80 दिन शेष बचे हैं। आइए दोस्तों, अब डालते हैं एक नज़र 12 अक्टूबर की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो विश्व इतिहास के पन्नों पर अपनी

जगह दर्ज कराई है। 1860 ईस्वी के 12 अक्टूबर को ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने चीन की राजधानी बीजिंग पर कब्जा जमाया। 12 अक्टूबर 1992 को मिस्र की राजधानी काहिरा में भूकंप से करीब 510 लोगों की मौत हो गई, जिसका पूरा विश्व ने शोक मनाया। 1997 के 12 अक्टूबर को अल्जीरिया के सीदी दाऊद में 43 लोगों का नरसंहार हुआ। 1999 के 12 अक्टूबर को पाकिस्तान में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हुए। संयुक्त राष्ट्र की गणना के अनुसार इसी दिन 6 अरबवा शिशु का सरवाए में जन्म हुआ। इसी के साथ दोस्तों 1999 के 12 अक्टूबर को ही अंतरिक्ष अन्वेषण जान गैलीलियो बृहस्पति ग्रह के ज्वालामुखीय चंद्रमा IOA के नज़दीक पहुंचा। 2000 के 12 अक्टूबर को अंतरिक्ष जान डिस्कवरी फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। 2001 के 12 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। 2002 के 12 अक्टूबर को यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने पाकिस्तान में संपन्न चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और इसी दिन बाली के एक नाइट क्लब में आतंकवादी हमले में 202 लोगों की मौत हो गई, जो पूरे विश्व के लिए दर्दनाक हादसा था। 2007 के 12 अक्टूबर को अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अलगोर व संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पैनल के संयुक्त रूप से वर्ष 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 2008 के 12 अक्टूबर को रायबरेली के लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री के लिए 3 माह पहले दी गई लगभग 500 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ली और केरल की सिस्टर अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत बनी। 2013 के 12 अक्टूबर को वियतनाम की एक पटाखा फैक्ट्री में बम धमाके से 15 लोगों की मौत हो गई। 2014 के 12 अक्टूबर को इबो मोरलेस दोबारा बिल्विया के राष्ट्रपति चुने गए। आइए दोस्तों, इसी जानकारी के बातों के साथ अब रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

आइए दोस्तों अब डालते हैं एक नजर 12 अक्टूबर को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। 1864 ईस्वी के 12 अक्टूबर को बंगाल के प्रमुख बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला कामिनी राय का जन्मदिन है। पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी के अनुयायी बनी पेरिन बेन का जन्म 12 अक्टूबर 1888 है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम का जन्म 12 अक्टूबर 1908 को है। ड्रॉन बैडमिन के जमाने के महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय मार्चेंट का जन्म 12 अक्टूबर 1911 है। भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध नेता विजया राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 है। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पंजाब के राज्यपाल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 है। प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार नीदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 है। भारत के प्रसिद्ध सितारवादक शिवनाथ मिश्रा का जन्म 12 अक्टूबर 1943 है। समकालीन गीतकार एवं गजलकार जो अपने मौलिक लेखन और चिंतन के लिए जाने जाते थे, शिव कुमार बिलगरामी का जन्म 12 अक्टूबर 1963 है। समाजशास्त्री किरण मिश्रा का जन्म 1980 के 12 अक्टूबर को है। भारतीय सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ अकबर हैदरी का जन्म 1894 के 12 अक्टूबर को है। जबकि दोस्तों 12 अक्टूबर को निधन हुए व्यक्तियों में बिहार और कर्नाटक के राज्यपाल पी के वेंकट सुबैया का नाम आता है, जिनका निधन 12 अक्टूबर 1993 को हो गया था। जबकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन 12 अक्टूबर 1967 को हो गया था। आइए दोस्तों जानकारी के इन बातों के साथ फिर से एक बार नजर रखते हैं, सुनते हैं एक फिल्म गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ और सुनते हैं उमंग की कड़ी संख्या 1391।

0: सबंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान वर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञान वर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुचर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं विमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है, तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था, आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का

0: डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरॉन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों, ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
6: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है।
7: बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों, मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों, कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
6: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।

0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
1: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है।
2: असम में मेरे दादा रहते हैं।
3: और एक और मैं बताऊं, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों, हमारे देश में

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफल मैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई क्यों नहीं बताया था, जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी क्या हुआ।
0: हाँ तो संजय बेटा उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के?
2: साथियों ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।

0: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
1: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
2: चलो!

0: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। ये इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: साथियों, आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
3: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है।
4: वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
2: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे, छुपते छुपाते, रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
3: बिल्कुल ठीक, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
2: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहा पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
2: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
4: आगे बढ़ो, बच लो, जवाब दो, फायर करो।
2: राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
5: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
6: बिल्कुल ठीक।
5: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।
3: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गईं।
1: कार्बाइन खाली हो गई है।
0: अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो, ठहरो।
1: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
3: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
2: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
5: दुर्गा माता जय।
2: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
3: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और

0: 확인이 라기
1: 받으라 해! 받으라 해! 가야! 어, 가 맞대요! 어느 것 대로! 입만 따뜻 사물이요! 하나 삼기요! 입만 삼고 입밭 갈라 이 박애가! 말아! 말아!
2: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
3: भाई जी आप बहुत घायल हो गए। आपको आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली है।
4: आपको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ चलते हैं। मरहम पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
3: आओ भाई जी।
5: नहीं मानसी। नहीं मानसी।
3: आओ तो सही।
5: मेरी चिंता मत करो। मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
4: लेकिन जी, लेकिन
5: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
4: अरे
5: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
3: आप सुनो,
5: छुपा हुआ ना
3: आप
5: कोई बचने ना पाए। जाओ चेक करो। चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। कुछ नहीं होगा मुझे। अरे जाओ आप।
2: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
3: संजय भाई इधर आ जा। संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
0: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
2: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
6: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार
7: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है, FM के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे हिंदी वो अंग्रेजी समाचार। इसके बाद दोस्तों हम जुड़ेंगे मुंबई केंद्र से और सुनेंगे वहां से प्रसारित कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों को नए और बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती

0: समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वीमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। पुलिस ने वाहन चालकों से ये भी कहा है कि वे प्रभावित इलाकों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचें। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आज सुबह अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के इलाके से दागी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 2 मिसाइलों का पता लगाया है। मंत्रालय के अनुसार ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने देश में विकसित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों को सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi highlighted the global potential of India's youth during the Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai. Mr. Modi asserted that the global community is actively searching for innovative answers to emerging challenges and expressed absolute confidence that India's youth possess the talent and potential to provide them.
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए जो नए सॉल्यूशंस चाहिए उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस
2: Delhi government is set to launch the Durga e-auto scheme to create safe, dignified and sustainable self-employment opportunities for women and transgender persons. The Durga scheme, that is, Driving Upliftment and Rozgar for Women and Transgender Initiative, will also promote clean and inclusive mobility across the national capital. The government has informed that the scheme will facilitate the allocation of 1,300 pink electric autos in its first phase, of which 1,170 electric autos will be reserved for women beneficiaries and 130 for transgender beneficiaries. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in New Delhi. In its advisory, the Traffic Police informed that subject to the prevailing situation, traffic diversions may be enforced at some major junctions and stretches of Delhi. The affected stretches include Minto Road, roundabout of Mandi House, Guru Nanak Chowk, Lodhi Road flyover and others. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, informed that the entry and exit at 6 metro stations will remain closed till 4 p.m. today in New Delhi due to security reasons. These stations are Patel Chowk, Janpath, Rajiv Chowk, Mandi House, Central Secretariat and Barakhamba Road. DMRC said that interchange facility will remain available at all the concerned metro stations. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings on the occasion of the second day of Navratri today. In a social media post, Mr. Modi said that the second day of Navratri is dedicated to the worship of goddess Brahmacharini, the symbol of penance, sacrifice and resolve. The Prime Minister wished that goddess Brahmacharini bless everyone with courage and self-control. Defence Minister Rajnath Singh has paid tributes to socialist thinker and freedom fighter Dr. Ram Manohar Lohia on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Singh said that the life of Dr. Ram Manohar Lohia serves as an inspiration for the struggle for political integrity, social justice and the rights of the deprived. Heavy rainfall hit parts of New Delhi this morning. According to Indian Meteorological Department IMD, thunderstorms and lightning conditions will continue over the national capital till tomorrow. Weather agency also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Chhattisgarh today. The International Organization for Migration, IOM, has said that 139 people, including 15 children, have died after an overcrowded boat carrying 305 migrants capsized near Guher, north of Obok off the coast of Djibouti in East Africa. IOM reported that the vessel sank very close to the shore shortly after departing on Thursday night. 84 people remain missing as search and rescue operations continue and the agency warns the death toll could rise. More than 80 survivors, all Ethiopian nationals, were rescued. Local authorities moved them to the IOM Rescue Center in Obok, where they are receiving psychological support and medical care. In cricket, India defeated the West Indies by 14 runs in the third T20 international in Indore last night. Chasing 224 runs for victory, the West Indies managed to score 209 for 7 in their stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 10:10 और पूरे 15 सेकंड। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे,
1: जी
0: चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है,
1: हाँ
0: कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे हैं, कहीं लता जी का आलाप है।
1: हाँ
0: विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना,
1: क्या बात है
0: छह साढ़े छह सात मिनट का गाना है,
1: जी जी जी
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें, तो
1: हाँ
0: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
1: जी जी जी

0: यहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना। बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है कब तक क्षमा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े मिजरेटर ही होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े मिजर या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए मिजरेटर है ऐसा गाना, नए मिजरेटर मिजरेटर नहीं थे लेकिन पीछे अरविंदर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरविंदर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या
0: हमारे लिए फैलाई गई? ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है तो 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद

0: करना चाहता हूँ, जब याद की बदली
1: छाती, जब याद की बदली छाती
0: तो आँख मेरी भर आती है।
1: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह वाह क्या बात है। क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगी बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजर। तो कंपोजिशन ऐसी थी, जब याद की

0: कि इतने मुखड़ा है
1: जी,
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाए।
1: जरूर बिल्कुल सुनते हैं।

0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस, ये 1986 की फिल्म है।
0: जी जी
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चन प्रदेशी पंजाबी।
0: हाँ,
1: सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज
0: जी,
1: चन प्रदेशी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा,
1: तो उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी,
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहां से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की
1: पूरी थी,
0: स्मिता पाटिल और राजबब्बर,
1: राजबब्बर की फिल्म थी वो, उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था,
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि कैमरामैन थे।
1: कैमरामैन थे, यस,
0: ये बताइए।
1: कैमरामैन थे, क्या हुआ कि ये गाना जो है ना, दीदी का, लता जी का गाना
0: जी,
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है।
0: जी जी जी जी,
1: क्या लोग थे,
0: क्या बात है।
1: तो ये मैं गाना सुना रहा था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, दीदी का मैसेज आया
0: जी, लता
1: कल, हाँ कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो। क्योंकि मैं इस गाने के लिए एक महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था। सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था बस,
0: सिर्फ इतना, मेरे प्यार की उम्र हो
1: मेरे सर। फिर ये उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को
0: जी,
1: ताकि आदमी लेके, उन्होंने फोन तो हुआ नहीं करते, फोन तो मोबाइल थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे हम लोगों ने गाना बनाया, म्यूजिशियन बुक किए, सुबह दीदी आई, दीदी का पार्ट कर लिया हमने।
0: अच्छा अच्छा
1: दीदी के पार्ट हमने इस गाने में रिकॉर्ड कर लिए।
0: अब मेल वॉइस रह गई है,
1: अब मेल वॉइस कौन गाएगा, किसको गवाए, उसको गवाए, उसको गवाए, उसको गवाए, नहीं यार ये सब आवाजें जो है सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
0: फीमेल पार्ट है आपके पास,
1: फीमेल पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया, क्या लग रहा है गाना, जब वो साइलेंट हो जाए मेल की आवाज।

0: खाली म्यूजिक चल रहा है दिंग कड़क, और दीदी की
1: बोले
0: आवाज आ रही तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आके बैठते थे, मैंने कहा मन जी आप गाइएगा।
1: जबकि वो तो कैमरामैन थे ना,
0: कैमरामैन थे,
1: और गायकी शौकिया थी,
0: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था और एक किसी और म्यूजिक का भी गाना

0: तो मैं कहा ब्रह्मन जी आप गाओ। बोलते मैं कैसे गाऊँ इतना मुश्किल गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। उन्होंने घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा।
0: हाँ रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए, अच्छी आवाज लग रही है और नई आवाज लग रही,
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है।
0: वो आज भी हिस्ट्री है ये गाना,
1: और ये गाना बड़ा हिट है।
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है ये गाना।
1: जी
0: सुना जाए इसको।
1: जरूर आप थोड़ा गाएंगे।
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मैं काम करता हूँ इसको, आप जो है वो बजाएगा, मैं लोग आता हूँ।
1: जी ठीक है।

0: बारिश के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था हुस्न की वादियों में प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना था, बहुत अलग तरह का गाना था। फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तो याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे। तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं।
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी।
1: डिले भी हो गई थी और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत
1: पापा कहते हैं। हाँ, दोनों सेम डे रिलीज हुई थी।
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और बारिश हमारी पीछे रह गई।
0: जी जी जी,
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
0: जी जी जी,
1: लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में।
0: जी जी। अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है, तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं
1: जी।
0: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी

0: और
1: दिल तो पागल से शुरू होती
0: जी, दिल तो पागल है से। तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
1: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से।
0: जी।

0: मैं आपको सच बात बताऊं, आई एम एंजॉइंग दैट साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो।
1: जी दोनों काम अब आपको खुद ही।
0: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में, बड़ा
1: जी
0: मजा आया काम करने में। पेंटर बाबू क्लर्क हो गया, क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही,
1: हाँ
0: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कम्बिनेशन बन रहा था और बना भी, जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है। तो अभी देखिए गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है,
1: जी
0: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री वर्स है।
1: अच्छा
0: हाँ वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है, मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना
1: जी
0: ऐसे मनोज जी की लिखी हुई है वो।
1: गजब।
0: तो मनोज जी ने मुझे उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया, और घर आते ही वो शुरू हो गया।
1: अच्छा
0: हाँ घर आते ही मैं बाजे पे बैठा और वो शुरू हो गया। अब ये आप गाना सुनाइए लोगों को, ये गाना इस माइंड से सुनिए कि इस गाने में ना मुखड़ा है ना अंतरा है, कुछ नहीं है, फ्री वर्स है। वो फ्री वर्स को देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ये गाना बना है।
1: क्लर्क क्यों, तुमसे जो बात हुई
0: तुमसे जो बात, ये गाना
1: जरूर, ये गाना आप बोल रहे हैं तो जरूर हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये गाना।
0: जी।

जब चुपचाप

0: उत्तम जगदीश की जोड़ी बहुत ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाई?
1: इसको आप ईगो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए, यूनुस जी, मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
0: जी जी,
1: कभी नहीं मांगा। जितना भी आप मेरा आज काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
0: जी जी,
1: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
0: जी जी,
1: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो,
0: जी
1: वसंत देसाई हो, या चित्रगुप्त जी हो, या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने।
0: जी,
1: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
0: जी जी,
1: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट अच्छा करता है, उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा, एज ए अरेंजर काम बढ़ता चले गया।
0: जी,
1: फिर काम चलते चलते चलते चलते म्यूजिशियन हो गई, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं।
0: जी,
1: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए ही नहीं काम मांगने, और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है।
0: जी,
1: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं, और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर ली है तो मतलब ये तो टॉप एंड है ना।
0: जी जी,
1: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
0: काम आएगा।
1: बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली।
0: जी जी,
1: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: जी,
1: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा।
0: जी,
1: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चली नहीं थी,
0: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ।
1: और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ यहाँ पे।
0: जी,
1: पेंटर बाबू का जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है,

0: तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में, फिर बहुत कमाल का गाना हुआ। और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आर डी बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो वो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, मैंने कहा हाँ, तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहाँ से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तूने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
1: कायम रहेगी।
0: मेरे साथ कायम रहेगी, और संगीतकार तो आना जाना है, कभी आएंगे कभी जाएंगे।
1: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसकी भी एक दास्तान है
0: जी, इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको।
1: जी।
0: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है
1: जी
0: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है।
1: जी जी
0: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो
1: जी
0: चीज प्रूफ हो रही है आज।
1: बिल्कुल
0: एक चाय वाला करोड़ोपति बन गया, एक भेल वाला अरबोपति बन गया, एक वड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली, तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है।
1: जी
0: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का,
1: जी
0: लता मंगेशकर अवार्ड तो मुझे दिया गया। तो स्टेज पे मैंने बोला, मैं कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी।
1: जी
0: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तो कहाँ तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
1: हमने तो वायलिन दे दी
0: हमने तो तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है,
1: जी।
0: अभी गाड़ी को कहाँ तक ले जाता है। तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज इस स्टेज पे बैठ पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
1: क्या बात है
0: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड है, और लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और
1: जी
0: मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए,
1: जी
0: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर में भी एक अवार्ड लता मंगेशकर। तो मेहनत और आपका हाथ का हुनर
1: जी
0: ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।

0: डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
1: जी जी उन्हें वो
0: कहानी
1: वो बात की बात है। क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था, तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके,
0: जी
1: कंवल मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
0: जी
1: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: और उसकी स्टारकास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल, बहुत बड़ी फिल्म थी वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगल आजम याद है ना
0: जी,
1: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते हैं, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गाना हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं राइटर कवर जलालाबादी राइटर थे वो बैठे थे हम लोग। तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की, तो जगदीश 9 बजे आ जाते, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बजी कि जगदीश खन्ना ऑफ हो गए।
0: अरे अरे अरे
1: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग वीटिंग वहीं छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए।
0: अरे बाप रे।
1: और वहीं खत्म हो गए,
0: हार्ट अटैक आया।
1: और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे तो बड़ी खुशी थी, वो फिल्म बंद हो गई
0: जी,
1: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साईं बाबा का।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा जी ठीक है करते हैं। तो मैं घर गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूँ।
0: यस यस बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा जी ठीक है,

0: इसमें बात हुई और एक साल निकल गया. एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है.
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए. फिर उसके बाद दूसरा गाना बना, दूसरा गाना बना तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का
1: जी.
0: अंतरे उसने बनाए तो अंतरे मैंने बनाए
1: जी.
0: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया. अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है. तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा
1: जी.
0: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया. तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया हो, मैंने कहा मेरा. तो जगदीश का, जगदीश के पहले दो गाने हो गए, ये आपने बनाया, मैं कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 गाने रिकॉर्ड किए हमने
1: जी. उसमें से दो जगदीश जी के थे,
0: डेढ़ जगदीश का था,
1: डेढ़ थे जी हाँ.
0: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं
1: जी,
0: टिप्स वालों को क्या बन रहा है पता नहीं. मनोज जी बोले ये लिख लिया उत्तम, ये लिख लिया हो गया. नारायण अग्रवाल का एक गाना है
1: जी, जी.
0: तो दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, आती थी चले जाते थे. 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए. हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा ही मेरा है. और वो गाना, वो एल्बम हिट हो गई बहुत
1: जी. जी
0: दीदी की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है जी.
2: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला. आज आपने सुना इस श्रृंखला का चौथा भाग. रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक.
3: उजाले.

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: विविध भारती
2: रंग तरंग।
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ये नगमा चंदन दास की आवाज़ में, और इसे चंदन दास ने ही संगीतबद्ध किया, निदा फाजली के बोल।

0: हम सुन रहे थे सजदा एल्बम से यह नगमा, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया जगजीत सिंह ने और बोल लिखे निदा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे नगमे को जिसे लिखा निदा फाजली ने और गाया जगजीत सिंह ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

हम सुन रहे थे महबूब एल्बम से तलत अजीज की आवाज में निदा फाजली के बोलों को, जिसे संगीतबद्ध किया है तलत अजीज ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि है इजहार एल्बम से। सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने इसे गाया है, निदा फाजली ने इसे बोल दिए हैं और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत।

हम सुन रहे थे कतील शिफाई और मुमताज़ राशिद के द्वारा लिखे गए इस नगमे को, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है पंकज उदास ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जिसे पंकज उदास की आवाज़ में हम सुनने वाले हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्यार के गीत एल्बम से शुभा मुद्गल की आवाज में, जिसके गीतकार हैं अनिल पांडे और संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे शीशा एल्बम से यह नगमा जिसे मधुश्री ने गाया, गीतकार माया गोविंद और सीन ब्रदर्स ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: और कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
5: रंग तरंग
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
7: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
6: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
8: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
6: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

0: हम सुन रहे थे गीत आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और अनवर ने, निदा फाजली के बोल और संगीत खयाम का।
1: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे।

0: 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत आप तो ऐसे ना थे फिल्म से, हेमलता की आवाज में, निदा फाजली के बोल और संगीतबद्ध किया उषा खन्ना ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, जो कि है फिल्म स्वीकार किया मैंने से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। निदा फाजली ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे देव फिल्म का यह गीत विजेता पंडित की आवाज में, जिसे लिखा निदा फाजली ने, आदेश श्रीवास्तव ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत नाखुदा फिल्म से। लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ों में, गीतकार निदा फाजली और संगीतकार खयाम। आइए सुनते हैं अगला गीत सपने टू फिल्म से, संजीवनी भेलांडे की आवाज़ में। अनुज कपूर ने इसे संगीतबद्ध किया और बोल हैं निदा फाजली के।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, हरजाई फिल्म से, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

तारों में चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है, इसी का कल मोहब्बत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत चाहत फिल्म से कुमार सानू की आवाज में अनु मलिक के संगीत के साथ, जिसे बोल दिए निदा फाजली ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं? हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं एक और गीत निदा फाजली की कलम से निकला हुआ, जिसे संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने, जगजीत सिंह अलका याग्निक की आवाजों में, और फिल्म है तरकीब।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम लता।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से

0: गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शेल वॉटरक्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मामले में विपक्षी नेताओं से मिलने से किया इनकार।

0: इनकार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया, एसआईआर के तहत दस्तावेज जमा करने वाले वोटरों को स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज की प्रति देना होगा अनिवार्य। राज्य में शारदीय नवरात्र की धूम, दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। रामगढ़ जिले के चुटुपालू घाटी में कल रात भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। और मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिनों तक बादल छाए रहने और राज्य में कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की जताई संभावना, तापमान में कमी के संकेत नहीं। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मामले में विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक को अदालत जाने का अधिकार है और अदालत उनकी बात सुनेगी और कानून के अंतर्गत जो भी राहत बनती है वह देगी।
1: मेरे को कल लेटर मिला था, मैंने उसका कल रात में ही जवाब दे दिया है। मैंने कुछ रीजंस उसमें दिए हैं जिसके बेसिस पे मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि मैं मिल नहीं पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई भी पिटीशन, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य की अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मानवाधिकार आयोग को शिकायतों की जांच करनी चाहिए और व्यवस्था की कमियों की पहचान कर सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मुद्दों पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता उन पर संस्थागत स्तर पर ध्यान दिया जाए। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। उधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में प्रवीण सेवा संस्थान के दुर्गा पूजा पंडाल का बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने उद्घाटन किया। मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि भारत की बेटियों को सम्मान, प्यार और संबल देना ही सच्ची दुर्गा स्तुति है।
2: दुर्गा माँ के पंडाल का उद्घाटन करने के लिए आदित्यपुर जमशेदपुर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार मैं इस पूजा में इस पंडाल का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और यही मंगल कामना करती हूँ कि हम सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़े।
0: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के तहत दस्तावेज जमा करने वाले मतदाताओं को स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज की प्रति देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर और मोहर की जरूरत नहीं है। सिमडेगा के वार्ड नंबर 17 के पार्षद चंदन दे ने बताया कि अंचल कार्यालय की ओर से मतदाताओं से खतियान की छाया प्रति, वंशावली, वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर और मोहर के साथ मांगी जा रही थी। इसी संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी मांगी गई थी। राजधानी रांची के सभी 53 वार्डों में फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट बनाया जाएगा। मार्केट बनाने के लिए नगर निगम ने जिला प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। निगम के उप नगर आयुक्त ने सभी अंचलों के सीईओ को पत्र लिखकर सरकारी जमीन की विस्तृत सूची मांगी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। यह सफर जन सेवा से देश सेवा के अटूट संकल्प के साथ पूरा है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण पर संकल्पित

0: सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नए भारत की मजबूत आधारशिला बताया है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है।
0: लोहरदगा जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक अभिजीत कुमार और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक गणेश लाल बता रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना। इसलिए हमारी प्राथमिकता है हर बच्चा स्कूल आए, नियमित आए और स्कूल में अच्छी तरह सीखे। बच्चे की शुरुआती नींव मजबूत होगी तो आगे की पूरी पढ़ाई मजबूत होगी।
3: नई शिक्षा नीति बच्चों में व्यवसायिक कौशल और डिजिटल साक्षरता, रोजगार के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह नीति क्लास 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप को अनिवार्य इसमें बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों को का एकीकरण किया गया है।
0: वहीं लाभुक छात्र ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभ के अनुभव को साझा किया।
4: यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को बदला है। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों में व्यवहारिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से इसमें 5+3+3+4 का एक नया ढांचा तैयार किया गया है। वो विद्यार्थी मातृभाषा में आसानी से पढ़ सकता है।
0: कोल्हान और आसपास के सीमावर्ती वन क्षेत्र में जंगली हाथियों की चहलकदमी बढ़ गई है। चाकुलिया के घने जंगलों में 15 हाथियों का एक झुंड है, जबकि ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में 2 हाथियों की मौजूदगी है। सरायकेला के वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी ने बताया कि वन विभाग नजर बनाए हुए है ताकि कोई जनहानि न हो।
5: चाकुलिया रेंज में 15 हाथी का ग्रुप जंगलों में घूम रहा है और जिसके पीछे हम लोगों ने QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम लगाया हुआ है, जिससे हाथी मानवद्वंद में कमी आई है। बंगाल और झारखंड के बीच में एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच किया गया था, लगभग भर गया है। हायर अथॉरिटी से भी आदेश आया है कि उसे भर देना है ताकि हाथियों का आवागमन में कोई परेशानी न हो।
0: रामगढ़ जिले के चुटुपालू घाटी में कल रात भीषण सड़क दुर्घटना में कार पर सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,35,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक बादल छाए रहने, राज्य के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि हालांकि तापमान इस दौरान स्थिर रहेगा, इसके बाद तापमान में मामूली गिरावट शुरू होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मामले में विपक्षी नेताओं से मिलने से किया इनकार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया, SIR के तहत दस्तावेज जमा करने वाले वोटरों को स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज की प्रति देना होगा अनिवार्य। राज्य में शारदीय नवरात्र की धूम, दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। रामगढ़ जिले के चुटुपालू घाटी में कल रात भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक बादल छाए रहने और राज्य के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की जताई संभावना, तापमान में कमी के संकेत नहीं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सही कहा आपने, बहुत सुंदर चित्रण है इस गीत में गर्मी सर्दी बरसात दिल की चाहतों का। और आप सभी ने सही पहचाना, भूपेंद्र गायक कलाकार भूपेंद्र हैं। गुलजार की कलम से निकला यह गीत है, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म है मौसम। हम बात कर रहे हैं माँ की, कार्यक्रम सुरीला सफर में। लेकिन बात करते करते सुन लेते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर। आपने संदेश भेजे हैं बड़े सुंदर से। एक ने लिखा है कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ नाम से ही खुशी का हर पल सा है। आज मैं खुद माँ हूँ, लेकिन अगर कोई डांट दे या कोई कुछ कह दे या दुख का पल हो तो बस माँ की याद आती है और खूब रो लेती हूँ, लेकिन उसे बताती नहीं कि मैं उसे याद करके रो रही थी। ये तो जिसकी माँ है उसके हृदय की बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सर्वोच्च इबारत माँ शब्द, सारे शब्द इस शब्द के आगे फेल हैं, सब कुछ इसी शब्द में समा गया है। बिल्कुल सही। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि माँ अपने आप में विश्वसनीय होती है, जिसमें हमारे हर प्रश्न का हल होता है। जिनके माँ होती है वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिनके माँ नहीं होती वो जानते हैं। सही बात है। हमने हमारी इबारत में भी लिखा है कि दिल फुट ढूंढता है फुर्सत उसकी ही गोद में, सुकून का बस एक ही ठिकाना रहा है, वो इतनी दूर क्यों जाती है जीवन से, रब से शिकायत का यही पिटारा रहा है। चलिए सुनिए अगला गीत और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत जिसे लिया हमने अदालत फिल्म से। बड़ी खूबसूरत सी गीत को हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की बोल, और आप सबने सही पहचाना संगीतकार मदन मोहन। हम बात कर रहे हैं माँ की, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान कितना भी अरबपति खरबपति अमीर हो जाए, दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन इसे संसार में वो एक चीज नहीं खरीद सकता, वो है माँ और पिता। इंसान कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि माँ वह पहला नाम है जो बचपन से लेकर जीवन की हर दहलीज तक उनका प्यार हमें संभल देता है। माँ जिसकी गोद में हर उम्र में सुकून मिलता है, और नवरात्र में जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं तो एहसास होता है कि माँ केवल ममता की मूर्त ही नहीं बल्कि साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जगत जननी माँ जगदम्बा का आगमन हमारे घर हमारे दिलों में हुआ है, और पूरी भक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ हवन की सुगंध पूरी फिजाओं में तैर रही है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि हर माँ सोते हुए अपने नन्हे शिशु पर लगातार नजर रखती है और उसे जान से बढ़कर प्यार करती है। आगे चलकर इसी तरह से त्रैलोक की जननी आदिशक्ति माता रानी से भी अनुभूति मिलती है। अज्ञान की नींद में समाए हम भक्तों को जगाती हैं और उनके सपनों को संजोए रखती हैं। तो चलिए हम सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को सुनते हुए आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से है, और ये जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपने कब कहाँ कैसे देखी थी। बताइएगा जरूर, सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया। हमने आप सबसे पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सबने बताया कि ये त्रिमूर्ति फिल्म का गीत है। किसी ने बताया कि उन्होंने करतारपुर में देखी, किसी ने बताया भोपाल में देखी, किसी ने कहा अभी तक नहीं देखी। सबकी अलग अलग बातें थी, तो सबकी अलग अलग बातों को स्वीकार करते हैं। और एक बात हमारे एक श्रोता ने लिखी जो बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा कि शहर आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। बात तो बड़ी छूने वाली है और सच भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में निबंध में लिखते थे कि चलो चलो माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों के गांव में। तब समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आया कि माँ जहाँ होती है वहाँ सपनों का गांव बसता है, वहाँ सिर्फ प्यार दुलार होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब एक प्रश्न आप सबसे आ रहा है मन में जो पूछा जाए, प्रश्न ये है कि आपने अपनी माँ की किस ख्वाहिश को पूरा किया है, या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी नहीं कर पाए, जरूर से बताइएगा। माँ इस धरती का आधार होती है, अपने अपनी माँ को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बताइए ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी माँ की जो पूरी नहीं की, या ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी करके आप प्रसन्न हो गए।

हम सुन रहे थे ये गीत एबीसीडी टू फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। मयूर पुरी ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया सचिन जिगर ने। हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप अपनी माँ की पूरी कर पाए या नहीं कर पाए, परंतु उसके पहले हम ये संदेश पढ़ते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहते हैं भगवान सभी का ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने इस दुनिया में माँ का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता बताते हैं कि उनकी मां की अंतिम ख्वाहिश थी कि उनका सत्कार जगन्नाथपुरी धाम में हो और उन्होंने यह कार्य किया, उसके लिए आपका आभार। अपनी मां की हर बात को पूरा करना हम बच्चों का कर्तव्य होता है ना। तो हमारे एक और श्रोता बड़ी अच्छी बात लिखते, कहते हैं हमें लगता है कि हमने अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी की है, क्योंकि हमारी माँ जब भी हम कुछ करते थे तो कहती थी कि बस यही तो मैं चाहती थी। सच बात है, माएँ ऐसी ही होती हैं, हम जो कह दें उन्हें लगता है कि बस वही सही है, और माँ इतना प्यार जो करती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि द टाइम इज द बेस्ट हीलर बट नॉट इन केस ऑफ मदर, एज द टाइम पासिस आई मिस माई मदर मोर डे बाई डे। सच कहा आपने कि कहते हैं कि समय एक अच्छा हीलर होता है, लेकिन माँ के केस में नहीं होता। जब समय गुजरता है तो माँ को और याद करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सब रिश्ते पैसों के बने हुए हैं, पर माँ के रिश्ते का कोई मोल नहीं है। हमारे एक और श्रोता ने कथा लिखी कि हम छोटे थे, एक ही कंघी थी, जब माँ को बाल झाड़ना होता था तो उसे बहुत टाइम लगता था, क्योंकि माँ के बाल बहुत बड़े थे, स्कूल जाते समय समय हो जाती थी, और माँ को मुकेश जी भी पसंद थे, तो हमने बर्थडे पर सारे भाई बहनों ने पैसे इकट्ठा करके माँ को कंघी और मुकेश जी का कैसेट दिया था, और माँ खुशी के मारे रोने लगी थी। क्या बढ़िया बात है, माँ बहुत सुंदर चीज है। हमारे श्रोता ने इसी बात को लिखा है, और हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरी बेटी अच्छा इंसान बने और मेरी तरह विद्यादान का काम करे, और उनकी यही ख्वाहिश थी और यह इच्छा मैंने पूरी की है। कितनी बढ़िया बात है कि आप सभी अपनी माओं की इच्छाओं को पूरी कर पा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और जिनके पास उनकी माँ है उन्हें तो यह कार्य अधिकार से करते रहना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कहती थी जिंदगी में सफल हो ना हो लेकिन एक अच्छा इंसान बनो, और उसी पर चलकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ जैसा दुनिया में ना कोई है ना कोई होगा, माँ ममता का सागर है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे और सारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, हम ये सारी बातें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम सुनवाते हैं आपको अगला गीत। ये बड़ा प्यारा सा गीत है, और बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, ये आप बताइए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे पिया का घर फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल से सजा हुआ और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस संगीत बद्ध किया। हमारे बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माने जिस तरह से हम लोगों को घर गृहस्थी में पाला है, उस समय कोई और होता तो पता नहीं कैसे करता। वह सब उन्होंने ही किया है, बिल्कुल सही बात है, माँ सब संभाल लेती है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ बहुत बीमार थी, इलाज कराना था, दिल्ली लेकर आए थे और सेवा किए, मुझे पुणे जाना पड़ा और सेवा नहीं कर पाए। रहता है मलाल दिल में, कोई बात नहीं। हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि माँ की कितनी महिमा है यह हर किसी को मालूम है, पर देखकर, समाचारों में पढ़कर, सुनकर बहुत दुख होता है कि बुढ़ापे में कुछ औलाद अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बात ये भी बिल्कुल सही है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बढ़िया गाना है, जीवन और जीवन की जीत पर लिखा है, संभवतः संगीतकार रविंद्र जैन है। नहीं, आप यहाँ पर त्रुटिवश है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीतबद्ध किया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ कितनी अच्छी होती है ना, बच्चे की हर बात, हर ख्वाहिश जान लेती है और ख्वाहिश को पूरा करती है। जी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि माँ वैसे कई बार मेरे घर आई थी, लेकिन वो उनके घर आना चाहती थी और वो आ नहीं पाई और अचानक से चली गई, ये दुख उनके मन में है। बिल्कुल सही है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि साधारणता अनेक बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में होती है, वो 9 भाई बहन है पर उन्होंने अपनी माँ को कभी कष्ट नहीं होने दिया। बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मम्मी बिल्कुल छोटी सी ख्वाहिश पूरी की थी, उन्हें विविध भारती में स्वप्न चेहरे फूल से वाला गीत सुनना था, वो फरमाइश उन्होंने पूरी करवाई थी। ऐसे ही विविध भारती का साथ और आपका साथ बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि माँ की बात को सुनकर हम आगे बढ़े हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम सुनते हैं अगला गीत। और ये जो अगला गीत है, आप अपने संदेश भेजते जाइए और साथ में बताइएगा कि ये जो अगला गीत है इसके गीतकार, संगीतकार और गायक। अब तीन उत्तर देने हैं, गीतकार, संगीतकार और गायक, तीनों के नाम बताने हैं। सुनिए ये गीत।

0: कभी छांव।
1: हम सुन रहे थे ये गीत कभी धूप कभी छांव। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत में गीतकार, संगीतकार और गायक तीनों के नाम बताइए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इस गीत के गायक हैं कवि प्रदीप, गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने। हमने हमारी इबारत में लिखा है कि ये जीवन है, यहाँ सुख दुख सब है, कहीं धूप कहीं छांव मिलती है, तो चलो ना संग में मुस्कुराते हैं, यहाँ मुस्कुराने की फीस कहाँ लगती है। तो चलिए मुस्कुराते हैं इस गीत के साथ, और हो सके तो बताइएगा कि इस गाने में आपको किस गायक कलाकार की आवाज सुनाई दे रही है। सुरीला सफर का यह अंतिम गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत जमीर फिल्म से। साहिर लुधियानवी के बोल सपन चक्रवर्ती ने इसे संगीतबद्ध किया और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, किशोर कुमार की आवाज में था यह गीत। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से आपका जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरे पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और माइन वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी

0: उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
1: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमओयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
4: स्मैश द पेट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से विमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैश द पेट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो विमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

0: योग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
1: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
3: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
2: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक

0: पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे श्रीमती 420 फिल्म से यह गीत, मोहम्मद रफ़ी शमशाद बेगम की आवाज़ों में सुनेंगे हम मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत रानी रूपमती फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, भरत व्यास के हैं बोल और एस एन त्रिपाठी का है संगीत।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देववर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत तीसरी गली फिल्म से। हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं तीसरी गली फिल्म से यह गीत हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का है संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और कल्याण जी आनंद जी का है संगीत।

आइए चलते सदाबहार नगमे में सुनते हैं आखिरी गीत फागुन फिल्म से, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। इस गीत के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रक्षा राज्य मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने राज्य सरकार पर बालू, कोयला और युवाओं के सपनों को बेचने का आरोप लगाया। श्री सेठ ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और जमीन के म्यूटेशन जैसे छोटे कार्यों के लिए भी रिश्वत ली जा रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश की तकदीर और तस्वीर बदलनी, झारखंड को भाजपा ने बनाया है। अगर यह बात कैसे बनाया है तो पार्टी का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसी मैं आपसे कहने आया हूँ, क्या ये सबसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बनकर हम एक उर्मूलन करें।
0: प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से सीजेआई सूर्यकांत के मिलने से इनकार को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश राजनीतिक दलों से नहीं मिलते और शिकायत के लिए याचिका ही माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विचाराधीन मामले पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: देखिए, ऐसे भी सामान्य तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलते, और बिल्कुल सही कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि अगर आपकी कोई गिला सिख पर शिकायत है तो याचिका डालिए और उस पर सुनवाई होगी, और ऑलरेडी याचिका पर सुनवाई चल रही है। यानी राहुल गांधी एक सब जुडिस मैटर पर प्रेशर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर कोर्ट का इनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। एक विचाराधीन मामले में वो मार्च कर रहे हैं और मिलने का समय मांग।
0: जमशेदपुर के बिष्टुपुर में आज भाजपा महिला मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और मारपीट हुई। मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोईजाम के खिलाफ भाजपा के आक्रोश प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान लाठियां चलने और अफरा तफरी की खबर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची ट्रिपल आईटी के छात्र आदित्य की मौत के बाद संस्थान में विद्यार्थियों का आंदोलन और उग्र हो गया है। बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राएं निदेशक के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। आक्रोशित छात्रों ने खेलगांव चौक जाम करने की चेतावनी दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद की हरिया जाम कोलियरी में कोयला लूट और सुरक्षा गार्डों पर हमलों के विरोध में ईसीएल कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। सीपीआई एमएल विधायक अरूप चटर्जी ने कोलियरी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन और ईसीएल प्रबंधन से उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
3: कोलियरी में 100 टन की प्रोडक्शन मात्र एक ही क्लाइंट चल रही है। क्लाइंट का माल जब भी ऊपर आता है तो वहाँ लूटपाट हो जाती है। लगातार वर्कर्स को, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मारपीट का खबर आती है। हम लोग प्रशासन एवं ईसीएल मैनेजमेंट दोनों पर दबाव डाल रहे हैं जो इमीडिएट ये तमाम चीजों पर रोकथाम करे, जो भी गलत है।

0: कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित गांधी उच्च विद्यालय में आज स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित इस शिविर में निदेशक श्याम मिश्रा शामिल हुए। महिला चिकित्सकों ने विशेष रूप से छात्राओं को पर्सनल हाइजीन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है और उनका यह सोच है कि हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में स्वस्थ रहें और अग्रणी रहें। उनकी उनकी जो भूमिका है समाज का और राष्ट्र के निर्माण का, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, वो पूर्णतः स्वस्थ रहे और जिस कार्य में भी वो लगी हुई है उस कार्य में वो अपना 100% योगदान दे सके।
0: कोडरमा में नाबालिग आदिवासी बच्ची के कथित यौन शोषण मामले में जेल में बंद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार की तबियत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया है, जिसके पीछे माता पिता का दबाव बताया जा रहा है। पुलिस दोबारा जांच का प्रयास करेगी। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र स्थित उकौली जंगल के पास पुलिस ने अवैध लकड़ी ले जा रहे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। पिकअप वाहन से सेमर लकड़ी के 400 पीस बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ डीडी पासवान के अनुसार इस मामले में गुमला निवासी नंदलाल साहू को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को और दीपा तुमको भी प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, सभी हमारी सभी सुनने वाली सखियों को, श्रोता भाइयों को, दीपा माहेश्वरी का, चंचल तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और भी शुभकामनाएं मैंने तुम्हें दी, तुमने मुझे नहीं दी ना सुनने वालों को।
1: भाई देखो, दी ना, नमस्कार दिए ना भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपने परिवार का, खुद का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
0: और कल हम ये शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं भाई, कल से जो उत्सव की धूम शुरू है पूरे देश भर में।
1: जी हाँ,
0: और ये उत्सव है नवरात्रि का, जो पूरे 9 से 10 दिन तक देश में यूं ही कहते हैं ना, रंग बिरंगी रौनकें नजर आएंगी, खूब सारी लाइटें होंगी, खूब सारा नाच गाना होगा, पकवान बनेंगे। वहीं जो बहुत सारे लोग हैं उपवास करते हैं, जहां पूजा पाठ का महत्व है, वहीं नाच गाने का महत्व है, उजाले का महत्व, बहुत सारे रंगों का महत्व।
1: और देखो ना, ये पूरे नवरात्रि के 9 दिन, हर दिन को एक रंग समर्पित कर दिया गया है ना। जैसे आज का रंग है सफेद। पता है श्रोताओं, आज ऑफिस में, यहाँ पर विविध भारती में ज्यादातर लोग सफेद कलर के कपड़े पहनकर आए, बड़े प्यारे लग रहे हैं। सब एक दूसरे को देखकर एक स्माइल दी। उसके अलावा बाहर भी जब हम घर से दफ्तर तक आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग सफेद या उसके कॉम्बिनेशन में कपड़े पहने हुए, और कई सारे लोग तो इन दिनों में चप्पल या

0: कुछ किसी भी तरह का
1: बिल्कुल चप्पल जूते भी
0: नहीं नहीं पहनते हैं, वो उस तरह के लोग भी दिखे।
1: हाँ,
0: और जी हाँ,
1: उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी भक्ति करने के तरीके होते हैं लोगों के। बाकी सुबह का जो समय होता है ना, हर घर से, अमूमन हर घर से आरती की ध्वनियां नजर आएंगी। तो वहीं जब शाम के वक्त हम निकलते हैं तो जो बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं या सोसाइटी हैं, बिल्डिंगे हैं, सब जगह पर बहुत ऊंची आवाज में जो गरबा की धुनें जलती रहती हैं, वहां थिरकते छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के स्त्री पुरुष बच्चे सभी नजर आते हैं। और अभी जहाँ हम एक रंग में देख रहे हैं, वहाँ रंग भी हमें नजर आएंगे, रंग बिरंगे परिधान में भी
0: जी,
1: और वहीं सफेद रंग में भी बहुत सारी महिलाएं पुरुष हमें नजर आएंगे। तो ये माहौल ही ऐसा होता है,
0: माहौल ही कुछ ऐसा है, खुशनुमा हो जाता है, सकारात्मक रहता है, हर जगह पॉजिटिविटी रहती है। और आप किसी को जानो या ना जानो, एक चेहरे पे मुस्कान जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, वो बड़ा प्यारा लगता है ना।
1: बिल्कुल, चाहे वो कहीं कीर्तन भजन चल रहा हो घर में, या शाम को गरबे का समय हो, हम जब देखते हैं ना भक्तिमय माहौल में और नृत्यमय उत्सवमय माहौल में हम डूब जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे माहौल को हम बनाए, गीत सुने?
0: बिल्कुल, वो माहौल थोड़ा बना रहना चाहिए, है ना।

0: तो भाई दीपा, नवरात्रों की धूम तो है, लेकिन अब कार्यक्रम में आगे बढ़ना है नवरात्रि की बात के बाद में, तो हम बताएं कि आज किन विषयों पर हम बात करेंगे। तो छोटी छोटी सी कुछ आदतें होती हैं, हम सब में होती हैं, लेकिन जब उनमें बदलाव करना पड़ता है तो उनके जो परिणाम आते हैं वो बड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बदलाव कैसे? सकारात्मक बदलाव।
0: हाँ
1: भाई, बदलाव तो कैसे भी हो सकते हैं। अब आप कहें कि भाई कोई दिन भर बहुत सक्रिय रहता है और अचानक से आलसी बन जाए, तो वैसे वाले बदलाव नहीं होने चाहिए। ये बदलाव पॉजिटिव वे में होने चाहिए, और तभी तो देखिए हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और इसीलिए बात हम करने चले हैं, विश्व गठिया दिवस पे भी हम छोटी सी बात करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में क्या जरूरी है जानना।
0: बिल्कुल, जब उम्र बढ़ती है तो सभी को कहीं ना कहीं ये जो गठिया है या अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, इसकी समस्या आ ही जाती है। तो कैसे पहचाने, क्या बचाव करें, थोड़ी सी इस पर बात होगी। एक और खास दिवस है, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और अभी सोमवार में हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के व्यंजन। तो आज जिस खास व्यंजन की हम बात करेंगे, देखिए वैसे तो उपवास के दिन भी है नवरात्रि में, लेकिन जो उपवास नहीं कर रहे हैं, सब तरह से खा पी रहे, वो इन इन पकवानों का जरूर से मजा रहे। तो छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जो चीजें बनाई जाती हैं, उन्हीं में से एक है फरा, या इसे मुठिया भी कहते हैं, और एक है अंगाकर रोटी। इनकी बात आज होगी।
1: बिल्कुल, कैसे बनती है, क्या खास है, वो सब हम जानेंगे। और भाई कुछ मैं कहूँ, कुछ
0: कुछ तुम कहो। बात तभी बनती है ना
1: हाँ
0: कि एक जना बोलता रहेगा ना, तो वो बात लगेगा कि भाई कितनी बकबक कर रहा है कि सामने वाले को मौका ही नहीं दिया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन संवाद तभी होता है या बात पूरी तभी होती है जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर किसी एक को शिकायत हो तो जो सामने वाला है वो शिकायत को दूर कर दे। जैसे आज एक छोटी सी प्यार भरी शिकायत आई है हमारे एक श्रोता भाई की है शायद, ये कि भाई इस आरंभ हो चुका है सप्ताह का, भाई देखिए हाँ आज तो सोमवार है और माता रानी का दूसरा नवरात्रा है, और आप ही देखिए ना सखी सहेली कार्यक्रम में नवरात्रों के विषय में कुछ भी नहीं है। उपवास, पूजा पाठ या भोजन व्यंजन आदि विशेष तौर पर जो बातें की जाती हैं, और उनको लगता है कि ये तो माता बहनों का डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता का डिपार्टमेंट हर एक के लिए है, ये किसी खास तौर पर महिलाओं के लिए नहीं है, और नवरात्रों के उपलक्ष्य में एक विषय अवश्य होना चाहिए, तो ऐसा उन्हें लगता है।
0: ये पूरा सप्ताह जो है वो नवरात्रि की धूम चलने वाली है। अलग से जो हमने विषय जिन पर चर्चा के लिए लिखे, वहां हमने नवरात्रि को नहीं लिखा किसी विषय को, लेकिन आगे आने वाले दिन में ये शामिल होने ही वाले हैं। और जब हमने शुरुआत की
1: नवरात्रि की धूम से की, और आपको देखिए ना एक सुंदर सा गीत सुना करके बिल्कुल उस भक्ति भाव में आप सब शायद सरोबार हो भी चुके होंगे।
0: तो हमारे श्रोता ने शिकायत तो की है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भले हो मन में, लेकिन वो नहीं लिख पाए हैं, तो भी शिकायत उनकी दूर हो गई। और उन्होंने हमसे शिकायत की, कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कह दिया। बात तभी होती है, और ये जो जुमला है ना कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात तभी बनती है दीपा, क्योंकि ये रिश्तों का पूरा व्याकरण है। हम सभी बोलना चाहते हैं और कोई हमें सुने, हम ये भी चाहते हैं। बोलने से गला हल्का होता है और सुनने से मन, कोई जब हमें सुनता है तो हमारा मन हल्का होता है, और बात तभी बनती है जब गला और मन दोनों पूरी तरह से हल्के हो जाते हैं। तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसका एक मतलब ये भी है कि आपस में बातचीत करना, अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ साझा करना और संवाद का माहौल बनाना। ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता दीपा, बल्कि दो लोगों या दो पक्षों के बीच आपसी जुड़ाव और आपसी समझ की बात भी है।
1: बिल्कुल सही कहा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इसमें सबसे सुंदर पता है क्या शब्द है चंचल? हम।
0: क्या बात है। हाँ,
1: और जब तक मैं और तुम है ना, तो फिर देखिए बहस है, जहां हम आ गया वहां बात बन जाएगी, और बात को तुमने क्या किया से निकालकर हम इसे कैसे ठीक करें, बिल्कुल इसमें तब्दील हो जाएगी, होगी या नहीं होगी?
0: बिल्कुल, और तब बात बन भी जाएगी। और दो लोगों के बीच जब संवाद होता है तो इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे की बात तक रखे, जिसे संवाद का संतुलन जो है वो बना रहे। आपसी जुड़ाव, आत्मीयता अक्सर रिश्तों, दोस्ती या प्रेम में इस्तेमाल होती है। और दो लोग जब अपनी भावनाएं, अपने सुख दुख और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं, तो बात तभी बनती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को सुनना और समझना दोनों जरूरी है। इसमें केवल कहने ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को ध्यान से सुनने और समझने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे आपसी समझ और विश्वास मजबूत हो। अब देखो ना, आजकल संवाद का हाल कुछ ऐसा हो गया है चंचल, कि एक बोलता है तो दूसरा इंतजार करता है
0: कि पहला कब चुप हो,
1: ताकि वो अपनी बात शुरू कर दे। अब देखिए, ये संवाद नहीं है, ये तो भाई मोनोलॉग हो गया है, या नहीं दोस्तों? क्योंकि जो आपस में टकरा रहा है, मतलब बोलने ही नहीं दे रहा है अगर दूसरे को, तो फिर वो कैसे आपसी बातचीत हुई। और जब कोई अपनी बात कहना शुरू करता है उसके पहले ही हम ये तय कर लेते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कहे हमें तो बस गलत ही लगने लगती है। ऐसे संवाद से बात करने के बजाय बिगड़ ही जाती है। तो जब भी बात कहो साफ कहो, लेकिन थोड़े मीठे अंदाज में कह दो।
0: और शब्दों के पीछे का दर्द भी कई बार हमें जब कोई बताता है तो हम उनसे अनसुना कर देते हैं। कोई हमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, हम उसके शब्द सुनते हैं लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो कुछ शब्द हैं जो हमें नहीं सुनाई दे रहे कि वो कहना चाह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: ये ना कहकर भी उसने कहा लेकिन हम इन शब्दों को सुन नहीं
1: कई
0: पाते
1: बार
0: हैं।
1: क्या होता है ना, ऐसा होता है लोगों में कि वो प्रेम भरे शब्द बता नहीं पाते,
0: जी
1: बोल नहीं पाते, लेकिन उनके

0: गुस्से में भी वो जो उनके प्रेम को हमें समझना पड़ता है।
1: जब कोई गीत या गजल बनती है ना तो उसमें चार चीजें चाहिए होती हैं, जब भी वो अच्छा लगता है, वो है लय, सुर, उसके शब्द और एहसास। इसी तरह से बात भी जब हम कोई करते हैं तो बात तभी बनती है, उसमें चार सुर होने चाहिए, ठहराव, सच्चाई, पारदर्शिता और विश्वास।
0: बिल्कुल। और जब हम ठहराव यानी मन को शांत कर लेंगे, वहां से बात शुरू करेंगे, तो गुस्से में कहीं की गई जो बात है ना, सच भी हो तो जहर लगने लगती है। लेकिन इसलिए जब आप जब आए तो 20-25 मिनट के लिए मौन हो जाएं, यानी आप कभी भी कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो अगर यह गुस्से में है तो थोड़ा सा चुप रह जाइए। इससे होगा ये कि 90% बातें तो वहीं खत्म हो जाएंगी।
1: बिल्कुल सही,
0: गुस्से में, क्योंकि गुस्से में की गई बात और फिर देखिए वो बात का कहां बतंगड़ बन जाता, देर नहीं लगती।
1: और जब कोई बात अपनी हमसे कह रहा है तो सच्चे मन से उसे सुनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें मोबाइल पर हैं, चेहरा उसकी तरफ लगा हुआ है और हम उसकी बात को पूरी तरह से सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब उसे दिखा रहे हैं कि हमने सुना, लेकिन हमारा ध्यान या तो अपनी किसी और बात पर है, हमारे मोबाइल पर है, या उसे बीच में जब अगर हम टोक देते हैं उसकी बात को पूरा होने से पहले ही, तो वो अपने बात कहने के लिए जो अपना मन हल्का करना चाहता है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमें पूरी तरह से समझता है, हमारे मन के भीतर चल रही उथल पुथल को वो पूरी तरह से भांप लेता है और हमसे वो बात करता है। फिर भी अक्सर हम घुमा फिरा के कह देते हैं ना कि कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो तूफान चल रहा है उसे वो हमें समझ लेता है और कई बार बिना कहे ही वो बात संवाद जो है दोनों के बीच में हो जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, बात करने से ही बात बनती है, खामोश रहने से तो दूरियां पनपती है।
1: और इसीलिए दीपा, ना तुम चुप रहो ना हम चुप रहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और जो उलझी है गांठ दिल में तो बातों ही बातों में वो सुलझे।
0: बिल्कुल, संवाद कोई जादू नहीं, आदत है चंचल, और आदत एक दिन में नहीं बनती। हम सब एक अच्छी शुरुआत करें कि हर रोज जब भी समय मिले किसी एक अपने से सिर्फ 5 मिनट बिना सलाह के, बिना जज किए, सिर्फ सुनने सुनाले वाली बातें करेंगे, करके देखिए मन हल्का लगेगा, यकीन मानिए।
1: बिल्कुल, अब जब ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। और सुन लेते हैं गाना।

0: जब बात मन में रह जाती है ना तो उलझनें बढ़ जाती हैं, इसलिए मन की बात कह दीजिए और कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ऐसा होना चाहिए। इसी पर एक बड़ा बहुत अच्छा संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जहाँ एक ही बोले वो भाषण होता है, संवाद नहीं, जहाँ दोनों बोले और दोनों सुने वहाँ संवाद बन जाता है। बिना संवाद के मन बंद हो जाते हैं। कहने से मन हल्का होता है, सुनने से भी मन बड़ा होता है। और आज की सबसे बड़ी कमी यही कि सबको कहना है पर सुनना किसी का नहीं है। इसीलिए ये पंक्तियां हमें बराबरी का सम्मान सिखाती हैं कि ना तुम हमेशा सही ना हम हमेशा सही। इसीलिए घर में, रिश्तों में, समाज में अगर हम थोड़ा सुन लें, थोड़ा कह दें, तो आधी दूरियां, आधी लड़ाइयां खुद ब खुद मिट जाएंगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह से एक और संदेश है, कह रहे हैं कि साझा अभिव्यक्ति, यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, रिश्तों में ताजगी और अपनापन बनाए रखती हैं। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं और एक दूसरे के मन की थाह ले लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और मजबूत होती हैं।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि जहां ना शब्दों की कोई बाध्यता हो, ना भावनाओं पर कोई पहरा हो, बस मन हो, संवेदनाएं हो और एक दूसरे को सुनने और समझने का सुंदर सा सिलसिला हो। बहुत
1: बिल्कुल
0: सुंदर
1: से,
0: बात
1: बहुत
0: लिखी है।
1: सुंदर कहा। और एक संदेश और है कि हम किसी से कुछ कहते हैं अपने दिल की बात, तो हमारी बात, हमारी बहुत सारी व्यर्थ जो नेगेटिव बातें वो निकल जाती
0: जी
1: है, पर हम सिर्फ कहें ही नहीं, अगला जो सुन रहा है उसकी भी कुछ बात सुने। परिवार में कुछ लोगों के प्रति कुछ ऐसे विचार आते हैं जो अच्छे नहीं होते, पर अगला कोई आपका दोस्त या प्रिय सुनकर और आपको सुझाव देता है, उन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।
0: एक अन्य संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ, बड़ी अच्छी बात लिखी है कि एक तरफा बात अक्सर बोझिल हो जाती है और संवाद एक तरफा भाषण बनकर रह जाता है। साझा अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बातें आपकी और कुछ बातें हमारी, तो ये अगर होगा तो रिश्तों में ताजगी और अपनापन बना रहेगा। जब दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रखते हैं, एक दूसरे के मन की थाह लेते हैं, तब विश्वास की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि जीवन केवल अपने हिस्से की बात कह देने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने की कला भी है। जब हम कहते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता है।
0: तो भाई सिर्फ हमें ही नहीं कहना है, गीतों के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जाता है, तो सुने गीत।
1: चलिए चलिए।

0: हम भी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एक अच्छा सा सुंदर सा संदेश है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हमारी एक सखी लिखती है कि आज विश्व गठिया दिवस है, मैं बहुत लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं सारा काम कर लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ, अगर मैं एक दो दिन भी नहीं चली तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी हो जाता है। इसीलिए आप इसका सिर्फ एक ही इलाज है या परहेज है कि आप शरीर के अनुसार खाना खाएं, कुछ वात की चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, शरीर को एक्टिव रखें, नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करें, दुरुस्त दिनचर्या, सही खान पान इस रोग से निजात दिलाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, एक सक्रिय मतलब फिजिकली एक्टिव लाइफ बहुत ज़रूरी है हर तरह की चीज़ के लिए। क्योंकि देखिए ना, गठिया एक रोग नहीं है बल्कि 100 से ज़्यादा बीमारियों का ये समूह है। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न आ जाती है। और अगर एक अनुमान के अनुसार हम देखें तो भारत में, हमारे देश में करीब 18 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी तरह से इस गठिया से पीड़ित हैं। लेकिन होता यह है कि 70% लोग इसे बुढ़ापे का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये बच्चों में भी हो सकता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा दीपा, और कई तरह का गठिया रोग होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसमें सबसे आम तौर पर ये सबसे आम है, और लगभग जब 40-45 की उम्र होने लगती है उसके बाद कूल और घुटनों में घिसाव पाया जाता है, तब ये दर्द उठते बैठते, जिसे इतने कमर में दर्द हो रहा है या घुटनों में चला फिरा नहीं जा रहा, उस तरह का होता है। इसी तरह से रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जिसमें सुबह उठते ही हाथों में अकड़न सी महसूस होती है और 30 मिनट तक मुट्ठी खुलने ना खुलने जैसी दिक्कत भी महसूस हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से गाउट भी एक गठिया का प्रकार है, जिसमें यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो पैर के अंगूठे में असहनीय दर्द होता है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये युवाओं में सुबह कमर में जकड़न जैसी समस्या इसमें आती है।
0: तो बिल्कुल ये कतई ना
1: बिल्कुल।
0: समझे कि ये बढ़ती उम्र में ही होता है, कई बार कम उम्र में भी ये समस्या आपको जकड़ सकती है।
1: बिल्कुल। और जब भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। जैसे सुबह 30 मिनट से ज्यादा जोड़ों में जकड़न हो, 3 दिन से ज्यादा एक ही जोड़ में सूजन आना है, या बिना चोट के भी दर्द जोड़ों में बना अगर रहता है या बढ़ता जा रहा है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होना, ये चलने, उठने, बैठने, इन सब में तकलीफ होना, इन सब लक्षण अगर ये है तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है यानी रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। और देर करने से देखिए जोड़ जो है वो टेढ़े हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, फिर समस्या को समाधान करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय रहते बचाव ज्यादा अच्छा रहता है। और गठिया रोग से बचने के लिए, जैसे हमारे संदेश में भी लिखा गया था ना कि 30 मिनट, अगर आप ज्यादा समय ना कर सकें 30 मिनट टहल लीजिए, तैरना, साइकिल चलाना जैसे व्यायाम भी कर सकते हैं अगर आपकी शारीरिक क्षमता है तो। बढ़ते वजन को भी नियंत्रित करना जरूरी है, अगर लगातार आप देखें कि आपका वजन बढ़ रहा है तो वहीं उसे भी नियंत्रण करने की कोशिश करें। धूप में 15 मिनट तक विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं, और जो सुबह के उगते सूरज की धूप होती है उसी में विटामिन डी होता है। ऐसा ना समझे कि सारा दिन में से कभी भी आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे विटामिन डी आपको मिलेगा।
1: जी,
0: अदरक, हल्दी और या ओमेगा 3 वाली जो भी चीज़ें हैं, जिसमें अखरोट, अलसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, इन्हें अपनी नियमित खुराक में शामिल किया जा सकता है, और अकड़न होने पर थोड़ा सा ना गर्म सिकाई भी की जा सकती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल। और

0: जोड़ों में दर्द रहता है ना चंचल, तो ठंडे पानी से ना नहाएं, इस तरह से हमेशा सलाह दी जाती है। और देर तक एसी में बैठे रहना, क्योंकि आजकल हर घर में ही तो देखिए एयर कंडीशन है ही, तो इसमें भी दर्द बहुत बढ़ जाता है। फिर पालथी मारकर घंटों बैठना या सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना, ये सब में दर्द बढ़ सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द का जो कोई भी पेन किलर लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये समस्या को और बढ़ा सकता है।
1: ये सिर्फ जोड़ों के दर्द की बात नहीं है, आपको किसी भी तरह का दर्द होता है और उसमें अगर आपने बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर लिया है तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा दर्द हो, और खासतौर पर गठिया की हम बात कर रहे हैं, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सकीय सलाह बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और दर्द अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है तो पहले ही आराम, जो पहले क्या करना चाहिए, आराम तो उसका इलाज है ही, ये सोचकर बिल्कुल हिलना डुलना जो है बिल्कुल ना करें, ये उचित नहीं है। और गठिया ला इलाज नहीं है देखिए, पर अनदेखा करना ये भी सही नहीं है। सही समय पर सही जानकारी और व्यायाम से हम अपने रोजमर्रा के जीवन को बिल्कुल सामान्य रख सकते हैं।
1: और इसीलिए दर्द को अपना स्वभाव बिल्कुल मत बनने दीजिए, जोड़ हिलेंगे जीवन तभी मिलेगा। और इस तरह के विश्व स्तर पर जब भी कोई दिवस मनाए जाते हैं तो उनकी एक थीम रखी जाती है। इस बार इस दिन की थीम रखी गई है सही जानकारी बेहतर जीवन।
0: बिल्कुल। और अभी क्या करना चाहिए,
1: एक अंतराल का समय है।
0: चलिए।

0: श्रोताओं, विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और दीपा, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले गीत सुन लें।
1: चलिए

0: गीत बहुत सुंदर था दीपा, और ऐसे गीत जब बजते हैं ना तो गठिया वटिया सब भूल के ना नाचने कूदने को झूमने को दिल करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह जब रात को गरबा होता है ना, तब भी कितना भी दर्द हो रहा हो हाथ पैरों में, लेकिन जब वो थिरकते हुए हम पैर देखते हैं या ऐसा कोई गीत सुनते हैं ना, तो मन करता है कि थोड़ा सा चलिए चाहे 2 राउंड
1: बिल्कुल,
0: लेंगे गरबा के हम, लेकिन हो जाए।
1: दिल जब खो जाता है तो किसी सखी को ही बताया जाता है ना।
0: और चलिए हम गठिया दिवस के बाद अब बात करते हैं एक और खास दिवस की, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस। ये
1: बिल्कुल
0: भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये दिन हमें याद दिलाता है दीपा कि सोचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन किसी की दी हुई वस्तु नहीं है। ये स्वतंत्र विचार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मन में आया वो बोल दिया। बड़ों का अपमान करना, हर परंपरा को भला बुरा कहना, इसे विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
1: जी, स्वतंत्र विचार का मतलब ये है चंचल कि किसी भी बात को आंख बंद करके ना मानना, सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा क्यों, ये हम पूछ सकते हैं अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना, और दूसरों को भी अपनी राय बनाने की जो है जब
0: सम्मान,
1: बना उसका सम्मान करना। अगर किसी की राय कुछ और है, हमारे सोच से अलग है, तो उसका सम्मान बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: करना
0: आज
1: चाहिए।
0: हमारे पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन सोच है वो बहुत कम है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सूचना जो हमें मिलती है, हम उनको ही सच मान लेते हैं, और भीड़ का हिस्सा मानकर हम भी वही करने लगते हैं जो सारे लोग कर रहे होते हैं। और कई बार हमें ये भी डर लगता है कि इससे अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसलिए सुनो सबकी, करो अपने विवेक की, मानो वही जो बुद्धि को ठीक लगे। बुजुर्गों ने कहा है, सुनिए सबकी, करिए मन की, पर मन का मतलब जिद नहीं, विवेक है। स्वतंत्र विचार विद्रोही नहीं, ये जिम्मेदारी है, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने की हमारी जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल सही कहा, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि बातों के साथ साथ गीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए।
1: चलिए

0: चंचल बोलिए।
1: देखो ऐसा लगता है ना कि भाई छोटी छोटी छोटी छोटी हम वो किस्सा कहानी जो पढ़ी है, बूंद बूंद से जो घड़ा घड़ा जो भरता है,
0: जी
1: बस ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती
0: सही
1: हैं।
0: कहा। हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, घर व्यवस्थित रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे, जीवन में खुशहाली आए, लेकिन इसके लिए हमेशा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है ना दीपा?
1: बिल्कुल सही कहा। तो देखो चलिए जान ही लेते हैं आपकी जिंदगी, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें कौन से छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी सुबह से, अच्छी आदतों से हमें करना चाहिए। उठते ही मोबाइल देखने के ये जो आदत है उसके बदले में थोड़ा सा टहल लें, घर के अंदर ही ताजी हवा ले लें, या हल्का सा बिल्कुल एक स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है ना वो
0: हाँ,
1: कर लें। और छोटी सी आदत ये देखो हमें दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद कर सकती है।
0: इसके अलावा एक छोटा सा दूसरा बदलाव हम ये भी कर सकते हैं कि अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव ले आएं। पर्याप्त रूप से पानी पिएं, फल सब्जियां खाएं, जंक फूड का सेवन थोड़ा सा कम कर दें। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए जरूरी ये नहीं कि हम सब कुछ एकदम से बदल दें, लेकिन छोटी छोटी सी आदतों से भी हम अपना सकते हैं। और मौसम में जो फल सब्जियां आते हैं उनको अपने आहार में जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और सही समय का हमें समय का जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कभी कभी होता है ना बेवजह समय बिताने लगते हैं, हम पता ही नहीं चलता कितना वक्त निकल जाता है। इसके बदले में हम कुछ समय किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए, कुछ समय को और नई चीजें सीखने का या अपने शौक पूरे करने में भी हम व्यतीत कर सकते हैं अपना समय। और रोज के 15 मिनट भी धीरे धीरे अगर कुछ सीखा तो समझ लीजिए सच में बहुत कुछ सीखा।
0: एक छोटा सा संदेश इसके बारे में बड़ा अच्छा आया है कि छोटी आदतों में बदलाव करने से समय के साथ जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम आते हैं। जब आप रोजाना खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत छोटी सी करते हैं तो बहुत महीनों या सालों में वो बदलाव बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे कभी कभी छोटी सी बचत बहुत बड़ी बचत बन जाती है, आपका अर्थ मजबूत होता है। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन, हल्की सैर, छोटी छोटी ये आदतें हैं जो मानसिक शांति, सकारात्मक मानसिकता और बेहतर समय प्रबंधन लाती हैं। और ये छोटी सी जो बातें हैं वो जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ले आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। घर को भी साफ सुथरा रखने के लिए रोज केवल 10-15 मिनट अगर हम निकाल लें तो सच में देखो जो चीजें हैं वो व्यवस्थित रहेंगी। हर दिन ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी, आज हम बोलते हैं ना कि संडे है अब आज हम सफाई करेंगे, अगर हर रोज भी थोड़ा थोड़ा समय निकाला तो घर आपका व्यवस्थित रहेगा।
0: एक छोटा सा संदेश है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात लिखी कि रोज व्यायाम करना, सैर करना कुछ देर भी अगर आप करते हैं, रोज नहीं हो पाता तो समय के अंतराल पर करिए, लेकिन इससे पता लगता है कि धीरे धीरे शरीर जो है वो स्वस्थ होता जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आर्थिक स्थिति को भी हम बेहतर बना सकते हैं छोटी छोटी आदतों से, जैसे गैर जरूरी खर्चों से बचें और खरीदारी से पहले सोच लें कि क्या सच में वो चीज हमें जरूरत है उसकी, क्योंकि फट से ऐसे ही ऑनलाइन ये जो क्लिक कर देते हैं हम बटन उसके पहले जरा सा उंगली हटा लीजिए और सोच लीजिए और धीरे धीरे यही छोटी बचत आपकी बड़ी बचत में तब्दील हो सकती
0: ऐसे
1: है।
0: ही एक संदेश कहता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम, जैसे मीठा बोलना, समय की कद्र करना, दूसरों की मदद करना, ये भी हमारे जीवन को खूबसूरत बना देती हैं। बस छोटी सी शुरुआत है तो बड़ा बदलाव भी एक दिन जरूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल। हम फिर आ जाते हैं अब एक और जरूरी आदत पर, सकारात्मक सोच की। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की हमें कोशिश करना चाहिए चंचल। और जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त नहीं करते, कम करते हैं जरा। छोटी सी ही बात क्यों ना सही कि मेरा भरा पूरा परिवार है, सब लोग मेरे साथ हैं, हम इसके लिए भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और हमें हमेशा याद

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: भाई हम बहुत बोल रहे हैं, हम कोई भी काम करें चाहे वो बोलने का हो या कोई शारीरिक श्रम हो, ऊर्जा कैसे मिलती है, हमें खाने से ऊर्जा मिलती है।
5: बिल्कुल सही
4: तो
5: का।
4: मेरे कहने का इशारा आप समझ गए कि अब कुछ खान पान की बात भी होनी चाहिए ना?
5: और हमारे यहाँ तो इतने विभिन्न प्रकार के देखो व्यंजन होते हैं, हम हर प्रदेश के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने तरह तरह के व्यंजन और रेसिपीज हमने सीखी भी है। आज छत्तीसगढ़ की हम सीख रहे हैं अंगाकर रोटी। ये एक पारंपरिक वहाँ के व्यंजन, प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन है। इसे सीधे आग के अंगारों पर पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर कहा जाता है। और इसे पान रोटी या पन पूर्वा रोटी भी कहते हैं क्योंकि ये पत्तों में लपेटी जाती है। लेना क्या है इसमें, पका हुआ चावल लेना है या बचा हुआ चावल भी आप ले सकते हैं। एक कटोरी चावल का आटा, एक कटोरी नमक अपने हिसाब से ले लीजिए, और केले के पत्ते या पलाश के आपको अगर मिल जाए तो वो वाले पत्ते, गोबर के उपले या लकड़ी के अंगारे अगर हो सके तो। बनाना कैसे, सबसे पहले पके हुए चावल को अच्छी तरह मसल ले, इसमें चावल का आटा और नमक मिलाकर नरम आटा गूंद ले। अब जो पत्ते आपने लिए हैं पलाश के या केले के पत्ते, उनको आपस में रखना है। आटे की मोटी लोई बनाकर पत्ते के इसके ऊपर

0: रखना है और ऊपर से एक और पत्ता ढकना है। अब जो तैयार पत्ते वाली रोटी को जलते हुए कंडे या कोयले के अंगारे पर रखना है, ऊपर से भी आपको गरम अंगारे डाल देना है। ये नहीं है तो फिर अब आप घर पे जो तवा है उसके ऊपर
1: जी
0: कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट तक पकने दीजिए और पत्तों की देखिए सौंधी सौंधी खुशबू रोटी में आ जाती है। पत्ते हटाकर गर्मा गर्म अंगाकर रोटी को टमाटर की पतली चटनी या घी के साथ परोसा जाता है वहां पर पारंपरिक रूप से।
1: बिल्कुल, ऐसे नए व्यंजन देखते हैं तो उनको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब हम सुन लेते हैं गीत।
0: चलिए।

0: चंचल, हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, फरा की जो व्यंजन विधि है जल्दी से बता दो।
1: तो भाई देखिए, हमारे श्रोताओं ने इसकी व्यंजन विधि लिखकर भेजी है और वो ये भी बता रहे हैं कि फरा उनके यहाँ करवा चौथ पर बनाया जाता है, तो करवा चौथ भी आने वाली है, थोड़ा सा ही इंतजार रह गया है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि परब तो जब भी मन करता है ना तभी ये बना लिया जाता है। इसमें के लिए चावल के आटे को सान कर उसकी लोई में चने की पिसी हुई दाल में नमक, मिर्ची, अदरक, ये जो चीज़ें, इनको बारीक काट लिया जाता है और इनको मिलाकर भरकर उबलते पानी में डालते हैं। कुछ ही देर में फरे हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं और थोड़े से कड़े हो जाते हैं, इनके जो ऊपर का आटे का कवर है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। और फिर पानी से निकाल कर छोटे टुकड़ों में इन्हें काट कर हींग और जीरे से छौंका लगा लिया जाता है। फिर हरे धनिए की चटनी के साथ इनको खाया जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। तो फरा जो है वो कई प्रांतों में बनाया जाता है।

0: होता है, हर प्रांत में बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चावल के आटे के साथ बहुत सारे लोग इसमें आटे के साथ भी बनाते हैं, और जो ताज़ा चने की दाल को पीसकर बनाई जाती है, जो मसालों का इसमें प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। कुछ इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च आपको जरूरत के अनुसार, अगर जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए या ना डालिए, तो ये बदलाव अपने हिसाब से किए जा सकते हैं। और फरा को कहीं कहीं मुठिया भी कहा
1: जाता है। अच्छा, एक संदेश और छोटा सा है कि हर रोज एक गुल्लक में कुछ रुपए जमा करते हैं तो एक अंतराल पर वही छोटी छोटी बचत से कितना पैसा अनजाने में जमा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता।
0: बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे गाने जमा हो जाते हैं, लेकिन ये जो सुन रहे हैं ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: घड़ी की सुइयां अभी हमें वक्त नहीं दे रही हैं कि हम और बातें करें, तो इजाजत ले लेते हैं सभी का।
1: बिल्कुल,
0: चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना तो।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहाँ इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: आपने इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
2: हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो।
1: हाँ,
2: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है, वो जब यंग होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसा कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
1: बिल्कुल।
2: तो वो है
1: एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं
1: जी,
2: और जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पर नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग की, भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।

0: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भी किया
1: आप उस तरफ ना जा पाए, नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भैया है कि ब्रेक कर दिया हमने।
0: हाँ,
1: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं सर।
0: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता
1: बहुत,
0: है।
1: बहुत, बहुत, बहुत
0: वो कितना चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए, जो खासतौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट
1: मेरे ख्याल से जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, ट्रायल एरर हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा। हमारा मरीज है बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं,
0: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे हैं।
1: हाँ हाँ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको, हम लोग उस समय को निकाल पाए।
0: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के जहां जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं।
1: हाँ,
0: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है।
1: जो भी हम लोग है तो इंसान ही ना
0: जी,
1: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट वो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी नहीं बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत एक दो साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे आपको सामने वाले को बताना है, वो टच बनाए रखे हुए, मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया अब नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक जरूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है। वो न्यूज देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो।
0: जी जी,
1: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते
0: जी,
1: तो बताना तो होता ही है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। अब बदलते वक्त के साथ भारत में जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है? जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत वक्त बीत गया,
1: आसमान तो जमीन का फर्क हो गया सर। और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इग्नोर ना करें, सही बीमारी सही समय पर पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो। जो जानलेवा बीमारियां हैं और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, अचानक डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप, दोनों चीजें हैं मैं मानता हूं कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है फिट है, एज अ डॉक्टर
0: कोई कमी ना रह जाए।
1: हाँ, कल को बाद में आप सोचते हैं यार इसका ईसीजी कर लेते भाई, छोटी सी जांच। अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है
0: जी।
1: हाँ, वो सर वड़ा पाव खा लिया था
0: जी,
1: मैं भी मानता हूं, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पांव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो जरूरी है, बेसिक ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है, मतलब तो आपकी पहुंच गांव-गांव कोने-कोने में है,
0: तो ये पूरी दुनिया में।
1: हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, बेसिक जांच। और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते

0: सकते हैं, लेकिन बिना उसके, ये थोड़ा है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस आ रही है, बट अभी भी बहुत ज़रूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया, तो हम लगभग लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना
0: हाँ बिल्कुल
1: और पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा
0: ये बहुत
1: तफसील से
0: बहुत
1: बताइए।
0: अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए, नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन, मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का, एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है, दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में आप तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाके डॉक्टर को बताइए जरूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है, भाई नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीजें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है, और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है, और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी, अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो, और विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है।
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना
0: हाँ
1: जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे यार पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है, वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बातें
0: हाँ
1: उनको
0: वो
1: इग्नोर
0: इग्नोर
1: करते हैं
0: करते हैं,
1: जी।
0: दांत में दर्द ठीक है यार, अरे कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना, वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है ऐसा नहीं, 60-70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है, आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे, है ना।
1: डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहां एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये जरूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी जरूरी है और मरीजों के लिए भी जरूरी है।
1: जी
0: तो किशोर दा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये
1: जी
0: जीवन है इस जीवन का, बहुत
1: देखिए,
0: बेहतरीन,
1: मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं।
1: जी।

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं।
0: तो किसी भी वक्त मुस्तैदी से जाना पड़ सकता है।
1: हाँ, कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाकी लोग चैन से सोए तो कोई तो जगेगा।
0: बिल्कुल,
1: बट हाँ, फिर भी हम डॉक्टर हैं हम लोग, तो हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
0: जी जी
1: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
0: जी,
1: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
0: थायराइड हो,
1: इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15 मिनट 20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए, कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से।
0: जी,
1: वो बहुत जरूरी है सर मेरे ख्याल से। इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
0: जी, मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है कि हम टेंशन से दूर रहें, हम दबावों से दूर रहें।
1: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की, उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
0: जी जी,
1: आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी एंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज को एंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का, जो आप हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना।
0: बिल्कुल,
1: एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर।
0: जी जी,
1: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना। दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं और डॉक्टर

0: संदीप, मैं ये चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले लेते हैं और आईसीयू तक मामला चला जाता है, इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ तो बारिश का मौसम का एक अलग मज़ा है, लेकिन मज़ा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और खासकर इसमें बुखार, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीजन में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें,
0: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते हैं,
1: नहीं नहीं सर,
0: एसी में होते हैं। पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
1: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और सिम्टम जो है उसकी बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
0: जी जी
1: आप देखें, ज्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है।
0: जी, एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है।
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ, बराबर,
0: पैरासीटामोल उठा के ले लिया।
1: सही बात है
0: ना। तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को, इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
1: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के लिया है। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज़्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है और उसके ही परिणाम है कि आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियां, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना, किसी भी चीज का आप मिसयूज करेंगे तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
0: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता है।
1: मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं तो उस वक्त था कि 10-20-25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही है हमने यूज कर करके, मिस यूज करके यूज

आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है, और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक, हमको भी लिखने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे।

0: अजय का वही हाल है, आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना, तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए, आप
1: जी
0: किसी स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण में ही कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर, केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें,
0: ना करें ना
1: और
0: करें।
1: दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधी अधूरे कोर्स कर लेने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बनता
0: है, बहुत बड़ा इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं, जिस तरह से ये हमारे सामने आ रहे हैं चीजें।
1: जी
0: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो सब पैन रेजिस्टेंस के, कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
1: तो कुछ भी काम नहीं
0: तो
1: कर
0: क्या
1: रहा।
0: करेंगे हम? ये एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
1: जी डॉक्टर साहब, अब यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बहुत
1: तो बाप
0: सीरियस
1: की पसंद का अगला गाना कौन सा होगा?
0: एक कर्ज फिल्म का, ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है। ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू, उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी,
1: तो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहां से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहां से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीजें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना सर आपने बचा लिया
0: जी,
1: तो उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है, और बहुत अच्छा लगता है ऐसा। हमेशा स्ट्रेसफुल जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
1: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था, और हम लोग उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, बिल्कुल आप उसी इलाके में थे।
1: उसी में थे, तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा सर कैसे

0: 6/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था, और हम लोग उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
1: ओहो, बिल्कुल आप उसी
0: हाँ,
1: इलाके में थे।
0: उसी में थे। तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़े इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा, सर कैसे?

0: नाता रहा है और
1: अच्छा, अच्छा।
0: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुनाते
1: हाँ, हाँ।
0: थे, उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते
1: अरे
0: थे।
1: अरे बहुत कमाल के कलाकार।
0: अभी जब गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए। आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हो या बर्न विक्टिम्स हो, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी होते हैं,
1: अपने
0: उनको कैसे संभालते हैं?
1: मैं सफदरजंग के बंस यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
0: ओ ओ ओ,
1: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो
0: जी।
1: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में। हम ड्यूटी खत्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे, फिर अचानक फोन बजने लगा हमारे सर का फोन, तुम लोग कहाँ हो? तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं, क्या हो गया सर? बोले, जहाँ भी हो जितने भी दोस्त हो सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहाँ भी है जो सबको फोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं है बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था वो देख नहीं पाया, डॉक्टर होके वो वहां पे फेंट कर गया।
0: ओहो।
1: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूं तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े आती है यार। वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके। और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि सब लोग, आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं उतरता है।
0: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं।
1: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ, अच्छा लगता, मैंने बोलता है जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा।
0: बिल्कुल, आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
1: ऐ मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं सर।

0: हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो। और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाक्य आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके। तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा, हर आदमी एक पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है। लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका, तुरंत वो लेके आया और उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
1: बिल्कुल
0: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता। तो
1: जी
0: ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
1: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम सुन रही है। एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
0: देखिए आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
1: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
0: साथ
1: मौजूद लोग
0: वाले वो
1: हैं,
0: उनको,
1: पास पड़ोस के लोग हैं।
0: हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जब हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर। वो
1: तुरंत पहले
0: तुरंत तुरंत
1: मेडिकल हेल्प के लिए
0: आप
1: दौड़ें।
0: जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाएं, इसके लिए बनाया गया। और अब मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें,
1: बजाय इसके कि नुस्खे
0: हाँ
1: अपनाने की
0: नुस्खे
1: बजाय।
0: वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
1: झाग वाग निकल रहा है।
0: हाँ वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये, मोटा मोटा समझाने के लिए जैसे मैंने बोला कि भाई,
1: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता है ना कि यह हार्ट अटैक है। तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाएं?
0: देखिए जो सबको पता है चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है।

0: चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीजों को कभी टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है। और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता हार्ड एंड फास्ट, कुछ नहीं रह गया अभी। अभी बीमारियां काफी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है, हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन। उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं,
1: जी
0: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज अलार्मिंग है। आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर है जो इससे जुड़ा हुआ है, उसे संपर्क करना चाहिए।
1: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
0: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंगल माउथ
1: टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है,
0: टेढ़ा मोड़, आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
1: विरूपता आ
0: मतलब
1: रही है,
0: विरूपता आ रही है, सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
1: तुरंत समझ जाना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: कहीं भी सिमेट्री जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आंखों दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है
1: इन
0: डॉक्टर के
1: दोनों
0: पास।
1: परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
0: देखिए जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसे नहीं, नहीं बाबा, आसपास पहले वहां पहुंच जाए आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको, आप अनजान शहर में हैं और एक पुलिस वाला जो आप रास्ता भटक गए उससे पूछे, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई, उस पर मत, ठीक है भगवान करे वही हो, मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते, भगवान ही नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी एबनॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, और यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो कौन सा गाना होगा?
0: यहाँ पे हम रफी साहब का एक गाना सुनेंगे,
1: ठीक है,
0: आज मौसम बड़ा बेईमान,
1: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है, और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता उसने आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं। उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है, बट आपके माध्यम से भी हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा,
1: मैं दिल्ली में था और मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बॉस मुंबई चलते हैं। मैं भी गा फिर लेता हूँ, वो मजाक मिला, चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही।
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ
0: जी,
1: हाँ
0: जी, जी।
1: और वो गाने लिखता भी था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा, हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा,
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होते ना, रॉक स्टार बनना है बॉस,
0: हाँ।
1: गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहाँ से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया। क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहां का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना है कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव को मिलने नहीं दिया गया, बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर।

0: और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बीइंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और सब उससे भी ज्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है,
1: बिल्कुल, सबसे
0: वो
1: बड़ी
0: सबसे
1: जिम्मेदारी है।
0: बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं देखो यार सेफ्टी फर्स्ट, अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती है ना, वो बच्चा रोएगा, बट ठीक है हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप उस कंडीशन, हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज की सेफ्टी है,
1: उसकी
0: हम
1: जान बचाना
0: उनकी
1: है।
0: जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देखिए इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, और जो कुछ है हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। बट हाँ आपकी बात सही है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती ना।
1: लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि
0: हाँ हाँ
1: डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे
0: निभा
1: हैं
0: रहे हैं, और उसके
1: और
0: भलाई
1: आईसीयू
0: के
1: में
0: लिए
1: खास तरह का बर्ताव किया जाए
0: बर्ताव किया जाए।
1: और जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए,
0: हाँ और
1: इंतजार किया जाए।
0: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट, कभी कभी देखिए हम इंसान ही हैं,
1: जी,
0: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर बोलेंगे शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें मस्त रहें।
1: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
4: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, पार्वती।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता ने परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल पर 50-50 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने का गंभीर आरोप लगाया। सरकार ने सीलबंद रिपोर्ट पेश की है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज खगेन महतो, परंदा सिंह और कुमकुम देवी सहित सैकड़ों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सभी का स्वागत करते हुए दावा किया कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार निरंकुश हो चुकी है और इस सरकार से जनता का हर वर्ग बेहद नाराज है। गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा नेता विनोद सिन्हा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सांसद मनोज तिवारी और अभिनेत्री सौम्या शर्मा गिरिडीह पहुंचे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। गुमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्तिक उरांव महाविद्यालय का मुख्य द्वार 4 घंटे तक बंद रखकर उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, 6 प्रोफेसर के डेप्यूटेशन को रद्द करने, मूलभूत सुविधाओं की कमी और छात्रवृत्ति में देरी जैसी समस्याओं का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। दुमका के काठीकुंड में 9वीं की छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आज जिला मुख्यालय में भारी आक्रोश देखा गया। झारखंड महासभा के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने रैली निकालकर अंबेडकर चौक जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सुनने के आनंद और कौतूहल के लिए इन गानों को हमने एक दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है, तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। यादों की तहरीर जैसे सितारों पे लिखी होती है, सितारों के कैनवस पर बनता है कोई चेहरा और बस मन खिंचा चला जाता है गुजरे जमाने में। यादें जुगनू की तरह चमकती हैं, कोई खुशबू, कोई इमारत, कोई तस्वीर, कोई बात, कोई गाना हमें खींच कर ले जाता है उस वक्त की तरफ जो बीत चुका है, जो अब कभी वापस नहीं आएगा, जो यादों में तब्दील हो चुका है।

सदियों से आसमान पर कंदील बनकर चमकता रहा है चांद। ये चांद अकेले लोगों का साथी है। ये चांद कभी उदास लगता है तो कभी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। चांद ने देखा है लोगों को खुश होते हुए, उदास होते हुए। बातें करता है हमसे ये चांद। न जाने कितनी पीढ़ियों की, न जाने कितनी बातें चांद को पता हैं, पर अब लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि किसी के पास चांद से बातें करने की फुर्सत ही नहीं।

0: इच्छा या गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ये गाना।
1: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी,
0: हैरान हूं मैं। हम अभी हाजिर हुए

जिंदगी ने कितना कुछ सिखाया है हमें। कभी ये फूलों से लगी, कभी पथरीली राहों पे ले गई जिंदगी। सब कुछ बदलता रहा, कुछ खोया कुछ पाया, पर जिंदगी रुकी नहीं, बस चलती चली गई। लोग बिछड़े, लोग मिले, कारवां आगे बढ़ता गया। जिंदगी के माथे पर शिकन आती तो है, पर इसकी मुस्कान कभी जाती नहीं है। इसकी मुस्कान कभी जानी भी नहीं चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें।

अभी से थोड़ी देर बाद 5:30 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा घर आंगन। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी संयुक्त परिवार के लाभ और एक और चर्चा होगी अपने आहार में पौष्टिक तत्वों को करें शामिल। और इस कार्यक्रम में आपको एक वार्ता भी सुनवाएंगे, विषय है शिक्षा से मिलती है नई उड़ान। वार्ताकार होंगी सविता देवी।

6:02 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी सरसों की खेती की वैज्ञानिक तकनीक, और इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे फूलों की खेती में संभावनाएं। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर रमेश कुमार

6:30 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मटर की खेती वैज्ञानिक विधि से और फसल अवशेषों का प्रबंधन। इस कार्यक्रम में आपको एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे जाड़े की सब्जियों में प्रबंधन। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर रमेश कुमार और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे राज्य केंद्र से। 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा बुनियाद और 7:45 आप सुनेंगे कार्यक्रम कल्याणी। इसमें भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे बच्चों में कुपोषण कारण एवं निदान। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर संजय कुमार तिवारी और इनसे बातचीत करेंगे संजय कुमार मिश्रे। 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट से।

8:30 पर आप सुनेंगे नई सोच नया कदम। इसमें आप एक भेंट वार्ता सुनेंगे, एक मधुमक्खी पालक से भेंट। भेंट वार्ताकार होंगे सुनेश्वर मेहता और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। 8:45 पर हिंदी में समाचार और 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 में उर्दू में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर विविध भारती का एक कार्यक्रम होगा मुंबई से और फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे।

10 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक रंग और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाज हमारे दिल्ली केंद्र से। और हमारी सभा की समाप्ति होगी 11 बजकर 10 मिनट पर। तो ये थे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम महिला बहनों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम घर आंगन में। बहनों, आज हम बातें करेंगे संयुक्त परिवार के लाभ की। बहनों, संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन आदि कई सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसमें आपसी प्रेम और सहयोग भी होता है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सुख दुख में साथ देते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों का अच्छा पालन पोषण भी होता है। परिवार के सभी बड़े सदस्य बच्चों की देखभाल और शिक्षा में भी सहयोग करते हैं। परिवार में रहने वाले बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और उचित देखभाल भी मिलती है। सभी सदस्य मिलकर घर का खर्च भी उठाते हैं और जिससे आर्थिक बोझ कम होता है। और इसमें काम का भी बंटवारा होता है, जिससे घर के काम सभी सदस्यों में बांट दिए जाते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति पर अधिक बोझ भी नहीं पड़ता। बच्चों को बड़ों का सम्मान करना, मिलजुल कर रहना और दूसरों की मदद करना सीखने को भी मिलता है, यानी संस्कारों का भी इसमें विकास होता है। और इसमें सुरक्षा की भावना भी होती है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की सुरक्षा और सहायता करते हैं, सुख दुख में भी साथ देते हैं। किसी सदस्य के बीमार होने या परेशानी में पड़ने पर परिवार के अन्य सदस्य उसकी मदद करते हैं। सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। बच्चों में सहयोग, सहनशीलता, प्रेम और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित होते हैं। पारिवारिक परंपराओं का भी संरक्षण होता है। संयुक्त परिवार में रीति रिवाजों, त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। बहनों, संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परिवार के सदस्यों में प्रेम, एकता, सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है। हालांकि एक सुखी संयुक्त परिवार के लिए सभी सदस्यों के बीच सम्मान, समानता और अच्छे व्यवहार का होना भी आवश्यक है।

बहनों, संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने के कई उपाय हैं। सभी सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, सबसे जरूरी बात है संयुक्त परिवार में अगर आप रहते हैं तो। परिवार में आपसी बातचीत बनाए रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करना चाहिए, घर के कामों और जिम्मेदारियों को लेकर मिलकर निभाना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर जरूर दें। संयुक्त परिवार प्रेम, सहयोग, त्याग और एकता का प्रतीक है। यह बच्चों को अच्छे संस्कार देता है और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार की असली ताकत उसके सदस्यों के आपसी प्रेम, सम्मान और सहयोग में होती है। बहनों, इस चर्चा के बाद आइए बात करेंगे, आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहनों, इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं वार्ता। शिक्षा से मिलती है नई उड़ान। वार्ताकार है सविता देवी।
1: नमस्कार। शिक्षा से मिलती है ऊंची उड़ान। मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा वह पंख है जो अपने सपनों की ऊंचाइयों तक उड़ना सिखाती है। शिक्षा केवल किताबों में लिखे शब्दों को पढ़ना और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति है। शिक्षा हमारे भीतर ज्ञान, विवेक, आत्मविश्वास और संस्कार का विकास करती है। यह हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर सफलता और विकास की प्रकाश की ओर ले जाती है। आज बदलते समय में शिक्षा व्यक्ति के लिए नई नई उड़ान का माध्यम बन गई है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्य को समझता है, सही और गलत के बीच अंतर कर सकता है तथा अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। शिक्षा गरीब और वंचित व्यक्ति के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलती है। शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन

0: नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी। आधुनिक तकनीक कौशल विकास व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल ज्ञान से युवाओं के सामने सफलता की नई संभावनाएं पैदा करती है। आज गांव का विद्यार्थी भी इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों तक पहुंच सकता और पहुंच भी रहे हैं। एक लड़की के जीवन में भी शिक्षा विशेष रूप से परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है। शिक्षित बेटी न केवल अपने पैरों पर खड़ी होती है बल्कि पूरे परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहा जाता है कि एक पुरुष को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक बेटी महिला को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। वो अपने बाल बच्चों को भी शिक्षा देती है और शिक्षा से उसके भविष्य को भी संवारती है। शिक्षित बेटी माँ बाप का और ससुराल दोनों कुल की मर्यादाओं को अच्छी तरह से निभाती है। शिक्षा के साधन साथ एक पढ़ी लिखी महिला अच्छा संस्कार भी अपने पूरे परिवार को देती है। शिक्षा का उद्देश्य एक नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। ऐसी शिक्षा आवश्यक है जो युवाओं और युवतियों में चरित्र अनुशासन संवेदनशील तथा वैज्ञानिक सोच नैतिकता और राष्ट्र प्रेम पैदा करे। जब ज्ञान के साथ कौशल और संस्कार जुड़ते हैं तभी शिक्षा वास्तव में जीवन बदलने वाली शिक्षा बनती है। आज भारत के युवाओं युवतियों के सामने अपार संभावनाएं हैं। यदि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उचित मार्गदर्शन और कौशल का अवसर मिले तो वे न केवल अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अतः शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न मानकर जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनाना होता है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचने और हर युवाओं को कौशल मिले और विद्यार्थी को अपने सपनों का पूरा करने का अवसर मिले, यही सच्चे अर्थों में शिक्षा से नई उड़ान होगी। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा एक अनमोल रत्न है, यह अंधकार से प्रकाश की किरण है। शिक्षा लोगों की सोच को सकारात्मक विचार लाकर बदलती है। शिक्षा नकारात्मक विचारों को हटाती है। शिक्षा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। शिक्षा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा अच्छे जीवन की आशा है। शिक्षा सफलता की कुंजी है। शिक्षा एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करती है। शिक्षा वह शक्ति है जो सपनों को पंख देती है, संघर्षों को अवसर में बदलती है और साधारण को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसलिए हमें शिक्षा को अपनाना ही नहीं बल्कि उसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना भी अपना दायित्व समझना चाहिए। ज्ञान की रोशनी जब जीवन में आती है तो हर व्यक्ति खुद करीब आती है। शिक्षा देती है सपनों को आसमान और इंसान को देती है नई उड़ान। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे सविता देवी की वार्ता, विषय था शिक्षा से मिलती है नई उड़ान। और आइए सुनते हैं एक नया और एक और गीत।

0: बहनों, आइए इसके बाद बात करते हैं अपने आहार में पौष्टिक तत्वों करें शामिल। खाना हम जो भी खाते हैं उसमें पौष्टिक तत्वों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहनों, स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए अपने दैनिक आहार में पौष्टिक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना बेहद ही ज़रूरी है। एक संतुलित और पोषण से भरपूर थाली हमारे शरीर को बेहतर रूप से काम करने में मदद करती है। अपने आहार को पोषण से भरपूर बनाने के लिए कुछ मुख्य तत्वों और स्रोतों को शामिल करें। जैसे बात करें सबसे पहले प्रोटीन की, तो मांसपेशियों के निर्माण, मरम्मत और शरीर की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है। क्या स्रोत है इसके? तो आप दालें, छोले, राजमा, पनीर, सोयाबीन, दही, अंडे, मछली और चिकन खा सकते हैं। विटामिन और खनिज भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने और अंगों के सही संचालन के लिए बहुत ही जरूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, मौसमी फल, सेब, केला, पपीता, संतरा और रंग बिरंगी सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च वगैरह से ये मिल जाती हैं।
1: हेल्दी फैट्स भी जरूरी है, जैसे मस्तिष्क के विकास और ऊर्जा के लिए अच्छे फैट्स जरूरी होते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, अलसी के बीज, जैतून का तेल और घी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने के लिए चाहिए साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, ज्वार, बाजरा, रागी और मल्टीग्रेन आटा। फाइबर के लिए पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने के लिए मुख्य स्रोत हैं इसके सलाद, छिलके सहित फल, साबुत दालें और स्प्राउट्स। रंग बिरंगी थाली अपनाएं, जैसे अपनी थाली में अलग अलग रंगों की सब्जियों और फलों को शामिल करके, क्योंकि हर रंग का अपना अलग पोषण मूल्य होता है। हाइड्रेटेड रहें, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ या नींबू पानी को भी शामिल कर सकती हैं। जंक फूड से दूरी बनाएं, जैसे पैकेट बंद, अत्यधिक मीठे और तले भुने खाद्य पदार्थों की जगह घर का बना ताज़ा भोजन ही आप चुनिए।

जी हाँ बहनों, आहार में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए कुछ और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल और दैनिक जीवन से जुड़े उपाय हम आपको बता रहे हैं, जिसे आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आहार की गुणवत्ता बढ़ाने के कुछ आसान तरीके आपको बता दें। अंकुरित अनाज रोज खाएं, जैसे स्प्राउट्स, मूंग, चना या मेथी को अंकुरित करके खाने से उनमें विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इसे नाश्ते में या सलाद के रूप में लें। फर्मेंटेड फूड भी आप खाएं, जैसे

0: बायोटिक्स कहते हैं दही, छाछ, इडली और ढोकला जैसे खाद्य पदार्थ पेट के स्वास्थ्य यानी गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये पाचन को सुधारते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। सीड्स का भी जो मिश्रण होता है उसे आप खा सकते हैं, जैसे अलसी, कद्दू के बीज, तिल और सूरजमुखी के बीजों को हल्का भून कर रख लें। रोजाना 1 से 2 चम्मच का सेवन करें, इससे शरीर को ओमेगा 3 और मिनरल्स मिलते हैं। आटे में भी विविधता लाएं, जैसे आटे तो आप रोज खाते हैं तो गेहूं के आटे की जगह कभी कभी ज्वार, बाजरा, मक्का या बेसन मिलाकर मल्टीग्रेन आटा बना लें और उसका इस्तेमाल करें। पकाने और खाने के स्वस्थ तरीके भी आपको जानने चाहिए।
1: जैसे सब्जियों को ज़्यादा न पकाएं, सब्जियों को अधिक पकाने या तलने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। स्टीम यानी भाप में पकाना या हल्का सोते करना सबसे बेहतरीन तरीका है। और आहार का समय रात को खाना हल्का रखें और सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाएं। सुबह का नाश्ता कभी न छोड़ें और माइंडफुल ईटिंग यानी ध्यान पूर्वक खाना। खाना खाते समय टीवी या मोबाइल का उपयोग न करें। भोजन को चबा चबा कर खाने से पाचन बेहतर होता है। और जैसे छोटी छोटी आदतें जो है बहुत बड़ा फ़र्क लाती है, जैसे रिफाइंड चीनी की जगह भी आप कुछ ले सकती हैं, जैसे सफ़ेद चीनी की जगह सीमित मात्रा में आप गुड़, शहद या खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। मौसमी और स्थानीय भोजन में जो फल या सब्जी जिस मौसम में आती है वही आप खाएं, ज़्यादा ताज़ा और पौष्टिक होते हैं।

0: कुछ और अन्वेषीय दिलचस्प आदतें आप दे सक कर सक अपना सकते हैं, जैसे आप जो आपके आहार और जीवन शैली को और अधिक पोषण बना सकती है। सुपर फूड्स और पारंपरिक भारतीय नुस्खे। हल्दी और काली मिर्च का मेल बहुत गुणकारी है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करता है, लेकिन शरीर इसे आसानी से सोख नहीं पाता। इसमें चुटकी भर काली मिर्च मिलाने से इसके अवशोषण की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। यानी हल्दी और काली मिर्च का मेल जरूर रखें अपने खाने में। मोरिंगा यानी सहजन के जो पत्ते होते हैं उन्हें सुपर फूड माना जाता है। मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर या इनकी सब्जी खाने से शरीर को आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। वैसे ही आंवला यानी इंडियन गूसबेरी जिसको कहते हैं, आंवला भी विटामिन सी का खजाना है। रोजाना एक कच्चा आंवला जूस या इसका मुरब्बा खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता और बाल त्वचा की सेहत में सुधार होता है। हाइड्रेशन और डिटॉक्स के स्मार्ट तरीके भी आपको जानने चाहिए, जैसे डिटॉक्स वाटर या हर्बल टी। सादे पानी के अलावा पुदीना, खीरा, नींबू डालकर बनाया गया पानी या दालचीनी अदरक की हर्बल चाय मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती है। सोने से पहले हल्दी वाला दूध या केसर ले लें। आयुर्वेदिक के अनुसार हल्का गुनगुना दूध या बादाम, सोया मिल्क और उसमें चुटकी भर हल्दी या जायफल मिलाकर पीने से नींद अच्छी आती है और शरीर की रिकवरी भी बेहतर होती है।
1: और कुछ रसोई और कुकिंग से जुड़े कुछ छोटे आपको बदलाव भी बताएं, जैसे लोहे की कढ़ाई का प्रयोग। लोहे के बर्तन में खाना पकाने से भोजन में प्राकृतिक रूप से आयरन की मात्रा जुड़ जाती है, जो शरीर में खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन को दूर करने में मदद करती है। कई फलों और सब्जियों के छिलके ना उतारें, जैसे सेब, खीरा, आलू के छिलकों में सबसे ज़्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छी तरह धोने के बाद ही उन्हें आप छिलके सहित उपयोग कर सकते हैं। बहनों, तो ये हुई बातें अपने आहार में पौष्टिक तत्वों को कैसे करें शामिल इस विषय पर। और इस चर्चा के बाद आइए आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बनो इसी गीत के साथ कार्यक्रम घर आंगन से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति।
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे
2: श्रमिक लोक अभियान। से बोल रहे हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। दोस्तों ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।
3: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर पलामू भाजपा महिला मोर्चा ने आज कांग्रेस जिला कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रीना किशोर और प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद द्वारा छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर आक्रोश जताया और सांसद के इस्तीफे तक

चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम ने सरायकेला में लंबित विकास योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। डीसी कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने राजस्व संग्रह और मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा की। आयुक्त ने दुर्गा पूजा के दौरान गृह सुरक्षा के लिए विशेष गश्ती और आदित्यपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की बैठक हुई। जिले में मैट्रिक के लिए 17 और इंटरमीडिएट के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 11,712 परीक्षार्थी कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा देंगे। गुमला जिला उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज तकनीकी विभागों की समीक्षात्मक बैठक हुई। उन्होंने मॉनसून समाप्ति के बाद सभी रुके हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने त्योहारों के मद्देनजर घाघरा रोड सहित अन्य सड़कों के गड्ढों को तत्काल भरने और डीएसपी रोड की नाली निर्माण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर और कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित रविदास ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 11 फर्जी सिम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी कृषक भाइयों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम ग्रामीण सभा में।
1: किसान भाइयों, सरसों की खेती का समय है अभी और सरसों के वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे हम आज। तो पैदावार और तेल की मात्रा दोनों को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है इस खेती से। सरसों भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसल है जिसकी खेती रबी यानी सर्दियों के मौसम में की जाती है और अब मौसम ही है इसका। तो सरसों की खेती की वैज्ञानिक तकनीक के कुछ चरण हम आपसे आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो उपयुक्त जलवायु और मिट्टी ज़रूर आप चेक कर लें। जैसे जलवायु कहाँ पर होता है, ये सरसों के लिए ठंडा और शुष्क मौसम सबसे अच्छा होता है। इसके विकास के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अनुकूल माना जाता है। मिट्टी की बात करें तो ये अच्छी जल निकास वाली दोमट या मटियार दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी उगती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय या जल भराव वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।
0: अब इसकी उन्नत किस्म की बात करते हैं तो अच्छी पैदावार के लिए अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रमाणित और उन्नत किस्मों का ही आप चयन करें। जैसे पूसा संकर अधिक पैदावार देने वाली लोकप्रिय किस्म है। दूसरा है क्रांति, सिंचित क्षेत्रों के लिए ये उत्तम है। वरुण पीली और भूरी दोनों प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। एक और है पूरा सरसों 28 और पूसा महक कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। अब खेत की तैयारी और बीज उपचार की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जुताई की। तो खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद 2 से 3 जुताइयां कल्टीवेटर या पाटा लगाकर करें जिससे मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए। बुआई से पहले खेत में नमी होना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार की बात करते हैं तो बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बुआई से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। दीमक या फंगस से बचाने के लिए क्लोरीपाइरीफॉस दवा का भी उपयोग आप कर सकते हैं। बुआई का समय और सही तरीका भी जाननी चाहिए। सरसों की बुआई का सबसे उपयुक्त

0: उपयुक्त समय अक्टूबर का महीना जो भी चल रहा है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है। देरी से बुआई करने पर कीटों, खासकर विशेषकर माहू चेपा का प्रकोप बढ़ जाता है। बीज की मात्रा प्रति एकड़ लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और बीजों बुआई की गहराई और दूरी की बात करते हैं तो बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना बोएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए।
1: और बात खाद और उर्वरक प्रबंधन की, मिट्टी की जांच के आधार पर खाद देना सबसे अच्छा होता है, लेकिन सामान्यतः अनुशंसित मात्रा प्रति एकड़ इस प्रकार है। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले गोबर की खाद FYM बुआई से करीब 3 से 4 हफ्ते पहले 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में चित्र मिला लें। रासायनिक खाद की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय बेसिसल डोज कतारों में रूप में दें। बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा पहले सिंचाई के बाद दें। गंधक यानी सल्फर भी आप दे सकते हैं। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत ज़रूरी है। प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग ज़रूर करें। इसके लिए जिप्सम का उपयोग आप कर सकते हैं। सिंचाई आप कब करें? सामान्यतः 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है सरसों की फसल में, तो पहले सिंचाई बुआई के लगभग 30 से 40 दिन बाद फूल आने से पहले या पुष्पन की अवस्था में, और दूसरी सिंचाई फली बनते समय दाने भरते वक्त।
0: खरपतवार नियंत्रण और निराई गुराई की बात करते हैं तो फसल की शुरुआत यानी 30 से 45 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही जरूरी है। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद पहली निराई गुराई करें और घने उगे हुए पौधों को छांटकर उचित दूरी बना लें। कीट और रोग नियंत्रण की बात करते हैं तो इसके प्रमुख कीट हैं माहू और चेपा। यह रस चूसने वाला कीट है जो फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपीड या डाइमेथोएट दवा का छिड़काव अनुशंसित मात्रा में करें। और प्रमुख रोग हैं इसके सफ़ेद रतुआ और अल्टरनेरिया झुलसा। इनकी रोकथाम के लिए मैंकोजे फफूंदनाशक का छिड़काव करना बहुत ही फायदेमंद होता है। और अब कटाई की बात करें मड़ाई की, तो जब 75% से अधिक फसल की फलियां सुनहरे रंग की हो जाए और दाने सख्त होने लगे तब फसल की कटाई कर लें। कटाई के बाद पौधों को 3 से 4 दिन धूप में सुखाकर थ्रेसर या डंडों की सहायता से दाने अलग कर लें। और भंडारण करने से पहले दानों में नमी की मात्रा 8% से कम होनी चाहिए ताकि घुन या नमी से फसल खराब न हो। तो ये हुई बातें सरसों की खेती की वैज्ञानिक तकनीक की। और कार्यक्रम में
1: अब आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता। फूलों की खेती में संभावनाएं भेंटवार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार, बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
2: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, हम फसलों की बात करते हैं, दलहनी फसलों की बात करते हैं, धान्य फसलों की बात करते हैं, अनाज फसल की बात करते हैं, सब्जियों की बातें करते हैं, तरह तरह की फसलों की बातें करते हैं हम किसान भाई बहन। और एक बात हम यह भी बताते चलें आपको कि इन फसलों के अतिरिक्त खेती करते हुए अगर हम व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए आमदनी का एक बेहतर स्रोत बन सकता है किसान बंधु। और इसमें किस प्रकार से फूलों की खेती में देख रेख हमें करने की आवश्यकता है, अभी बरसात का मौसम है, अभी हम कौन सी खेती कर सकते हैं, यहाँ की जलवायु क्या है, किस फूल के लिए बेहतर जलवायु है, यहाँ की मिट्टी किस फूल के लिए उपयुक्त है, और किस फूल की खेती अभी वर्तमान में की जा सकती है, और आने वाले समय में किसकी योजना आप बना सकते हैं, इन तमाम बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम।
3: सभी को मेरा जोहार।
2: फूलों की बात जहां तक आती है, अभी फूलों की खेती की क्या संभावना बनती है, हमारे पलामू में हमारे किसान भाई लोग किस तरह से इसकी खेती से लाभ कमा सकते हैं?
3: आज के इस बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि कृषक बंधु जो खाद्यान्न फसल के साथ साग सब्जी की खेती कर रहे हैं बृहद पैमाने पर, उसके साथ साथ अगर वो फूलों की खेती करते हैं तो इसे भी एक अच्छा आमदनी।

0: नहीं उन्हें प्राप्त हो सकता है। ऐसे पलामू के क्षेत्रों में जैसा मैंने भ्रमण किया है तो पाया है कि यहाँ फूलों की खेती जो है मतलब नाम मात्र का है, लोग अपने बाड़ी में थोड़ा बहुत लगा देते हैं, व्यावसायिक रूप से करते नहीं हैं।
1: जी
0: जैसा कि हम जानते हैं कि फूल जो है जितना भी आप हमारे टाउन एरिया में चाहे और झारखंड में जितना भी है सब सप्लाई जो है दूसरे स्टेट से हो रहा है। अगर हमारे यहाँ के जो नए लड़के लोग जो बाहर कमाने जा रहे हैं अगर उस व्यवसाय में फूलों की खेती पर अगर अच्छा तरह से ध्यान दें तो ये जो है बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और परिवार का भरण पोषण का एक बहुत बड़ा साधन होगा,
1: बन सकता है। जी
0: जी जी। और ऐसा देखा गया कि फूल की खेती जो है हर एक तरह का फूल यहाँ किया जा सकता है
1: जी,
0: लेकिन है कि क्या कि बहुत सारा फूल जो है उसका एक ठंडा में होता है, कुछ गर्मी में होता है, कुछ बरसात में होता है। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि एक फूल जो कॉमन फूल है गेंदा का फूल जो कि हमारे यहाँ बृहद पैमाने पर थ्रू आउट द ईयर सालों भर किया जा सकता है और इसका भी मार्केट जो है बहुत अच्छा है।
1: अच्छा।
0: इसके साथ हम रजनीगंधा कर सकते हैं, जरबेरा कर सकते हैं, ग्लेडियोलस कर सकते हैं, एस्टर कर सकते हैं, कार्नेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एस्टर, ग्लेडियोलस, जरबेरा, कार्नेशन ये सब जो बात करें ठंडे का समय का है।
1: अच्छा।
0: लेकिन अगर अभी किसान करना चाहते हैं, कुछ लोग अगर जिनका जमीन जो है ऐसा है जिनका मिट्टी जो है दोमट मिट्टी हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, ज़्यादा काला वाला नहीं हो, तो वैसा मतलब हार्ड हार्ड नहीं होना, इसी के लिए ज़रा हल्का मिट्टी चाहिए और हमारा कार्बनिक से प्रचुर मात्रा में पाया जाए
1: जी जी,
0: तो उस तरह से नहीं तो उसको हम लोग खाद का मात्रा के साथ उसको हम लोग इम्प्रूव करके उसमें खेती कर सकते हैं। तो हमारा एक कहना रहेगा जैसे गेंदा का फूल, सभी लोग जानते हैं गेंदा क्या है, गेंदा देख भी रहे हैं और लोग जाते हैं मंदिर में तो खरीद के फूल भी चढ़ाते हैं
1: जी जी।
0: तो इसमें यही
1: सालों भर ये
0: सालों भर खेती की जा सकती है। तो गेंदा एक ऐसा फूल है जिसका कि सालों भर खेती बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अगर आप खेती फूलों की करने जा रहे हैं तो गेंदा और रजनीगंधा जो कि हमारे क्षेत्र में बरसात में अच्छा से हो जाएगा। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा किसानों को कि गेंदा जो आप लगाना चाहते हैं तो मिट्टी आपका रहेगा प्रश्न कि कैसा मिट्टी में होता है, तो इसी के लिए जो है हमारा दोमट मिट्टी जो है बहुत ही उपयुक्त है। दोमट मिट्टी और ऐसा मिट्टी जिसका कि पीएच जो है हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब लगभग 7 के करीब होना चाहिए। अगर मानिए थोड़ा अम्लीय है भी तो उसमें चूना जो है हम लोग 3 से 4 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर डालकर उसको उपचारित करने के पश्चात लगाएंगे तो वहाँ भी हमारा हर एक तरह का फसल जो है हो जाएगा
1: जी।
0: तो गेंदा में अब ये बात आती है कि इसका खेती कैसे करें, तो पहले जैसे अन्य फसलों की खेती करते हैं उसी तरह खेत की जुताई जो है कम से कम 2-3 बार कर लें। और इसके लिए जो है आप हम जानते हैं गेंदा 2 तरह का होता है, एक बड़ा गेंदा एक छोटा गेंदा
1: जी।
0: तो इसको जो है साइंटिफिक वे में जो है 2 भाग में 2 नाम से जाना जाता है, एक अफ्रीकन गेंदा और दूसरा फ्रेंच गेंदा। तो अफ्रीकन गेंदा वैसा गेंदा है जिसका फूल का साइज बड़ा होता है और फ्रेंच गेंदा वैसा है जिसका फूल का साइज छोटा छोटा होता है। तो अब उसमें प्रभेद जो है तो हम लोग जैसे कि बड़ा गेंदा का करने जा रहे हैं तो उसमें लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, ये वैरायटी जो है आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप छोटे फूल में जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपको रस्टी रेड हुआ, उसके बाद आपका हमारा एक वैरायटी है रस्टी रेड के अलावा टीना और अन्य वैरायटी, उसको आप जो है बृहद पैमाने पर कर सकते हैं। तो लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, उसके साथ पूसा नारंगी या पूसा ऑरेंज, ऐसा वैरायटी जो बृहद बड़ा फूल है जिसका कि माला बनता है।
1: अच्छा।
0: तो मैं किसानों को ये कहूँगा कि जो साइज में बड़ा है और अगर पूजा के लिए भी लगाना तो छोटा फूल दोनों को मिक्स करके लगाएं जिससे कि आप दोनों को फूल से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो खेत की जुताई करने के पश्चात जो मेरे द्वारा बताया गया प्रभेद था उसका बीज को मंगा लें और इसको जो है हम लोग 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 किलो बीज लगता है।
1: अच्छा।
0: जो किसान जरा सक्षम है तो हम तो कहेंगे कि इसको जरा उपचारित कर लें बीज को भी।
1: अच्छा।
0: तो कहेंगे कि गेंदा का बीज का क्या उपचारित कैसे उपचार होगा, तो इसको उपचार जो है दवा से न करके इसको जो उपचार हम लोग करेंगे एक कल्चर आता है।
1: अच्छा।
0: जो कि फफूंदी है, तो इस फफूंद का नाम है एजो स्पाइरिलम।
1: अच्छा।
0: इसका जो है 200 ग्राम लिए एजो स्पाइरिलम को और उसमें 50 ग्राम मार डाल दिए।
1: अच्छा।
0: उसको अच्छा तरह से मिलाने के बाद 1.5 किलो बीज मिलाकर उसमें मिलाकर और उसको थोड़ा फैलाकर छोड़ दिए 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जो है तैयार पौधशाला में बराबर कहा जाता है तैयार पौधशाला, ऐसे नहीं कि जैसे मन तैसे छिट दिए, उसको लाइन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करीब 1 से 1.5 इंची कुराई जमीन से लकीर देते हुए उसे गहराई में बीज को गिराएं और उस पर भुरभुरा खाद से उसको ढक दें।
1: अच्छा,
0: उसके बाद ये जो है आपका तैयार हो जाता है।

0: चार सप्ताह में।
1: अच्छा,
0: तो समझिए कि 25 से 30 दिन में तैयार हो गया तो आप इसको रोप सकते हैं। अब पूछेंगे रोपने का समय क्या होता है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि वर्ष में 3 बार कर सकते हैं, जून जुलाई, सितंबर, जनवरी फरवरी।
1: अच्छा,
0: नवंबर दिसंबर इसलिए नहीं लेते हैं कि उस समय जो है जारा ज्यादा होता है, ज्यादा जारा होने से अगर जो आप पौधा लगाते भी हैं तो उसका ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ के और होता है उसके बाद कीड़ा उड़ा लगने का भी ज्यादा संभावना होता है। तो अगर आप अभी किसान लगाना चाहते हैं तो अभी किसान अभी समय हमारा है, उसमें मेरे गया बताए गए प्रभेद को ले लें और लेने के पश्चात इसको अगर ये आप लगाना चाहते हैं तो इसको लगाने का जो दूरी होगा 45x20, अगर गेंदा लगा रहे हैं तो इसको 45x20 सेंटीमीटर पर लगाएं, और लगाने से पहले खाद डालना है। तो इसका खाद का जो अनुशंसित मात्रा होगा 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 60 kg पोटास।
1: अच्छा,
0: तो इसका जो है आपका नाइट्रोजन जो है उसको हमको 3 भाग में देना है, मानिए कि 33-33-33 किलो बांट दिए, तो 33 किलो जो है लास्ट जो खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय डाल दें, और रेस्ट टू डोज जो बच रहा है आपका उसको 30 दिन पर और 60 दिन पर डालें
1: जी,
0: कोराई करके
1: जी।
0: जिसमें 30 दिन के बाद जो डालने जा रहे हैं तो थोड़ा निकोनी कर दें जैसे कि खरपतवार निकल जाए, उसके बाद खाद डालें और मट्टी चढ़ा दें पौधे पर
1: जी, जी।
0: और इसमें एक विशेष ध्यान देना कि जब पौधा हमारा बिजरा तैयार होने के बाद जब लगा दें, लगाने के बाद 15-20 सेंटीमीटर कहने का मतलब 30 दिन का 25 से 30 दिन का हो जाए तो उसका ऊपर का शीर्ष भाग को हम लोग निपिंग कर देते हैं। निपिंग करने का मतलब उसका कलिका को ऊपर वाला कलिका को काट देते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: काटने का मेन मकसद ये है कि ब्रांच ज्यादा निकले,
1: ज्यादा निकले।
0: अब ब्रांच जब हमारा जो साइड ब्रांच निकलने लगेगा वो भी अगर हमारा जब 6 इंच का हो जाता है तो उसका भी निपिंग कर दें, उसका शीर्ष भाग को तोड़ दें।
1: अच्छा अच्छा,
0: जिससे कि एक कैनोपी तैयार होगा, पौधे का एक विकास संरचना बनेगा, उसमें फूल ज्यादा आएगा।
1: अच्छा,
0: अगर ऐसे डायरेक्ट आप छोड़ देते हैं और फूल आने लगता है तो ब्रांच नहीं बनने के चलते फूल कम आता है।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद जो है आप अगर इसमें अब रोग है तो रोग में जैसे कि कीड़ा जो लगता है और बीमारी लगता है, तो कीड़ा अगर लग रहा है तो फिप्रोनिल दवा आता है, इसका जो है 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो कीड़ा का निदान हो जाएगा। अगर वो नहीं दवा है तो इमिडाक्लोरोपीड है, 1 से 1.5 ml दवा है, मिलाकर छिड़काव करेंगे आ जाएगा। मानिए कि कोई रोग लग गया है, जैसे कि आप उसका पौधे में गलन होने लगा, पौधा जो है उस पत्ते के ऊपर धब्बा आ रहा है, तो उसमें जो है आपको कार्बेंडाजिम दवा हुआ है, चाहे ब्लाइटॉक्स दवा हुआ, अगर गलन है तो ब्लाइटॉक्स डाल देंगे 3 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर ऐसी पौधे पर धब्बा आ रहा है तो कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो इससे आप निदान पा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसके साथ साथ जो है अगर इसका उपज जो है तो छोटा वाला जो हमारा ये होता है गेंदा, उसका उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
1: अच्छा,
0: लेकिन बड़ा वाला गेंदा जो यही है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो आप अगर आप इस्टीमेट कीजिए कि अगर आप अपने खेत से 20 रुपया, आप एक साधारण सा सोचिए ना कि आप जब दिवाली वाली में माला खरीदने जाते हैं, दुर्गा पूजा में माला खरीदने जाते हैं तो मिनिमम रेट रहेगा तो 30 रुपया, नहीं तो अगर बाजार में उपलब्धता नहीं है, अगर बाहर से कम ही माला आया है, चाहे किसी तरह से नहीं होने से 50 से 60 रुपया 70 रुपया में एक छोटा सा माला देता है, तो समझिए कि अगर अन्य फसलों की तुलना करें तो इसमें इनकम ज़्यादा है। किसान जो है आसानी से 2 से 3 टाइम ज़्यादा इसमें कमाई कर सकते हैं। उसके बाद रजनीगंधा हुआ, रजनीगंधा भी बरसात में लगाया जा सकता है, जून जुलाई लगाने का अच्छा सीजन है।
1: और ये कब तक आएगा इसका मैंने फल?
0: हाँ, फूल ये जो है अगर गेंदा लगाए हैं तो 60 दिन से फूल देना शुरू कर देगा।
1: अच्छा,
0: और ये रजनीगंधा लगाए हैं तो ये 80 से 90 दिन के बीच में शुरू कर देगा
1: और फिर लगातार देगा,
0: वो लगातार देगा, वो 2 साल तक आप फूल ले सकते हैं रजनीगंधा में।
1: अच्छा,
0: है ना,
1: उसके बाद
0: जो है फिर आपको नया ये करना होगा
1: रजनीगंधा।
0: तो रजनीगंधा का कॉर्म्स लगाया जाता है, उसके अंदर प्याज टाइप का बैठता है नीचे जड़ के पास।
1: अच्छा,
0: उसका जो है वेट होना चाहिए कम से कम, जो हम लगा रहे हैं कि व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं, हमारा अच्छा उत्पादन मिले, तो 25 से 30 ग्राम का कॉर्म्स जो है उसको हम लोग लेते हैं। इस कॉर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, बेविस्टीन या कार्बेंडाजिम का 2% घोल, मतलब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर, और उसका कॉर्म्स जो है, चाहे उसको बल्ब्स कहिए, प्याज जैसा होता है, इसको पानी में डाल के आधा घंटा छोड़ देते हैं।
1: अच्छा,
0: दवा से इसलिए कि उसका बीज उपचार हो रहा है
1: जी।
0: इस बीज उपचार करने के बाद इसको छाया में रख देते हैं, छाया में जब हमारा सूख जाता है उसके बाद उसको हम लोग इसका जो है लाइन से लगाते हैं, तो इसका लगाने का जो दूरी होगा वो होगा 40x20 सेंटीमीटर।
1: अच्छा,
0: और इसको हम लोग लगाएंगे तो करीब 1 हेक्टेयर में हमारा पौधे का संख्या जो है 1,15,000 से 20,000 पौधा जो है हमारा 1 हेक्टेयर में अकोमोडेट हो जाता है।
1: वाह,
0: है ना। और उसमें भी लगाने के पहले अगर खेत का जैसा मैंने गेंदा का बताया उसी तरह इसमें भी खेत की जुताई करने के बाद इसमें खाद का मात्रा जरा बढ़ा दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: जैसे वहाँ बोले 100-60-60 तो यहाँ देना है 150 किलो नाइट्रोजन, और फास्फोरस जो है हमारा 75

0: केजी, पोटास 75 केजी।
1: अच्छा, गुलाब की बात हम संक्षिप्त में करना।
0: हाँ, गुलाब के लिए अभी सीजन नहीं है, इसीलिए जारा में अक्टूबर में हमको तत्पर होना होगा।
1: अच्छा,
0: गुलाब को लगाने के लिए, गुलाब का जो है हमारे यहाँ दो तरह का है। जैसे कि एक आप लोग देखते होंगे जो अभी आप लोग मार्केट में लेने जाते हैं, तो एक मतलब कि जो कोट उट में लोग लगाते हैं, चाहे किसी को गिफ्ट देते हैं छोटा वाला, उसको कहते हैं डच रोज।
1: अच्छा,
0: ये डच रोज जो है इसी के लिए पोली हाउस जरूरी है।
1: अच्छा,
0: और ये सब जो भी हम रजनीगंधा और गेंदा बोले, ये ओपन कंडीशन में भी आराम से हो जाएगा। तो अगर आप संरचना बना लेते हैं, उसके बाद खेती करते हैं, तो उससे आप जो है हमारे केवी के चाहे जेडआरएस में आकर संपर्क करके आप जो है इसको भी खेती कर सकते हैं। तो रजनीगंधा भी ऐसा फ्लावर है जिससे कि आप अगर प्रति हेक्टेयर देखें तो आपका उपज जो है, अगर आप फूल बेच रहे हैं तो करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जैसा मैंने रजनीगंधा के संदर्भ में बताया, तो रजनीगंधा के में भी दो तरह का फूल होता है। एक होता है सिंगल फूल आता है पौधे पर, और एक ऐसा पौधा होता है वैरायटी प्रभेद है जिसमें गुच्छा में आता है, जिसमें कि हम लोग डबल फूल उसको कहते हैं। तो इसका प्रभेद अलग अलग है। जैसे कि सिंगल फूल वाला का क्या उपयोगिता है, इसे तेल अच्छा निकलता है, इसमें गंध अच्छा होता है, ऐसा गजरा उजरा बनाने में सिंगल फूल वाला का उपयोग होता है।
1: और गुच्छा
0: डबल वाला का है सजावट उजावट में, इससे उसका पैसा जो है सिंगल वाले में ज्यादा इनकम होता है।
1: अच्छा,
0: तो इसका जो सिंगल वाला का प्रभेद है उसमें जो है हमारा रजनी है, प्रवजल है, और इसका जो अगर हम खेती करते हैं तो हमको अच्छा इनकम देगा। उसी तरह अगर डबल है, डबल वाला में जो है हमारा हैदराबाद डबल है, उसके बाद आपका ये सुभाषिनी है, फिर आपका वैभव है, ये सब प्रभेद जो है ज़्यादा ये है कारगर है, और इसको अगर किसान मंगा कर लगाते हैं तो इनका जो है फूल का जो उपज है ज़्यादा अच्छा मिलता है।
1: और ये तो हम ग्रामीण बंधु बातें कर रहे हैं फूलों की खेती की, और उसमें भी गेंदा रजनीगंधा वगैरह फूलों की खेती की, जिसकी अभी आप तैयारी कर सकते हैं किसान भाई बहन, सालों भर इसकी खेती की जाती है। और इससे छुट्टी कोई और महत्वपूर्ण बात है
0: इसमें, यही करना है किसानों को कि ऐसे जगह पर लगाएं जहां पानी नहीं लगे, और अगर थोड़ा सा इसमें भी तत्पर्य रहना है कि कार्बनिक खाद का उपयोग ज़्यादा करना है।
1: जी,
0: जैसे हमने खाद का मात्रा बताया, संशोधित मात्रा एक्ट में बताया 100-60-60, दूसरे में बताया 150-75-75, लेकिन गोबर का मात्रा आवश्यक है। गोबर जो है 20 क्विंटल से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जितना अच्छा कार्बनिक हमारा सोर्स अगर जमीन में उपलब्ध रहेगा, पौधा में फूल उतना अच्छा मात्रा में मिलेगा। और उसके बाद रजनीगंधा में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बहुत सारा केमिकल भी है।
1: अच्छा अच्छा,
0: जिसको कि अगर हम लोग छिड़काव करें, जैसे GA3 जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं जिसको, इसका जो है मात्रा अगर 50 से 100 PPM जो है, इसको हम लोग 40-50-60 दिन के अंतराल पर इस मात्रा का छिड़काव करें तो हमारा फूल अच्छा आता है। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे बोरिक एसिड, उसका 1% 0.1% मतलब 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर हमारा फेरस सल्फेट डालना है तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में।
1: अच्छा,
0: इस तरह अगर हम लोग इसका उपयोग करें, पौधे के ऊपर छिड़काव करें तो हमारा बेहतर होगा। जिंक सल्फेट है उसका 5 ग्राम 1 लीटर पानी में। तो इस सबसे जो है फूल का जो है साइज अच्छा होता है और लस्टर होता है और फूल का क्वालिटी अच्छा नहीं।
1: आपसे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार जी, आप कार्यक्रम से जुड़े और फूलों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे फूलों की खेती में संभावनाएं, भेंटवार्ताकार थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार, और अब बात करते हैं आलू की खेती की वैज्ञानिक विधि। किसान भाइयों, जलवायु इसके लिए आलू के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु की जलवायु चाहिए। कंद यानी आलू बनने के समय तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छी जल निकासी वाली बलुई मिट्टी या बलुई दोमट या हल्की दोमट मिट्टी, इसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो, वह खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और खेत की तैयारी आप कैसे करें, मिट्टी पलटने वाले हल से 1 गज़ जुताई करें, इसके बाद कल्टीवेटर या डिस्क हैरो से 2 से 3 बार तिरछी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें। जुताई के समय प्रति हेक्टेयर लगभग 200 से 250 किलोमीटर सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें।
3: और इसकी उन्नत किस्में हैं अगेती किस्में, कुफरी फुकराज, कुफरी चंद्रमुखी, जो 70 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। मध्यम और पछेती किस्में हैं कुफरी सूर्या, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी गिरिराज, कुफरी आनंद। बुआई का समय सामान्य फसल के लिए अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से नवंबर का प्रथम सप्ताह यानी 5 से 20 नवंबर सबसे उत्तम होता है। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 क्विंटल बीज, 25 से 35 ग्राम वजन और 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कंद

0: बुआई से पहले कंदों को एमिसन 6-5 ग्राम प्रति लीटर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 500 मिलीग्राम प्रति लीटर के घोल में 15 मिनट डुबोकर उपचारित करें। इसकी दूरी कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार यानी मेड़ की दूरी 45-40 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई हमेशा सुबह या शाम के समय करें। नाइट्रोजन की मात्रा 120 से 150 किलोग्राम, लगभग 330 किलोग्राम यूरिया, फास्फोरस 80 से 100 किलोग्राम, लगभग 200 किलोग्राम डीएपी और 560 किलोग्राम एसएसपी, पोटाश 80 से 100 किलोग्राम, लगभग 170 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब सिंचाई की बात करते हैं तो पहली सिंचाई बुआई के 10 से 20 दिन के बाद करें। इसके बाद मिट्टी और मौसम के अनुसार 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। कंदों की खुदाई से 10 दिन पहले सिंचाई पूरी तरह बंद कर दें। बुआई के करीब 30 से 35 दिन के बाद जब पौधे 15 सेंटीमीटर से ऊँचे हो जाएं, तब निराई गुराई करके पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें ताकि आलू धूप में हरे ना हों। पछेती झुलसा और अगेती झुलसा जो रोग है, इसके बचाव के लिए इंडोफिल M45 या ब्लू कॉपर का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। माहू कीट नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। जब पौधे पीले पड़कर सूखने लगे तो ऊपर के सूखे पत्तों को काट कर हटा दें और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आलू की खुदाई करें और खुदाई के बाद सड़े कटे आलू अलग करके अच्छे कंदों को छांट लें और छायादार और हवादार स्थान या शीतगृह में भंडारित करें। ये हुई बातें आलू की वैज्ञानिक खेती की। और आज का मौसम
1: पलामू में आज का तापमान रहा अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 92% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 56% रिकॉर्ड की गई।
0: और चलते चलते अब बात करते हैं मृदा में पर्याप्त नमी क्यों जरूरी है। ग्रामीण भाइयों, खेती और पौधों के अच्छे विकास के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी होना बहुत ही जरूरी है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे पोषण तत्वों का अवशोषण, पौधे अपनी जड़ों के जरिए पानी में घुले हुए पोषक तत्व यानी खाद और मिनरल्स को अवशोषित करते हैं। नमी न होने पर पौधे भोजन नहीं ले पाते हैं।
1: बुआई के बाद बीज को उगने यानी अंकुरित होने के लिए उचित नमी की आवश्यकता होती है। सूखी मिट्टी में बीज का विकास रुक जाता है। यूरिया या अन्य

0: यूरिया या अन्य खाद देने के लिए खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा धूप या हवा से खाद उड़ सकती है या पौधे उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। मिट्टी के अंदर मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव नमी में ही सक्रिय रहकर जैव पदार्थों को इकलाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। पर्याप्त नमी रहने पर पौधे तेज धूप और लू के थपेड़ों से बचे रहते हैं और उसका तना और पत्तियां स्वस्थ रहती हैं।
1: तो किसान भाइयों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए रागनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ज पर। अभी आप सुन रहे थे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। थोड़ी देर में हम प्रसारित करेंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी सुनने वाले तमाम ग्रामीण भाइयों को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: ग्रामीण भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मटर की खेती वैज्ञानिक विधि से कैसे करें। मटर भारत की एक प्रमुख दलहनी और सब्जी वाली फसल, इसकी खेती ठंड के मौसम में की जाती है। वैज्ञानिक तरीके से मटर की खेती करने से बंपर पैदावार और उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है। मटर की वैज्ञानिक खेती की पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। इसके लिए मटर ठंडे और शुष्क मौसम की फसल है। इसके विकास के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छा होता है। पाला यानी फ्रॉस्ट इस फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या मटियार दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 बीच होना चाहिए। जल भराव वाली भूमि इसकी खेती के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने उद्देश्य दाने के लिए हरी फलियां सब्जियों के लिए क्षेत्र के अनुसार सही किस्म का आप जरूर चयन करें। सब्जी वाली किस्में हैं हरी मटर, अर्पणा, आर्कन, पंत मटर 3, काशी नंदिनी और आजाद मटर 1। दाने वाली किस्में हैं प्रकाश रचना पंत मटर 5 और HUDP 15। खेत की तैयारी और बीज उपचार कैसे करें। खेत की जुताई, पहले जुताई मिट्टी मिटने वाले हल से करें और उसके बाद 2 से 3 जुताइयाँ कल्टीवेटर या हैरो से करके पाटा लगा लें। मिट्टी भुरभुरी और समतल होनी चाहिए। बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है। राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर से बीजों को उपचारित अवश्य करें। इसे जड़ों में गांठें बनती हैं और हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देती है। फंगस से बचाने के लिए बुआई से पहले कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लें।
1: अब बात करते हैं बुआई का समय, बीज की मात्रा और तरीका का। इसका सही समय है मटर की बुआई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर का मध्य से नवंबर का मध्य तक होता है। अगेती बुआई सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी की जा सकती थी। और बीज की मात्रा छोटी दाने वाली किस्मों के लिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ और बड़ी दाने वाली किस्मों के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़। दूरी और गहराई की बात करते हैं तो बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी लाइन में बोएं। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो गोबर की खाद बुआई से 3-4 हफ्ते पहले 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद को खेत में सबसे पहले आप मिला दें। रासायनिक खाद प्रति एकड़ लगभग 12 से 15 किलोग्राम 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। चूँकि मटर एक दलहनी फसल है इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा दी जाती है ताकि जड़ें मजबूत हों। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही कतारों में देनी चाहिए।
0: बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की तो मटर की फसल को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों, आमतौर पर 2 से 3 सिंचाइयाँ पर्याप्त होती हैं। तो पहली सिंचाई आप बुआई के 30 से 35 दिन बाद यानी फुलाने से पहले करें और दूसरी सिंचाई फली बनते समय यानी दाने भरते वक्त करें। ये ध्यान रखें कि फूल आते समय खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जल भराव जहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जड़ें सड़ सकती हैं। खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई कैसे करें यानी वीट मैनेजमेंट कैसे करें। तो फसल के शुरुआती 30 से 45 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद पहली निराई गुड़ाई कर लें, इससे मिट्टी में हवा का संचार भी अच्छा होता है। कीट और रोग नियंत्रण यानी पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट कैसे करें। तो प्रमुख कीट फली छेदक यह इल्ली फलियों को काट कर अंदर के दाने खा जाती है। जो फली छेदक होती है वो मटर के दानों को ऐसे खाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं या आवश्यकता अनुसार नीम आधारित कीटनाशक या अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। इसके प्रमुख रोग हैं पाउडर जैसी फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू उसे कहते हैं। पत्तियों और फलियों पर सफ़ेद चूर्ण सा जम जाता है। इसकी रोकथाम के लिए घुलनशील सल्फर 80% WP या घुलनशील फफूंदनाशक का छिड़काव करें। हार्वेस्टिंग भी आप करें, तुड़ाई और कटाई कैसे करें। तो यदि आप हरी मटर यानी सब्जी के लिए खेती कर रहे हैं तो फलियां पूरी तरह भरने पर दानेदार खोने पर हाथों से दो

तीन बार चौड़ाई कर लें और दाल या सूखे दानों के लिए कर रहे हैं तो पौधे पीले पड़ जाएं और फलियां सूख जाएं, तब पूरे पौधे कटाई करके धूप में सुखा लें और मड़ाई कर लें यानी थ्रेशिंग कर लें। आइए इसके बाद आपको सुनवाते हैं भरत सिंह भारती की आवाज़ में लोकगीत।

0: भरत सिंह भारती की आवाज़ में आप सुन रहे थे अभी लोकगीत, और आइए आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। जाड़े की सब्जियों में प्रबंधन, वार्ताकार है डॉक्टर रमेश कुमार, कृषि विशेषज्ञ, बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बात है सब्जियों की खेती की। जी हाँ, हमारे किसान भाई विशेषकर रबी में तरह तरह की सब्जियों की खेती करते हैं, और उनका प्रबंधन करना, उनकी देख रेख करना वैज्ञानिक तरीके से अति आवश्यक हो जाता है, ताकि वो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। और किस प्रकार हम प्रबंधन करें, कैसे देख रेख करें, किस प्रकार सिंचाई व्यवस्था रखें, कैसे हम उर्वरक का प्रयोग करें, कीटनाशी किस प्रकार से प्रयोग करें, इन तमाम बातों पर प्रबंधन से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: धन्यवाद किसान बंधु, सबों को मेरा नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो ये बताया जाए कि हमारे किसान भाई अभी जो मुख्य मुख्य सब्जियां लगा रहे हैं, उसके प्रबंधन कैसे करेंगे?
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी मौसम जो है हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में
1: जी
2: सब्जी के लिए बहुत ही खास करके मौसम जो रबी हमारा है, इसमें हमारे पलामू क्षेत्र में भी किसान जो हैं विभिन्न तरह की सब्जियों को अपने बारी में बृहद पैमाने पर खेतों में उगा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे हमारा अभी का सब्जी में टमाटर, बैंगन, मिर्चा, गोभी वर्गीय फसल, बीन्स, मटर, आपको चुकंदर, मतलब कि हर एक तरह का सब्जी जो है हमारे रबी सीजन में किसान जो है उत्पादन कर रहे हैं
1: जी।
2: अब यहाँ पर खास बात यह आती है कि किन किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दे जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा हो। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान बंधुओं, इस बार तो हमारा सौभाग्य, हमारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बारिश भी हमारे वर्षा के में बहुत अच्छा हुआ है और नमी हमारा खेत में वर्तमान है
1: जी।
2: तो जो भी आप अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसका एक प्लानिंग बना लें, और प्लानिंग के तहत ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि कौन सा फसल का चुनाव करें और कितने क्षेत्र में करें, और विभिन्न फसलों की खेती एक समय में करें
1: जी।
2: ऐसा नहीं कि एक फसल को करें या किसी तरह महामारी या चाहे रोग व्याधि के कारण आता है, जिससे कि किसान बंधु का एक फसल ये होने के चलते उनको काफ़ी
1: नुकसान
2: उठाना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगी, किसी चीज़ की खेती करें तो सर्वप्रथम खेत की जुताई जो है अच्छी तरह से कर लें। खेत की जुताई करने के पश्चात उसमें जो है खाद में हमारे यहाँ खेती में भी विशेष तौर पर देखें बहुत सारे किसान जो हैं सब्जी में हल्का फुल्का ही गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गोबर हमारा अमृत है
1: जी
2: खेत के लिए। तो उस संबंध में मैं ये कहूँगा, जैसे कि अभी गोभी लगाने जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ के किसान जो हैं आलू और गोभी का बृहद पैमाने पर खेती करते हैं, तो इस संदर्भ पर और टमाटर भी करते हैं, गोभी, फ्रेंच बीन, बहुत सारे सब्जियों करते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो अभी जो इन लोगों का रुझान जो है आलू, गोभी वर्गीय, बीन्स इत्यादि में बहुत ज़्यादा रहता है, काहे कि इससे उनका उत्पादन और इसके साथ दाम जो है अच्छा मिल जाता है। तो जैसे अभी आलू की खेती करने जा रहे हैं, गोभी की खेती करने जा रहे हैं, बीन्स की खेती करने जा रहे हैं, मटर की खेती करने जा रहे हैं, किसी तरह की खेती माने आलू का ही खेती करने के लिए उत्साह है, तो आलू का खेती में जैसे खेत की जुताई अच्छी तरह से 2-3 बार कर दें, या कोशिश करें कि जहां पानी नहीं लगता हो वैसे क्षेत्र में ही सब्जी की खेती करें। कारण कि हो सकता है कि आपको बरसात में वैसा समय आ जाए कि पानी जो है लंबे समय पर हो, तो उस समय भी आपको दिक्कत होगा। तो सब्जी की जब भी खेती करें तो ऊंचे जमीन पर, अगर नहीं तो जिनका जमीन ऊंचा नहीं है तो मेड़ बना के उस पर लगाएं, चाहे किसी तरह का ही फसल हो। तो जुताई करने के पश्चात उसमें खाद की मात्रा, आलू के संदर्भ में बता देता हूँ आपको, फिर गोभी का बता देता हूँ, और फ्रेंच बीन के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि समय सीमित है, इसमें जितना क्रॉप जो है 2-3 तरह का जो हमारा अहम रूप से जो खेती किया उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ
1: जी।
2: आलू के क्षेत्र के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप खेत की जुताई 2-3 कर दिए उसके बाद खाद की मात्रा एक संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा में जैसे कि हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो इसकी मात्रा जो होगी 150-80-120 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके साथ साथ अगर आलू की खेती कर रहे हैं तो उसमें सल्फर की भी मात्रा 24-25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से डालें।
1: अच्छा,
2: इससे आलू का अच्छा आपका बढ़वा। अब डालने का जो क्या तरीका होगा, किसान को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी नेत्रजन खाद है जिसको कि आप लोग यूरिया के टर्म में यूज करते हैं, तो ऐसे खाद को आप बांट के करें।
1: अच्छा,
2: जितना भी बैठने वाले जमीन के अंदर में है चाहे अन्य फसल में भी नाइट्रोजन खाद का एक साथ एक मुश्त में लगाने से पहले नहीं देना चाहिए।
1: अच्छा,
2: तो इस संबंध में यही कहूंगा कि आप जो है पहले नाइट्रोजन खाद को बांटने कम से कम 2 भाग कर दे, जैसे मैंने 150 kg बोला नाइट्रोजन, तो इसमें 75 kg नाइट्रोजन खेत के लास्ट तैयारी के समय ही खेत में डाल दें, फास्फोरस जो 80 kg दे उसकी पूरी मात्रा डाल दें 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 एकड़ में, और उसके

0: पंक्ति से पंक्ति और पौधा से पौधा जो हमारा 20 सेंटीमीटर का रहेगा और इस क्रम में लगाएंगे तो आपको एक हेक्टेयर में आपका आलू का जो मात्रा आएगा 25 से, अगर 25 ग्राम का ले रहे हैं तो 25 क्विंटल मान ले, 30 ग्राम का ले रहे हैं तो 30 क्विंटल, तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से बीज का मात्रा लगता है। लगाने से पहले किसी भी सब्जी का आप पहले उपचारित कर लें, तो उपचारित के रूप में हम लोग जैसे कर्बिंडा जिम करते हैं, थीरम करते हैं, बेगिस्टीन करते हैं, आलू के केस में है तो इसमें जो है हम लोग रिडोमिल एमजीट से करते हैं, जैसे कि 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाए उसमें आलू को डाले और आलू को डालने के 10 से 15 मिनट के बाद निकाल कर और उसको छाए जगह पर सुखा देना है। सुखाने के बाद क्या होगा कि कहने का मतलब है कि उस पर उसका अंश आ जाए, तुरंत नहीं लगा देना है जमीन में, और वो जो अंश जो हमारा आ जाएगा तो फफूंद नाशी हमारा और हो जाएगा और फफूंद नहीं लगेगा, जैसे कि आने वाले समय में जो अंगमारी का रूप में जो है आघात और पिछात जो आता है उससे हम बच सकते हैं, जैसे कि आपका जो झुलसा का भी अटैक बहुत ज्यादा होता है उसमें भी वो रेसिस्टेंसी डेवलप कर देता है, मतलब विकास कर देगा, तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। खाद देने के बाद आप आलू लगा दिए, उसके बाद जो हमारा रेस्ट जो नाइट्रोजन आधा केजी बचा, आधा मात्रा बचा हुआ था 75 केजी, उसको 25 से 30 दिन निकोनी करने के पश्चात उसको खेत में डाल के मट्टी चढ़ा देना है जिससे कि हमारा पौधा स्वस्थ और उसका जो सुदृढ़ विकास हो सके
1: जी।
0: उसके पश्चात सिंचाई की बात आती है तो आलू लगाने के पश्चात जो है आप जो है 4 से 5 दिन के बाद ही सिंचाई करें, पहला सिंचाई
1: अच्छा
0: 3-4 दिन भी करें तो ज्यादा अच्छा है, तुरंत नहीं पटाना चाहिए जिससे उसका अंकुरण भी हो जाता है, और उसके पश्चात अपना नमी को देखते हुए
1: अच्छा।
0: खेत में अगर नमी वर्तमान है तो 8 से 10 दिन 12 दिन के अंतराल पर करें, नमी की कमी देख रहे हैं ऊंचा जमीन है नमी नहीं उतना है तो उसमें आप जो है 7 से 8 दिन पर करें, मतलब कि खेत का कंडीशन देखते हुए आपको सिंचाई
1: करना है।
0: अब आता है रोग व्याधि, किसी भी फसल को जब आप लगाते हैं तो रोग व्याधि तो आम है, वो तो लगना ही है, तो आलू के केस में देखा जाए तो लाही का आक्रमण जो है बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारे कोमल पौधों का पत्तों से रस चूसकर पौधे को समाप्त बर्बाद कर देता है, जिससे कि उसमें कि अगेती अंगमारी पिछेती अंगमारी का आक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे पौधा पूरा लगेगा कि हमारा जल गया झुलस गया, तो उसको रोकने के लिए है कि आप लोगों को जो है आप इमिडा क्लोरोपीट घोल, इसको जो है प्रोपेनोफेस, ये सब जो है अगर ये दे रहे हैं आपका इमिडा क्लोरोपीट दे रहे हैं तो आप 1/2 ml दवा 1 लीटर पानी में, अगर प्रोपेनोफेस फॉस दे रहे हैं तो आप जो है 1.5 ml दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो आपका ये जो है आप लाही से निदान पा सकते हैं
1: जी।
0: उसके बाद अंगमारी के रूप में देखा जाता है पत्ते के ऊपर धब्बा आना, धब्बे में देखिएगा कि नया पुराना पत्ता जो हमारा आलू का है उस पर चमकीला टाइप का धब्बा आ रहा है और वही धब्बा जो है धीरे धीरे जब वो पुराना नीचे से ऊपर बढ़ता है
1: जी जी।
0: तो वो हो गया अगेती अंगमारी, और वही अंगमारी पिछेती में क्या होता है कि पत्ता के किनारे से ब्राउनिस होगा सूखते जाएगा और पूरा पत्ता एकदम मुरझा के कुकुर जाएगा और पौधा पूरा सूख जाएगा
1: जी।
0: तो इस सबसे बचने के लिए डाइथेन M45 जो दवा है या रिडोमिल MZ बताएं, उस दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो आप बच सकते हैं, इसे निदान पा सकते हैं। इसके साथ साथ कर्बिंडा जिम से भी आप उपचारित कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे कि आप फफूंद नाशी से बच सकते हैं
1: जी।
0: और कीटनाशी से बचने के लिए मिडा क्लोरोपीड हुआ, और हाँ एक चीज और आता है कि जो बिजरा बनाते हैं जो जो फसल जैसे सब्जी का है और जो गाछी बनाना पड़ता है उसमें भी कीट का आक्रमण ज्यादा होने से होता है, गाछी का ही नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें भी जो है कॉटॉप हाइड्रोक्लोराइड एक दवा आता है 4G 4 ग्रेन्यूल है, मतलब कि दानेदार है, इसका 5 ग्राम दवा 1 square meter में छिड़कने के पश्चात उसमें अगर आप बीज गिराते हैं तो आपका कीट का आक्रमण कम हो जाता है, जिससे कि आप कीट का एक रेसिस्टेंसी आ जाएगा, पौधा जो है हमारा सुदृढ़ होगा और आगे रोग से लड़ने का ताकत भी होगा और अच्छा विकास करेगा। इस तरह अगर हम इन पैमानों को अपनाएंगे तो हमारा खेती अच्छा होगा। अब हम बात करें कि जैसे कि गोभी,
1: अच्छा
0: गोभी भी हमारे यहाँ बृहत पैमाने पर लगता है, मटर भी लगता है, फ्रेंच बीन भी लगता है, तो गोभी में बात किया जाए तो गोभी जो लगाने जा रहे हैं तो अभी जो आप लगाएंगे तो आप पिछात किस्म का ही लगाएंगे,
1: अच्छा।
0: जैसे स्नो बॉल हो गया, डानिया हो गया, माघी हो गया, ये सब वैरायटी आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको जो है 1 हेक्टेयर के लिए 800 ग्राम, अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं तो 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का जरूरत पड़ेगा। खाद की मात्रा जहां तक है तो आप इसमें खाद जो देंगे 150 kg, इसमें जो है 120 kg नाइट्रोजन देंगे और 60-60 kg फॉस्फोरस और पोटास देंगे। तो इसमें जो 120 kg नाइट्रोजन बोला इसको भी 2 भाग में बांट लेना है, प्रथम भाग जो है हमारा 160 kg जो पड़ेगा उसको लास्ट खेत की तैयारी के समय, और शेष बचा हुआ 30 दिन के बाद निकोरनी करने के पश्चात उसको लगाकर उसको मिट्टी चढ़ा देना है, जिससे कि हमारा पौधा सुदृढ़ हो। और जो उसमें भी देखते हैं कि बहुत सारा कीट का आक्रमण होता है, तो अगर ऑर्गेनिक के रूप में भी आप अगर

0: जैविक खाद जैविक दवा का उपयोग करने तो डिपेल हुआ, डेल्फिन हुआ, तो डेल्फिन का अगर छिड़काव करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से तो आपका जो पौधा में कीड़ा नहीं लगता है। उसके बाद आपका नीम निर्मित कीटनाशी है
1: जी जी।
0: जैसे निम्बेसिडीन, निम गोल्ड, निमोल इत्यादि बहुत सारा है, तो इसका भी जो है अगर 5 ml दवा 1 लीटर पानी में, 2 से 5 ml जैसा उसका आपका अटैक है, तो उसको अगर आप 2 से 5 ml दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं तो इससे आप उसका निदान पा सकते हैं। जैसे जानते हैं कि सब्जी जो है आज छींटे हैं, हो सकता है 2 दिन बाद आप ही खाएंगे, बाजार में ले जाएं, तो हमारे मानव शरीर पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट मतलब प्रभाव नहीं पड़े और अच्छा स्वस्थ आदमी का भी रहे और आप भी लाभ अच्छा से कमा सके।
1: और अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर पाले से हमारे किसान भाई बचाना चाहें फसलों को तो क्या करें?
0: बहुत ही अहम है कि हम आलू में चाहे अन्य फसलों में देखते हैं कि जाड़े के समय में ज्यादा चिलिंग, ज्यादा ठंडा पड़ने से पाला मार देता है, तो आलू के केस में चाहे अन्य फसलों के खेत में हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जड़ जो जमीन का सतह जो है सूखा नहीं रहे, उसी के लिए हमको नियमित सिंचाई समय समय पर करते रहना चाहिए। बहुत सारे किसान जो है हमारे यहाँ देखते हैं कि जैसे ज्यादा पाला पड़ने तो धुआं कर देते हैं, धुआं एक औरन का काम करता है जिससे कि हमारा आलू जो है आलू के पत्ते के ऊपर एक लेयर बिछा रहा है और डायरेक्ट जो हमारा जो ठंडे का आक्रमण हो रहा है उसको रोके रहा है। इसके साथ साथ एक दवा है सल्फर।
1: अच्छा,
0: सल्फर जो है 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, सपोज आपको 200 लीटर पानी का घोल बना रहे हैं, 100 लीटर का पानी तो उसका जस्ट दुगुना कर देना है ना, तो 1 ग्राम से 2 ग्राम, तो 1 ग्राम जो है 1 ग्राम तो 100 ग्राम इन 100 ग्राम दवा जो है 100 लीटर पानी में।
1: अच्छा,
0: इसका छिड़काव कर देंगे तो वे क्रीम का काम पत्ते पर करता है, पौधे पर करता है, जिससे कि जो डायरेक्ट हमारा जो ठंडा का ये आक्रमण हो रहा है
1: नहीं पड़ता,
0: उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है और पौधा हमारा अच्छा निकल जाता है जिससे कि हमारा उससे फलन भी अच्छा होता है।
1: और कोई छूटी हुई बातें और जानकारियां साझा की किसान भाइयों के साथ, इसके लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार किसान बंधु।
2: अभी आप सुन रहे थे जाड़े की सब्जी में प्रबंधन, इस विषय पर भेंट वार्ता, वार्ताकार थे डॉक्टर रमेश कुमार कृषि विशेषज्ञ और बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। अब बात करते हैं फसल अवशेषों का प्रबंधन। फसल अवशेष प्रबंधन यानी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट वर्तमान समय में कृषि और पर्यावरण दोनों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। फसल कटाई के बाद खेतों में जो अवशेष यानी जैसे धान, गेहूँ आदि की पराली बच जाते हैं, उनका वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान करना ही फसल अवशेष प्रबंधन कहलाता है। ग्रामीण भाइयों, फसल अवशेषों को जलाने के नुकसान भी होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, अवशेषों में आग लगाने से भारी मात्रा में जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और धूल के कण निकलते हैं, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य विशेषकर श्वसन संबंधी बीमारियों पर बुरा असर पड़ता है। मिट्टी की उर्वरता का भी ह्रास होता है। आग लगने से मिट्टी में मौजूद मित्र जीवाणु, केचुआ और आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट हो जाते हैं। ग्रामीण भाइयों, प्रबंधन के कुछ तरीके उपाय बताए, जैसे मशीनों का उपयोग, डीकम्पोजर का छिड़काव, एक्सीटू प्रबंधन। तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
3: प्रतिमा वर्मा को
2: अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे रांची केंद्र का प्रसारण। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
1: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
0: जिम्मेदारी निभाएंगे। यही है हमारा प्लान।
2: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
3: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
6: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
5: पिछले हफ्ते ही तो तुमने NSB कराई है।
6: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
7: NSV कराने।
6: पुरुष नसबंदी यानी NSV की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट में JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और CDPO परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर राज्य में सियासी घमासान, भाजपा ने लगाया अराजकता फैलाने का आरोप, कांग्रेस ने दी लोकतंत्र की दुहाई। दुमका छात्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, जांच के लिए बनी 11 सदस्यीय SIT, प्रधान जिला जज ने लिया स्वतः संज्ञान। दुर्गा पूजा को लेकर एक्शन में रांची नगर निगम, नगर आयुक्त ने पंडालों और रावण दहन स्थलों का किया निरीक्षण, साफ सफाई और नागरिक सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश। और चेन्नई में होने वाली 41वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 29 सदस्यीय टीम घोषित, साकेत मिंज संभालेंगे कप्तानी। और अब समाचार विस्तार से।

0: झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता ने परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल पर 50-50 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने का गंभीर आरोप लगाया। सरकार ने सीलबंद रिपोर्ट पेश की है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज खगेन महतो, परिंदा सिंह और कुमकुम देवी सहित सैकड़ों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सभी का स्वागत करते हुए दावा किया कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार निरंकुश हो चुकी है और इस सरकार से जनता का हर वर्ग बेहद नाराज है।
1: सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरा एक महीना का था। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चल और 17 अक्टूबर इसलिए पूरे एक महीने इसी बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही जन सेवा के क्षेत्र में उन्होंने 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किया।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पर आपत्ति जताई है। पत्र में श्री मरांडी ने संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों, ईडी की कार्रवाई और SC ST अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। इधर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: आज देश की जो परिस्थिति है पूरे लोकतंत्रता संकट में है और जिस तरह से FIR की प्रक्रिया को की जा रही है, जिस तरह से इतने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है वो सरासर गलत है। और ये केवल हमारा आरोप नहीं है, तमाम चीजें इसका सबूत के साथ सामने आई है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिल्कुल निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने JNU में 11 छात्राओं के कथित यौन शोषण मामले को लेकर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और इस मामले पर उनसे चुप्पी तोड़ने तथा तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। दुमका के काठीकुंड में 9वीं की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। DIG अंबर लकड़ा के निर्देश पर गठित यह टीम स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दिलाएगी। दूसरी ओर प्रधान जिला जज सुधांशु कुमार शशि ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को निःशुल्क विधिक सहायता और आर्थिक मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में बात PM विश्वकर्मा योजना से लोगों के जीवन में आए बदलाव की।
3: देश के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के हुनर को नई पहचान देने के साथ साथ उनके जीवन को सुगम बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प को साकार करते हुए शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना आज देश के लाखों परिवारों के आर्थिक उत्थान और समृद्धि का मुख्य आधार बन चुकी है। इस महत्वाकांक्षी पहल के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है,
4: मुझे संतोष है कि PM विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में

0: लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया, 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है।
1: प्रधानमंत्री की इसी सोच का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत पीपर टोली में रहने वाले कुम्हार परिवारों की जिंदगी में इस योजना ने एक बड़ा बदलाव ला दिया है। अब विद्युत संचालित चाक और सोलर लाइट की मदद से मिट्टी के सुंदर दिए, घड़े और दीपावली की सजावटी सामग्रियां बना रहे हैं।
2: पीएम विश्वकर्मा योजना के द्वारा मिला है ये, अभी जब से मशीन मिला है ये, तब से हम लोग थोड़ा आसान हो गया है बनाना। जो योजना है विश्वकर्मा योजना, उसे हमें बहुत लाभ हुआ है और बहुत सारे कुम्हार है उसे भी बहुत सारा लाभ हुआ है।
3: पहले तो हम लोग अच्छी से सीमेंट वाला में चक्का चला रहे थे, अभी हम लोग को मोदी की कृपा से दिया है, अभी उसका योजना से हम लोग को बहुत अच्छा चल रहा है।
1: खूंटी के पीपर टोली से आई ये तस्वीर साफ बयां करती है कि आधुनिक तकनीक और सरकारी मदद के संगम से किस तरह देश का पारंपरिक हुनर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
4: गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा नेता विनोद सिन्हा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गिरिडीह पहुंचे सांसद मनोज तिवारी का प्रस्तावित रोड शो सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया। सांसद ने इसे राज्य सरकार की साजिश बताते हुए अदालत जाने की बात कही है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
5: मैं इस प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, पूरा देश की जनता खिलाफ है। इसके कारण आप देखे होंगे 1500 लोग भी नहीं आए, और आए भी तो कोई युवा नहीं आया, वो कोई वृंदा करात घूम रही है तो कोई कहीं घूम रहा है। भाई व्हाट इज कम्युनिस्ट कनेक्शन इन प्रोटेस्ट, व्हाट इज आम आदमी पार्टी कनेक्शन इन प्रोटेस्ट, तो कहो कि हम राजनीतिक पार्टी है, उसके बाद करो, कोई बात नहीं।
4: दुर्गा पूजा के मद्देनजर रांची नगर निगम पूरी तरह एक्शन मोड में है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने आज शहर के प्रमुख पूजा पंडालों और रावण दहन स्थलों का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डोरंडा और धुरवा एचसी के वार्ड संख्या 39 और 40 सहित कई अन्य वार्डों का निरीक्षण कर साफ सफाई और नागरिक सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और अब मौसम का हाल। राज्य में आगामी दिनों में सुबह के समय कोहरा और कुहासा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 अक्टूबर को सुबह कोहरे के बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं 15 और 16 अक्टूबर को सुबह कुहासा रहने के बाद मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ ने चेन्नई में 23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 41वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 29 सदस्यीय टीम घोषित की है। अंतर्राष्ट्रीय धावक साकेत मिंज की कप्तानी वाली इस टीम में 14 बालक और 15 बालिका खिलाड़ी शामिल हैं, जिनका चयन पूर्वी क्षेत्र प्रतियोगिता के प्रदर्शन पर हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर राज्य में सियासी घमासान, भाजपा ने लगाया अराजकता फैलाने का आरोप, कांग्रेस ने दी लोकतंत्र की दुहाई। दुमका छात्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, जांच के लिए बनी 11 सदस्यीय एसआईटी, प्रधान जिला जज ने लिया स्वतः संज्ञान। दुर्गा पूजा को लेकर एक्शन में रांची नगर निगम, नगर आयुक्त ने पंडालों और रावण दहन स्थलों का किया निरीक्षण, साफ सफाई और नागरिक सुविधाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और चेन्नई में होने वाली 41वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 29 सदस्यीय टीम घोषित, साकेत मिंज संभालेंगे कप्तानी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
7: इतनी भी क्या जल्दी थी।
6: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
7: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी आपके नाम?
9: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो। क्या
9: आरबीआई कहता है?
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: अरे छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
12: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार।

0: यार नहीं होता।
1: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
0: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
1: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
0: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
0: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
1: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
0: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
1: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
0: और लड़के की 21 वर्ष है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी
4: है। जिले में आजकल

0: अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: शारदीय नवरात्र को लेकर जिला क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल है। सभी पंडालों और देवी स्थानों में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रोच्चार से वातावरण शांतिपूर्ण और भक्तिपूर्वक भक्तगणों की पूजा संपन्न हो, इसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा की तैयारियां कर ली है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि
2: दुर्गा पूजा को लेकर दुर्गा पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में थाना स्तर पर भी शांति समिति बैठक आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त पुलिस के बल और गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सभी थानों के अन्य पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी पंडालों का भौतिक निरीक्षण करते हुए वहाँ जो भी सुरक्षा मानक राज्य सरकार के द्वारा बताए गए हैं उनका वो अनुपालन करें। और सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग पूरे त्यौहार में शांतिपूर्वक शांति वातावरण में हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं और किसी भी भ्रामक खबर पे किसी भी अपूर्ण जानकारी पे ध्यान न दें। और कहीं भी आपको किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत CCR को जो कंपोजिट कंट्रोल रूम है उसको सूचित करें।
1: टाउन हॉल में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय के द्वारा बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नियोजित करने के उद्देश्य से दंतोपंत ठेंगरी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला में जिला क्षेत्र से काफी संख्या में बेरोजगार युवक पहुंचे। जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार गिरी ने बताया कि
3: रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड, गढ़वा एवं राज्य के देश के अन्य क्षेत्रों से कुल 27 कंपनियां भाग ले रही हैं। इसमें काफी बेरोजगार युवक गढ़वा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। मैं सभी गढ़वावासियों के साथ साथ बेरोजगारी युवक युवती से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ मेला में भाग लें, साथ ही समय समय पर होने वाले भर्ती कैंप और रोजगार मेला में भाग लेकर अपने लिए अपनी इच्छा योग्यता क्षमता के अनुरूप रोजगार प्राप्त।
1: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने हर घर नल जल योजना से सभी शहरी और ग्रामीण घरों तक नल से हर घर तक जल पहुंचाने के लिए अपने कार्य को तेज कर रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अनिल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि
4: पेयजल स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा जिला अंतर्गत सभी घरों में जल जीवन मिशन के तहत 312,173 घरों का कनेक्शन देना है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2,376 घरों में पहुंचाया है। ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और ये जल जीवन मिशन एक ऐसा योजना है जबकि इससे काफ़ी सुविधा लोगों तक पहुंच गई है और जिन घरों में अभी तक नहीं पहुंचा है जिसको 28 तक पूरा कर लिया जाएगा।
1: जिले में दुर्गा पूजा को लेकर भक्ति भाव का माहौल है। पुलिस के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आखिरी जरूरतमंदों और असल हकदारों तक पहुँचे, जिला प्रशासन कार्य योजना तैयार कर कार्य कर रहा है। विजेंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
0: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा सुन रहे थे जिले में आजकल और प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम, अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

दुनिया। नमस्कार नमस्कार बिहार और झारखंड वालों, राजेश की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। नवरात्र चल रहा है, जी हाँ, माँ दुर्गे की आराधना हो रही है। चारों तरफ वातावरण एकदम भक्तिमय हो चुका है और हम सारे लोग उसमें सराबोर हैं और माता से यही कामना करते हैं कि सारे लोगों के लिए सब कुछ शुभ शुभ करें और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मजा आ रहा है, सोमवार का दिन है। हाँ, लगातार वर्षों से आप ये बुनियाद कार्यक्रम सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको अपने करियर को चुनने में मदद मिल रही होगी। हालांकि ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके फोन कॉल्स बताते हैं कि ये कार्यक्रम आपको बहुत मदद कर रहा है अपने करियर में आगे बढ़ने में। एक बात तो साफ है, आपके फोन से जो मैं कहता हूं, राजेश आपका, हाँ नमस्कार सभी को, कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है भैया, टेक्निकल पढ़ाई कर लो तो रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम बुनियाद हम वर्षों से आप युवा साथियों के लिए लेकर आ रहे हैं। अपने काम में लगे हैं कि सही और सटीक जानकारियां हम आप तक पहुंचा दें। जी हाँ, हमने कहा खर्च की बात की है, लेकिन खर्च की बात जब हो रही है तो बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है जिस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको लोन के रूप में मिलता है जो बाद में, पढ़ाई के बाद में आपको चुकाना पड़ता है। ढेर सारे सवाल ये भी आते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में किस किस प्रैक्टिकल यानी विशेषज्ञता हासिल करने वाली पढ़ाई होती है। तो भैया, हम बार बार बताते हैं कि यहाँ अगर आप मेडिकल यानी नीट क्वालिफाई करते हैं तो अपने बिहार में रह करके यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर नहीं जा पाए तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, फार्मेसी के कोर्सेज हैं, इसके अलावे एग्रीकल्चर में भी आप जा सकते हैं। ये सारी पढ़ाई आपके बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर होती है, हाँ क्वालिटी वही उत्तम, जी हाँ। इसके अलावे लॉ की पढ़ाई है, जर्नलिज्म की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, हाँ बहुत सारी पढ़ाई है जिसे आप कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको लगातार एक नंबर देते हैं, एक सीधे सीधे मोबाइल का नंबर होता है, एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पर आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, नोट कीजिए सबसे पहले वो नंबर, नंबर है 9431899002, 9431899002, और टोल फ्री नंबर जो है 1800121001, 1800121001। और एक वेबसाइट भी है जिसका पता भी हम बताते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं सारे कोर्सेज को, यूनिवर्सिटी को, क्योंकि करियर का सवाल है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, वेबसाइट का पता है gnsu.ac.in। जी हाँ, लगातार हम आपको सही और सटीक जानकारियां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने बहुत सारी बातें बताई मैनेजमेंट के बारे में, जर्नलिज्म के

0: बारे में, ANM GNM के बारे में, इसके अलावा फार्मेसी में फार्म डी का जो कोर्स आया है उसके विषय में आज हम लॉ की बात करेंगे। कहते हैं ना कि देश जितना ज्यादा आगे तरक्की करेगा लीगल फील्ड में, जी हाँ लीगल फील्ड में बहुत सारे रोजगार मिलेंगे और वो वाइब्रेंट होगा क्षेत्र। और इसीलिए हम आज एक विशेषज्ञ को बुलाए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव, इनसे बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ 5-year law जो इंटीग्रेटेड लॉ है और 3-year law जो है जो रेगुलर है वो सबकी पढ़ाई होती है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और इन्हीं से चाहेंगे, बहुत ही लर्नेट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप जानकारियां दीजिए अंकुर जी अपने सुनने वालों को कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या सारा कुछ है, सब कुछ जो बताना चाहते हैं पहले बता लीजिए।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी नारायण स्कूल ऑफ लॉ में एज ए प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, मेरा बेसिक LLB स्टार्ट हुआ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद मैंने LLM जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से कॉरपोरेट लॉ में किया। तत्पश्चात मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ से PhD एंड पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री।
0: डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव जी, हाँ आप नारायण स्कूल ऑफ लॉ में फैकल्टी हैं, आपसे पिछले एपिसोड से बातचीत का सिलसिला जारी है और लॉ बहुत ही वाइब्रेंट हो रहा है क्योंकि जब कंट्री डेवलप करता है ना तो बहुत सारे लिटिगेशन के मामले आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती है, कंपनी लॉ आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ये जानना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के लिए कि पूरा बिहार झारखंड सुन रहा है और बाहर भी लोग इसे सुन रहे हैं, तो बच्चे जो है ना, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि बच्चे नारायण स्कूल ऑफ लॉ, हाँ नारायण स्कूल ऑफ लॉ जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के मातहत है ये कॉलेज जमुआर सासाराम रोहतास में, वहाँ क्यों आए, अपने बारे में बताइए आपने नारायण स्कूल ऑफ लॉ के बारे में।
1: सर, नारायण स्कूल ऑफ लॉ में सभी विधि से के अध्ययन से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए तो मूट कोर्ट है, क्लासरूम है पूरी तरह से सुसज्जित, और इसके अलावा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी रिच लाइब्रेरी है और वहाँ ऑनलाइन जर्नल्स भी उपलब्ध हैं। और बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यहाँ बच्चों को कंपटीशन में बाहर भी पार्टिसिपेट करने के लिए नारायण स्कूल ऑफ लॉ द्वारा भेजा जाता है। मूट कोर्ट कंपटीशन हुआ, क्विज कंपटीशन हुआ, इत्यादि अन्य कंपटीशन। और इसके अलावा नारायण स्कूल ऑफ लॉ में प्रतिवर्ष मूट कोर्ट कंपटीशन आयोजित किया जाता है जिसमें बच्चों को न्यायालय के परिचालन से संबंधित चीज़ों को समझाया और दिखाया जाता है। इसके अलावा हम बच्चों का क्विज कंपटीशन और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी आयोजित करते हैं।
0: बहुत खूब डॉक्टर अंकुर जी, अभी जानेंगे और भी क्या क्या विशेषताएं हैं, लेकिन युवा साथियों आपको बता दें कि नारायण स्कूल ऑफ लॉ में 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है ना लॉ का, उसकी पढ़ाई होती है, जैसे BA LLB, इसके अलावा BCA LLB, LLB 3 साल का जो होता है उसकी पढ़ाई भी करवाई जाती है और बहुत ही ब्राइट करियर है। नंबर नोट करें 9431899002 9431899002 1800121001 और क्या क्या विशेषताएं हैं डॉक्टर अंकुर आपको बता रहे हैं। और ये जो है ना यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है जिसके तहत ये नारायण स्कूल ऑफ लॉ है और सारे सेशन एकदम सही से और सही समय पर रिजल्ट आपके हाथ में होता है। तो आइए जानते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं।
1: हमारे यहाँ बच्चों को फाइनल ईयर के बच्चों को जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए और APO एग्जाम्स और बैंक कंपटीशन के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है और समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों को इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए मॉक इंटरव्यू इंटरव्यूज़ ही समय समय पर कराए जाते हैं।

0: यही नारायण स्कूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी है।
1: यही नारायण स्कूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी है कि बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जाए, और फाइनल ईयर में जब पहुंच जाए ना, तो जैसा कि डॉक्टर अंकुर ने कहा कि उनको जुडिशियल सर्विसेज के लिए हाँ तैयारी करवाई जाए, वो भी मुफ्त में बिना पैसा लिए क्लास के साथ साथ। ये बहुत बड़ी बात है और यही बातें जो हैं वो नारायण स्कूल ऑफ लॉ को दूसरे जगह से अलग करती है। अब जरा सोचिए, आप पढ़ भी रहे हैं, आप डिग्री के लिए भी पढ़ रहे हैं, और जब आप फाइनल ईयर में आ गए तो कंपटीशन के लिए भी आपको अलग से क्लासेस दिया जा रहा है और जिसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। कितनी बड़ी बात हाँ है, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर नोट करें अगर जो आपको जानकारी चाहिए यहाँ के बारे में, 9431899002 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800121001 1800121001। कहते हैं ना, मेहनत कीजिए आप, हम आपके साथ हैं, राजेश आपके साथ है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी आपके साथ है, और जो अगर लॉ कर रहे हैं तो नारायण स्कूल ऑफ लॉ के सारे फैकल्टी आपके साथ हैं। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर अंकुर, डिसिप्लिन के बारे में यहाँ जो है कैसी व्यवस्था है, बच्चों के साथ क्या सख्ती होती है या फ्रेंडली माहौल है, बताइए।
0: सर, नारायण स्कूल ऑफ लॉ में बच्चों के साथ जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टीचर वेरी स्ट्रिक्ट हैं। इसके साथ सिर्फ सख्ती से कार्य नहीं होता है सर, यह सभी का ऐसा विचार है, इसलिए बच्चों के कोई भी डाउट को दूर करने के लिए टीचर हर समय अवेलेबल रहते हैं, चाहे वह क्लास में या क्लास के बाद। तो हमारी यह फिलॉसफी है कि डिसिप्लिन के साथ साथ डेवलपमेंट हो,
1: डिसिप्लिन के साथ साथ डेवलपमेंट। और बिल्कुल सही कहा अंकुर जी ने आपने कि सिर्फ जो सख्ती के साथ नहीं हो सकता है, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि किसी भी डाउट को टीचर्स हमेशा पूरा करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर, और आपके विचार, आपके फिलॉसफी, नारायण स्कूल ऑफ लॉ की फिलॉसफी बहुत अच्छी लगी। एक बार नंबर बता दें, 9431899002 और 1800121001। एक बात कहना चाहते हैं, अगर जो आप लॉ का प्रोफेशन चुनते हैं, हमारा ये सजेशन है, तो आपके लिए बहुत ही उम्दा है, क्योंकि बहुत ही वाइब्रेंट है। आप सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, या फिर खुद का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तवा जी, हाँ चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा, समय खत्म हो रहा है।
0: हाँ, मैं खास तौर से बिहार के लोगों को और बिहार के आसपास के अन्य राज्यों से के बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी अध्ययन की लाइन चूज करने से पहले विचार करें, और विचार करने के बाद तुरंत डिसीजन लें। समय बीतने के बाद कुछ नहीं होता है, और नारायण स्कूल ऑफ लॉ आपकी विधि की शिक्षा में पूर्णतया खरा उतरता है।
1: नारायण स्कूल ऑफ लॉ आपके विधि की पढ़ाई लिखाई में खड़ा उतरता है, ऐसा माहौल देता है, मानना है यहाँ के फैकल्टी। डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तवा जी का बहुत ही उम्दा टीचर हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पठन पाठन का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकुर आपका। तो साथियों, चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन चलने से पहले दो बातें जरूर कह देना चाहते हैं कि करियर का सवाल है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र को चुनने से पहले समझना जरूरी है कि आप उसके लिए फिट हैं कि नहीं, आप स्वतः अपने मन से उस करियर को चुन रहे हैं कि नहीं, दूसरे के कहने से तो नहीं चुन रहे। कहते हैं ना कि खुद से लिया गया निर्णय और अपने अनुसार लिया गया निर्णय, अपने मिजाज के अनुसार लिया गया निर्णय आपको सफलता के बहुत करीब कर देता है। बहरहाल नंबर नोट करें जहां से नारायण स्कूल ऑफ लॉ के बारे में जानकारियां मिल सकती हैं। नंबर है 9431899002 और एक टोल फ्री नंबर है 1800121001। तो बस आज की मुलाकात इतनी ही है राजेश के साथ। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम पूरे बिहार और झारखंड में लेकर राजेश को आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक

0: है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
1: अभी आप सुन रहे थे।

0: आइए सुनते हैं कल्याणी भेंटवार्ता कार्यक्रम। बच्चों में कुपोषण कारण एवं निदान भेंटवार्ता का चर्चा है। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, शिशु रोग विशेषज्ञ पलामू, और भेंट करता है संजय कुमार मिश्रा। आइए सुनते हैं कल्याणी कार्यक्रम।
1: कल्याणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, बच्चों में कुपोषण, आइए आज इस विषय पे आपको जानकारी दिलवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू प्रमंडल के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय तिवारी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपको हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, कुपोषण क्या है इस पर जानकारी चाहेंगे।
2: कुपोषण का शाब्दिक अर्थ होता है सही पोषण नहीं होना, यानी कि हमें जो 24 घंटे में रिक्वायरमेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वो अगर सही मात्रा में नहीं मिलता है तो इसे कुपोषण बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कुपोषण किसी में भी हो सकता है, छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, लेकिन आज चूंकि बच्चे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें नवजात बच्चे से। तो नवजात बच्चे में कुपोषण ना हो, इसके लिए उनकी देखभाल, रख रखाव, खान पान, सारी चीज़ें कैसे, इसको आप बताना चाहेंगे।
2: नवजात बच्चों में जो कुपोषण होता है उसका सबसे प्रमुख कारण है कि माँ का दूध नहीं पिला पाना। तो कई कारणों से, या तो माँ का दूध कम हो रहा है, बच्चे को दूध नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे या इवन 6 मंथ तक बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर ही आश्रित रहते हैं, और उसके बाद फिर आप मोलगी करते हैं, अनाज खाना शुरू करता है। तो अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, माँ ठीक से दूध पिला रही है और बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, ठीक से दूध पी ले, तो बच्चों में, नवजात बच्चों में खासकर कुपोषण नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ बोलती है कि हमें तो दूध हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों दूध पिलाएं ऐसे लगाने से। लेकिन देखा गया है कि अगर माँ को दूध नहीं भी हो और वो लगातार पिलाती रहे बच्चे को, तो उससे धीरे धीरे धीरे धीरे उसका अपना दूध बढ़ जाता है। तो माँ दूध पिलाती रहे, ये नवजात बच्चों में कुपोषण से रोकने का सबसे जरूरी चीज़ है। और अगर कई कारणों से, जैसे कई बार बोला जाता है कि मेरा तो सीजेरियन से ऑपरेशन हुआ है, हम तो पिलाए नहीं, तो लगातार 4-5 दिन अगर माँ छोड़ देती है दूध पिलाना, दूध कम होता है। और दूध होने के लिए सबसे ज़रूरी है उसको स्टिमुलाई मिलता रहे, यानी कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसका दूध होगा, और अगर दूध पिलाना बंद कर देती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे दूध भी निकलना बंद हो जाता है। एक तो ये है, और कई बार कई कारणों से, जैसे कम जानकारी के अभाव में भी लोग सोचते हैं कि बच्चे को दूध पिलाएंगे तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि देखा गया है कि अगर माँ दूध पिलाती रहे बच्चे को, उसके और भी कई लाभकारी प्रभाव होते हैं माँ पर भी, एवं जैसे माँ का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और अगर जो माँ दूध नहीं पिला पा रही है, काफ़ी निराश है कि हमारा दूध नहीं हो रहा है, तो उसका सही तरीका ये है कुपोषण रोकने का कि बाहर से जो भी आप दूध दे रहे हैं, जैसे गाय का दूध दिया जा सकता है या फिर डब्बे का जो दूध देते हैं, उसे सही मात्रा में बना के बच्चे को देते रहें, और साथ ही साथ माँ अपना दूध पिलाना जारी रखे, ताकि धीरे धीरे माँ का भी दूध बढ़ता रहे। कुछ समय के बाद ये बाहर से जो दूध दे रहे हैं वो बंद कर देंगे और माँ भी अपना दूध पिलाती रहेगी 6 महीने तक। गाय का दूध देना है, उसमें कोई चीनी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूध को गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, और कटोरी चम्मच से, बोतल से नहीं पिलाना चाहिए, कई खामियाजा भुगतना पड़ता है उसके चलते। तो कटोरी चम्मच से एक एक चम्मच बच्चे को पिलाते रहेंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा कि बच्चा एक बार में कितना दूध पीता है, उतना ही दूध एक साथ दिया कीजिए। या फिर अगर डब्बे का दूध आप दे रहे हैं तो बाज़ार में कई तरीके के अवेलेबल हैं, कई ब्रांड्स, तो आप डब्बे का दूध हर बार बच्चे का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और डब्बे पर लिखा रहता है कि आप 30 ml में एक चम्मच ऐसे करके दूध बनाएं, तो हर बार जब बच्चा को भूख लगे आप डब्बे का दूध, पहले तो माँ का दूध पिला लीजिए, पिलाने के बाद लगा कि बच्चे का पेट नहीं भरा, तो कटोरी चम्मच से एक एक चम्मच करके बच्चे को दूध देंगे। और जो दूध बच जाता है कटोरी में, बच्चा सपोज कीजिए 30 ml बच्चा पिया और आपने 40 ml बनाया था, जो बच जाए वो दूसरे को पिला दीजिए या फेंक दीजिए, और अगले बार जब फिर से भूख लगे तो माँ का दूध पहले पिला लेंगे, फिर कटोरी चम्मच से देंगे।
1: डॉक्टर साहब, एक समय होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पूरी तरह पूर्ण होता है, उसके अलावे उसको दूध की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक समय आता है बच्चा जब बड़ा होता है, उसका आहार बढ़ता है, तो माँ का दूध शायद कम पड़ने लगता है। तो वैसी स्थिति में ये स्थिति कितने दिन के बाद आती है, क्या खिलाएं, कब खिलाएं, कितने समय में खिलाएं?
2: जी हाँ, वीनिंग बोलते हैं इसको, यानी कि बाहर से आहार लेना। तो हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। लेकिन जो बच्चे बाहर से दूध पी रहे हैं, डब्बे का या गाय का दूध, उनको 4 महीने के बाद हम लोग मुँह लगी कर देते हैं। और इस समय सबसे ज़रूरी होता है कि धीरे धीरे बच्चे, चूँकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध को पचाने के लिए और उसी पर डिपेंडेंट है, तो अभी जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा चीज़ देंगे तो ज़्यादा लिक्विड डाइट हो और जो आसानी से पच जाए, जैसे दाल का पानी, माड़, बहुत ज़्यादा गला हुआ चावल, रोटी और दूध का पपड़ी, ऐसी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। और विनिंग के समय सबसे ज़रूरी होता है कि हफ्ते हफ्ते आप थोड़ा थोड़ा नया कोई आइटम बढ़ाते चले जाते हैं, और इस तरह से ताकि धीरे धीरे होते होते 1 साल तक का बच्चा सारे चीज़ खा पी सके।
1: डॉक्टर साहब, बीच में एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर लोगों की धारणा है कि बच्चा जब बीमार पड़े तब डॉक्टर साहब के पास जा कर के बच्चे को दिखाएं और राय मशवरा करें, क्या ये सही है, या बच्चा स्वस्थ है तो भी चिकित्सक के पास जाकर कभी कभार बीच बीच में बच्चे को दिखाते रहना चाहिए?
2: एक तो आपको खुद पता चल जाता है कि बच्चे का कोई एक्टिविटी कुछ ऐसा या सही उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, आपको ऐसा कोई भी लगे तो आप डॉक्टर से मिलिए। और इसके अलावा अगर आपको कभी लगे कि मेरे बच्चे की लंबाई सही मात्रा में बढ़ रही है या नहीं, या जो माइल स्टोन्स है, जैसे 3 महीना में बच्चा गर्दन टाइट करता है, 2 महीने में मुस्कुराने लगता है, 6 महीने में बैठने लगता है, अगर लगता है कि देर हो रहा है तो आप डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि डिजीज़ कोई अंदरूनी बीमारी हो जिसको आदमी पहले पहचान ले और उसका इलाज संभव हो सके। तो ग्रोथ चार्ट होता है हमारे पास, कई लोगों के पास बच्चे का जो ग्रोथ रिकॉर्ड होता है या वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के साथ में हम लोग ग्रोथ चार्ट भी देते हैं, मतलब बच्चे को कितने उम्र में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ये टाइम टू टाइम डॉक्टर को, खासकर जिस समय आप टीका दिलाने जाते हैं, इन चीज़ों को भी दिखा लिया करें।
1: जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो दिन ब दिन उसका वजन सही बढ़ रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी क्या घर में स्वयं पता चलता है या चिकित्सक के पास जाकर राय करना जरूरी है इसके लिए?
2: नहीं, आप घर में भी जान सकते हैं, आजकल तो मोबाइल इंटरनेट पे सारे चीज़ अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जब भी आप डॉक्टर से मिलते हैं तो इन चीज़ों को रखिए सामने कि मेरे बच्चे का सही ग्रोथ हो रहा है नहीं, या फिर आपके पास बार बार आने में मुझे फी भी देना पड़ता है और भी चीज़ समय भी जाता है, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा बता दीजिए, जैसे ग्रोथ चार्ट जो मैंने बताया वो अवेलेबल है, आप डॉक्टर से भी मांग सकते हैं या फिर इंटरनेट पे भी और दूसरे जगहों से भी वो जानकारी ले सकते हैं कि कितने महीने में बच्चे का कौन सा माइलस्टोन होना चाहिए, कितने महीने में बच्चे का कितना ग्रोथ होना चाहिए, ये सारा चीज़ अवेलेबल है। अगर आपका बच्चा सही ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है, तो सही है, अन्यथा आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बच्चे, नवजात बच्चे से लेकर के उसके 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक, तो बच्चा नाजुक जो कहते हैं अंदरूनी तौर पे कि उसको बीमारी जल्दी पकड़ सकती है, जल्दी बीमार हो सकता है, तो ये चीज़ें कब तक माँ बाप को, परिवार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, कितने साल तक?
2: देखिए, वैसे तो हर आदमी वल्नरेबल है, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे शरीर में रोग से लड़ने की ताकत होती है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम होता है, तो वो इम्यूनिटी धीरे धीरे धीरे धीरे डेवलप करता है, तो स्वाभाविक है जो नवजात बच्चे होते हैं वो उनमें ज़्यादा रोग होने की संभावना होती है, धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं तो रोग से लड़ने की उतनी ताकत डेवलप करती है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप टीकाकरण करते हैं उससे भी रोग से लड़ने का ताकत डेवलप करता है, तो हर उम्र में रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम सही डेवलप

0: नहीं करता है और एक विशेष सर्किल चक्र बन जाता है, मतलब कुपोषण हुआ उसके चलते रोग से लड़ने की ताकत कम हो गई, उसके चलते रोग हो गया, उसके चलते फिर से कुपोषण हो गया, आदमी कम खा रहा है और उस कुपोषण के चलते फिर से रोग से लड़ने का ताकत, ऐसा सर्किल बन जाता है। तो कुपोषण, अगर बच्चा कुपोषित नहीं हो तो वैसे स्वस्थ बच्चा जो रहेगा उससे रोग से लड़ने की ताकत उसमें ऐसे भी ज़्यादा रहेगी, तो इन बातों का कुपोषण के चलते भी प्रभाव पड़ता है।
1: टीकाकरण का क्या महत्व है कुपोषण पे?
0: टीकाकरण हमारे शरीर के अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे अपने शरीर का रोग से लड़ने का ताकत देता है। तो अगर टीकाकरण सही समय पे और जितने भी टीका अवेलेबल हैं आपने कराया है तो कम रोग होगा, जब रोग कम होगा तो रोग के चलते अगर किसी को कुपोषण हो रहा था वो चीज़ें कम हो जाएगी, जैसे डायरिया के अगेंस्ट में हमारा टीका है रोटा वायरस का, निमोनिया के लिए कई टीके हैं, तो टीकाकरण से आपका बचाव इस ढंग से होता है।
1: कुछ माँ बाप या बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि अगर बच्चा कुपोषित है तो उसे उस दवा देने की ज़रूरत है, क्या ये आप कहना चाहेंगे उनको कि दवा की ज़रूरत नहीं है, अगर बच्चों की सही देखभाल हो, सही खान पान मिले उनको, समय पे दूध और समय पे जो चीज़ें आप बताते हैं खिलाने के लिए, तो बच्चे को कुपोषण दूर करने के लिए दवा देने के ऊपर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी?
0: जी बिल्कुल, लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा बीमार है इसलिए इतना कमज़ोर है, जबकि उल्टा होता है, वो कमज़ोर होता है इसलिए बार बार बीमार पड़ता है। तो हमने जैसे बताया कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ और 6 मंथ के बाद सही तरीके से वीनिंग करना, बच्चे का अपना रिक्वायरमेंट देखना, रो रहा है तो क्या वो भूख के चलते रो रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। और कुपोषण में सबसे ज़रूरी होता है उसका जो अपना रिक्वायरमेंट है और जितना उसे पोषण चाहिए वो चीज़ आप सही सही दे रहे हैं कि नहीं। रोग तो बाद में समझेंगे हम, अगर उसे सही में कोई रोग हुआ है तो उस चीज़ का हम इलाज करेंगे, खासकर कुपोषित बच्चों में जो डायरिया निमोनिया होता है तो वो तो बाद में आप इलाज करते हैं, और अगर साथ में इलाज भी कर रहे हैं तो सही सही आहार और सही सही उसका न्यूट्रिशन ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़रूरी होता है सही मात्रा में उसका जो दिन भर का अपना रिक्वायरमेंट है वो आहार देना उन बच्चों को, और रोग तो बाद में होता है, रोग के लिए जो अगर बच्चे को सही में कोई रोग हुआ है तो उसका इलाज करना साथ ही साथ ज़रूरी हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आखिरी में हमारे उन माओं के लिए क्या संदेश है जिन्होंने घर में छोटे बच्चों को जन्म दिया है?
0: जी हाँ बिल्कुल, सभी माताओं को से मैं आग्रह करूँगा कि अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक, और उसके बाद भी आप दूध पिलाएं, क्योंकि दूध पिलाने से हमेशा फायदा ही होता है आपको, लेकिन 6 महीने तक तो ज़रूर अपने बच्चे को दूध पिलाएं, और अपने आहार पर ध्यान रखिए ताकि आपको अपना और अपने बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। खुश रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए।
1: डॉक्टर संजय तिवारी जी, आज आपने इस कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तमाम श्रोताओं को जिनके घर में नन्हे मुन्हे बच्चे हैं, उन माओं को जो बच्चों का देखभाल कर रही हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी जानकारी दी। दोबारा जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस कार्यक्रम में आपको फिर आमंत्रित करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कल्याणी भेंटवार्ता कार्यक्रम। बच्चों में कुपोषण कारण एवं निदान भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, शिशु रोग विशेषज्ञ। पलामू भेंटकर्ता थे संजय कुमार मिश्रा। अब आइए सुनते हैं कुछ ही पलों में

अभी आपने सुना फिल्म संघर्ष के इस गाने को सोनू निगम की आवाज़ में, जतिन ललित के संगीत और समीर के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं सोनू निगम, कुमार शानू की आवाज़ में, नदीम श्रवण के संगीत, समीर के बोल, फिल्म का नाम आशिक।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में नदीम श्रवण के संगीत और समीर के बोल, फिल्म का नाम साजन।

0: तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम नई सोच नया कदम में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक सफल मधुमक्खी पालक। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, किसान भाई बहन को नमस्कार करते हैं।
0: आपका नाम क्या हुआ?
1: हमारा नाम सुनेश्वर मेहता।
0: अच्छा,
1: मेराल प्रखंड के रहने वाले हैं। हम एक किसान हैं, हम खेती बाड़ी से जुड़े हैं और किसान भाई के खेती बाड़ी करते हुए, साग सब्जी की खेती करते हुए, मेड़ परे अमरूद हो गया, आम हो गया, कलमी, आम कलमी, अमरूद अवश्य लगाएं, उससे मुनाफा बढ़ेगा। हाँ सर, तो इस चलते खाली खेती पर भी नहीं रहना चाहिए, ना साग सब्जी पर रहना चाहिए। साग सब्जी के भी
0: रोजगार में आप क्या अपना हुए?
1: मशरूम हो गया साइड बिजनेस। मशरूम भी ठंडा के मौसम में, धूप के मौसम में भी होता है, साइड बिजनेस एक ठो वो हो गया। और इन्हें खेती बाड़ी करते हुए अभी करेला हो गया, झींगी हो गया, नेनुआ हो गया। अब
0: इसके साथ साथ आप मधुमक्खी पालन भी किए हुए?
1: मधुमक्खी रखे हैं, कम बक्सा रखे हैं।
0: कितना बक्सा है
1: अभी? 10 बक्सा है।
0: हाँ, 10 बक्सा है।
1: हाँ, 10 बक्सा
0: है। प्रशिक्षण कहाँ से लिए थे आप?
1: प्रशिक्षण लिए थे हम कृषि विज्ञान से, गढ़वा से।
0: अच्छा, वहाँ से।
1: हाँ, तकनीकी खेती बाड़ी के भी सब्जी हो गया, यानी गेहूँ धान हो गया, मैंने तकनीकी विधि से हम खेती करते हैं। हमारा पास ज्यादा खेत भी नहीं है।
0: हाँ,
1: हमारा पास 3 बीघा खेत है।
0: हाँ, तो जरूरी है कि
1: तो हम तकनीकी
0: वैज्ञानिक तकनीक अपनाइए। हाँ, नहीं अपनाइएगा वैज्ञानिक तकनीक तो लाभ नहीं ले पाइएगा।
1: तो हम तकनीकी विधि से खेती करते हैं, साग सब्जी हो गया।
0: लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम इसमें मधुमक्खी पालन भी आप किए हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
1: मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा चीज है, साइड बिजनेस हो गया, खेती बाड़ी करते हुए
0: मधुमक्खी

0: पालन के लिए आपको रुझान कहाँ से मिला, कैसे पता चला कि मधुमक्खी पालन हमको करना चाहिए?
1: हम देखे अपना गांव में एक आदमी के, तो ओकरा से लगा जे मनोफा हो रहा है, ओकरा में कोई मेहनत ज्यादा नहीं है, तो देखा परीखा काम करना चालू हम किए। तो इस चलते किसान को मैंने देखे देखी करना चाहिए काम, जे अच्छा काम है, एकरा में ज्यादा कोई विशेष पूंजी लगना है ना, टाइम देना है, टाइम देना है खेती बाड़ी में अलग टाइम देना है, ओकरा खाली बस थोड़ा सा देख रेख करना है, शाम सुबह बस जाके देख लेना है। चींटा हो गया माछी के मार देता है, फिर कोई चिड़िया वैसा आता है सुबह शाम के टाइम में, उस चिड़िया से बचाव के लिए थोड़ा सा निगरानी होना चाहिए। और विशेष एकरा में कोई आवश्यकता नहीं है मैंने पूंजी के, एने आदमी के है जे आज पर्व हो गया था, आज शादी ब्याह है, इन्हें 52 को छुट्टी रहता है, और उन लोग के कभी छुट्टी नहीं रहता है, दिन रात माने दिनों भर काम करना उन लोग के चालू रहता है
0: मधुमक्खी।
1: हाँ, तो इस चलते बहुत अच्छा चीज मधुमक्खी पालन जरूरी है।
0: कितने
1: हमारा पास 10 बक्सा भी है।
0: कितने से शुरू किए थे आप?
1: हम बक्सा 2 बक्सा लिए
0: शुरू किए।
1: हाँ, 2 बक्सा।
0: कितनी पूंजी पड़ गई थी करीब एक बक्सा में?
1: एक बक्सा में 2500 रुपया लगल था।
0: अच्छा,
1: तो 2500 से फिर इन्हें छाता बनाने के लिए वो लेके अपने से अथी, ओकरा में कोई ज्यादा पैसा कैसी नहीं आ सकता है, घर भी बक्सा बना सकते हैं, बाहर से भी बक्सा मंगा सकते हैं, केफके से भी आ जाता है। तो हम 10 बक्सा से भी 2 बक्सा से चालू किए थे वो। अच्छा,
0: कब शुरू किए थे आप?
1: हो गया 4 साल।
0: अच्छा, 4 साल से शुरू।
1: हाँ, 4 साल से शुरू हो,
0: आज 10 बक्सा पर है।
1: हाँ, नहीं अथी बढ़ भी जाता है घट भी जाता है उतना।
0: अच्छा, बक्सा कहीं घट बढ़ जाता है।
1: साग सब्जी पर ज्यादा इन्हें अथी हो जाता है, तो कुछ अथी हो जाता है, ढीला जाता है, और धूप में कम माछी हो जाता है। तो इस चलते शहद ज्यादा करके बन तुलसी वाला में बहुत अच्छा
0: तो
1: निकलता है।
0: तो मतलब बन तुलसी भी आप लगाते होंगे?
1: नहीं, बन तुलसी लगाना नहीं पड़ता है, वो तो पूरा सबसे खेत में अगल बगल। हाँ, अगल बगल सबसे रहता
0: तो
1: है।
0: मतलब कि आपके खेत की तरफ बन तुलसी?
1: हाँ, बन तुलसी रहता है। हम लोग सरसों लगाते हैं, सरसों अगल बगल भी, सरसों से भी ज्यादा शहद निकलता है, बन तुलसी से ज्यादा शहद निकलता है। फिर इन्हें परास के फूल हो गया।
0: अच्छा, परास के फूल?
1: हाँ, परास के फूल से बहुत ज्यादा शहद निकलता है, 8-10 दिन में पूरा अति हो जाता है, बक्सा मैंने भर जाता है। हाँ, 10 दिन में मैंने फिर निकालना चालू हो जाता है। तो इस चलते मत पालन बहुत जरूरी चीज है।
0: अच्छा, एक बात हमारे सामने ये बार बार उठ रही है, ये बात कि मान लिया हम मध उत्पादन कर लिए, तो फिर बेचने के लिए कहाँ जाते
1: हैं? बेचने के लिए, अच्छा चीज के बेचने के लिए कहूँ सोचना नहीं पड़ता है, कहूँ से घर ही से सेल हो जाता है।
0: लोग जान गए होंगे।
1: हाँ, जान जाने के बाद ये नहीं है जो कहूँ हमारा बाजार ले जाना नहीं पड़ता है, और वैसा कोई नहीं है जो 4 क्विंटल 2 क्विंटल रहता है, 50-25 किलो घरे से पूर्वे नहीं करता है। हमरा चाहिए तो हमरा चाहिए 300 रुपये किलो मध बिक जाता है हम लोग के।
0: वाह, बहुत सुंदर।
1: घरे से
0: इस तरह से मध की बिक्री भी हो जाती है?
1: हाँ, मध की बिक्री हो जाती
0: है। कहीं जाना नहीं पड़ता होगा?
1: नहीं, मध
0: के लिए जो भी मतलब कि आपका यातायात का जो खपत होता होगा वो बचत कर लेते हैं।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है, मध पालन बहुत जरूरी चीज है हर किसान के।
0: ये एक बात और हम पूछेंगे आपसे कि किन किन पौधों के करीब मधुमक्खी पालना ज्यादा उचित होता है?
1: छायादार, धूप में तो छायादार पौधा होना चाहिए।
0: जैसे बताए कि परास का बताए, और ये कौन कौन से वृक्ष या पौधा आसपास रहना चाहिए?
1: शीशम रहना चाहिए, लेप्टस से भी निकलता है, मैंने ज्यादा करके शीशम हो गया, परास हो गया, ये 3-4 पौधा जो है ना शहद के लिए बहुत बेहतर।
0: अच्छा, बक्सा में इनके जो भोजन हो गए उसकी पूर्ति कैसे करवाते हैं?
1: वो बारिश में सोचना पड़ता है, इन्हें सब
0: बाकी मौसम में नहीं?
1: नहीं, बाकी मौसम में कोई जरूरी नहीं है, वो सब अपने से व्यवस्था वो लोग कर लेते हैं।
0: अच्छा, तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं?
1: सुरक्षा ये धूप के लिए छाया तरह रखना चाहिए बक्सा के, और फिर ऊपर से जूट के बोरा रखना चाहिए। जूट के बोरा में पानी हल्का फुहर देना चाहिए ताकि गर्मी तापमान न बढ़े। धूप के लिए बस सावधानी ये बरतना है जे उस जूट के बोरा पर हल्का हल्का पानी दे करके ओदा रखना चाहिए, नमी मैंने हमेशा ठंडा रहना चाहिए, तो अति इतना टेम्परेचर से मर भी सकते
0: मतलब हैं। सेट बना करके आप रखिए।
1: हाँ,
0: उसके नीचे शेड के नीचे आप उसको रखिए।
1: शेड अगर बनता है तो बनता है, तो पौधा हर किसान के रहता है, शीशम हो गया, परास हो गया, ज़्यादा करके तो शीशम के पौधा छाया हो जाता है तुरंत।
0: तो उससे मतलब लाभ पहुंच जाता।
1: हाँ, शीशम हो गया, फिर अमरूद हो गया हम लोग के, तो अमरूद शीशम
0: अमरूद भी इसमें है।
1: हाँ, अमरूद आम सब
0: ये सब सहयोगी।
1: हाँ, तो हम लोग के मेड़ पर सबसे आरी आरी कलमी आम है, अमरूद है। हम लोग ज्यादा करके अमरूदे तर रखते हैं, अमरूद आम के
0: पेड़ पौधा।
1: हाँ, पेड़ पौधा के पास रखते हैं
0: तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: हाँ, ज्यादा अच्छा रहता है, वरना कोई

0: पानी मैंने देना नहीं पड़ता है
1: गर्मी के लिए।
0: हाँ, गर्मी के लिए।
1: और बाकी तो आपका जिस वक्त खेती का समय है तो आप तो हम समझते हैं कि आरी पे रख देते होंगे।
0: हाँ, बारिश में आरी पर सूखा जगह रख देते हैं, फिर एगो लहचुटी होता है, वो लहचुटी से बहुत बचाव के लिए बारिश में मैंने बहुत जरूरी है। और फिर लहचुटी के लिए बचाव के लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा सा निगरानी करना चाहिए, पानी में गीला रख के ओकरा में ऊपरे लकड़ी पर टांग देने में पानी में चूंटी हिलेगा नहीं।
1: हाँ,
0: हाँ। चलते निगरानी मन है, चूटा से बहुत बारिश में बहुत बचाना पड़ता है।
1: पड़ता है, बिल्कुल सही बात है।
0: और फिर इन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है, इन्हें फिर बारिश में चीनी के घोल करके देना पड़ता है ताकि वो समय में बारिश में फूल नहीं कहीं मिल पाता है।
1: हाँ, तो उससे लोग अपना
0: अपना जीवन पोषण करते हैं,
1: फिर कर लेते हैं
0: बारिश में।
1: मद कितना मद तैयार कर लेते होंगे आप?
0: इन्हें सीजन में 3-4 फेरा निकालता है, जैसे कि बन तुलसी के मौसम हो गया, फिर इन्हें सरसों के मौसम हो गया, तो 5-6 फेरा मद निकालता है। वैसे तो मद बन तुलसी हो गया,
1: एक फेरा में कितना निकालते हो?
0: एक फेरा में एक बक्सा में से 4-3 किलो
1: इतना निकलता है। हाँ, तो हम तो समझते हैं कि अतिरिक्त आय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मधुमक्खी पालन बहुत बेहतर
0: बहुत अच्छा चीज है।
1: 300 रुपए किलो इसका बाजार।
0: हाँ, घर से मैंने कहूँ सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर ज्यादा भी मात्रा हो गया तो कोई ऑफिसर के फोन बता देने के बाद
1: मतलब इसके व्यापारी तो आपको दौड़ के आते होंगे।
0: हाँ, यहाँ और व्यापारी के पास हम लोग के जाना पड़ नहीं करता है।
1: हाँ, मतलब
0: हम लोग
1: जो भी खरीदने वाले व्यक्ति
0: हाँ जी
1: वो आपके पास शौक से आते होंगे और
0: जी
1: जी होंगे। अच्छा, एक बात हम ये जान लें कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?
0: 6 हम लोग सदस्य हैं।
1: अच्छा, और सभी का भरण पोषण इसी से?
0: हाँ, मधुपालन हो गया, मशरूम हो गया साइड बिजनेस, फिर इन्हें खेती बाड़ी हो गया, साग सब्जी के ज्यादा करके हर मौसम में सब्जी हम लोग के पास रहता है 5-6 आइटम के। हाँ,
1: तो मशरूम उत्पादन भी आप करते हैं?
0: हाँ जी जी, हाँ मशरूम उत्पादन करते हैं।
1: तो उसकी प्रशिक्षण कहाँ से लिए?
0: सब कृषि विज्ञान के देन है, कृषि विज्ञान ने
1: कहाँ से? कृषि विज्ञान
0: गढ़वा से।
1: और चिराकी से?
0: चिराकी भी आए हैं, कई बार चिराकी में भी प्रशिक्षण किए हैं।
1: प्रशिक्षण प्राप्त किए
0: यहाँ किए हैं, खेती बाड़ी के अथी मशरूम के भी।
1: अच्छा, मशरूम के?
0: हाँ, एक फेरा अथी के भी किए थे यहाँ मधुपालन के चिराकी में।
1: अच्छा, तो बेहतर प्रशिक्षण दी गई।
0: हाँ हाँ,
1: उसके बाद तो फिर आप
0: हाँ घर
1: दक्ष हो करके ये मधुमक्खी पालन कर?
0: हाँ, सुन करके सब समझ करके। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा करके इसी सुन के अपना अनुभव से करते हैं, तो लोग जाते हैं देखने। इन्हें ये खाली बात भर बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। कोई भी खेती कोई भी अति सब तकनीकी विधि से करते हैं।
1: आज और कल में आप क्या अंतर पाते हैं? आप नहीं जुड़े थे इस मधुमक्खी पालन से, तो की स्थिति और आज की स्थिति में क्या?
0: बहुत बदलाव है। बहुत पहले बहुत 100-150 के मैंने सोचना पड़ रहा था, बाकी आज है जो हिसाब से कर रहे हैं वो हिसाब से बहुत अच्छा हर व्यवस्था
1: मतलब हो जा रहा है।
0: हाँ,
1: बच्चे पढ़ लिख रहे हैं?
0: हाँ, पढ़ लिख रहे हैं, सब प्राइवेट जा रहे हैं। हाँ, पढ़ाने लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने खान पान में भी जीवन मैंने जैसा समय है तैसा हर तरह से ठीक ठाक है, और पहले बहुत परेशानी था।
1: पशुपालन भी किए हुए हैं क्या?
0: जी, गाय रखे हैं, 2 गाय हैं, बैल रखे हैं, तभी 5-6 मौसी भी हैं गाय बैल मिला करके। और गाय में भी फायदा है, गाय के दूध घर से देसी गाय के दूध घर से बिक जाता है, तो गाय भी बहुत जरूरी है। खाली खेती पर भर रहने से निर्भर नहीं अच्छा होता है। हम लोग कहो बाहर कमाए नहीं जा सकते हैं, कहे सब आदमी से नहीं
1: संभव है,
0: नहीं संभव है।
1: हाँ। और पलायनवाद को छोड़ना भी चाहिए, पलायनवाद को तिरस्कृत करना चाहिए। जहाँ हम हैं वहाँ से ही हम बेहतर कार्य कर सकते हैं, जैसे आपने मधुमक्खी पालन से जुड़ के बेहतर साबित कर दिया।
0: किसी भी गढ़वा से?
1: और चिराकी से?
0: चिराकी भी आए हैं, कई बार चिराकी में भी प्रशिक्षण किए हैं।
1: यहाँ किस चीज का प्रशिक्षण प्राप्त किए?
0: यहाँ किए हैं खेती बाड़ी के अति मशरूम के भी।
1: अच्छा, मशरूम के?
0: हाँ, एक फेरा अति के भी किए थे यहाँ मधुपालन के चिराकी में।
1: अच्छा, तो बेहतर प्रशिक्षण दी गई।
0: हाँ हाँ,
1: उसके बाद तो फिर आप
0: हाँ घर
1: दक्ष हो करके ये मधुमक्खी पालन कर?
0: हाँ, सुन करके सब समझ करके। अब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा करके इसी सुन के अपना अनुभव से करते हैं, तो लोग जाते हैं देखने। इन्हें ये खाली बात भर बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। कोई भी खेती कोई भी अति सब तकनीकी विधि से करते हैं।
1: आज और कल में आप क्या अंतर पाते हैं? आप नहीं जुड़े थे इस मधुमक्खी पालन से, तो की स्थिति और आज की स्थिति में क्या?
0: बहुत बदलाव है। बहुत पहले बहुत 100-150 के मैंने सोचना पड़ रहा था, बाकी आज है जो हिसाब से

0: कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा हर व्यवस्था
1: मतलब हो जा रहा है।
0: हाँ,
1: यहाँ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं।
0: हाँ, पढ़ लिख रहे हैं, सब प्राइवेट जा रहे हैं। हाँ, पढ़ाने लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने खान पान में भी जीवन मैंने जैसा समय है तैसा हर तरह से ठीक ठाक है, और पहले बहुत परेशानी था।
1: पशुपालन भी किए हुए हैं क्या?
0: जी, गाय रखे हैं, दो ठो गाय हैं, बैल रखे हैं, तभी पाँच छः मौसी भी हैं, गाय बैल मिला करके। और गाय में भी फायदा है, गाय के दूध घर से, देसी गाय के दूध घर से बिक जाता है, तो गाय भी बहुत ज़रूरी है। खाली खेती पर भर रहने से निर्भर नहीं अच्छा होता है। हम लोग कहो बाहर कमाए नहीं जा सकते हैं, काहे सब आदमी से नहीं
1: संभव है,
0: नहीं संभव है।
1: हाँ, और पलायनवाद को छोड़ना भी चाहिए, पलायनवाद को तिरस्कृत करना चाहिए। जहाँ हम हैं वहाँ से ही हम बेहतर कार्य कर सकते हैं, जैसे आपने मधुमक्खी पालन से जुड़ के बेहतर साबित कर दिया सफलता।
0: हाँ, हाँ,
1: बेहतर कदम उठाया।
0: हाँ।
1: आप थे गढ़वा जिला के मिराल प्रखंड के सफल किसान भुवनेश्वर मेहता। आप हमारे कार्यक्रम नई सोच नया कदम से जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई सोच नया कदम। भेंटवार्ता में एक मधुमक्खी पालन से ली गई भेंटवार्ता आपने सुना। भेंटवार्ता करते सुनेश्वर मेहता मेरा गढ़वा से, भेंट करता थे संतोष कुमार। हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात्रि के कुछ ही पलों में 8:45 होने को है। हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के की प्रसारण सेवा में समाचार संध्या के लिए रात्रि 8:45 पर 9:00 में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार विविध भारती का कार्यक्रम। रात्रि 10:00 रजनीगंधा फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से। रात्रि 10:30 पर एक रंग आज के फनकार, और साथ ही 11:00 आकाशवाणी दिल्ली के हिंदी में समाचार, और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे। तो श्रोताओं, आइए कुछ ही पलों में जुड़

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली हरियाणा पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से

0: साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।

0: इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं, कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
2: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
4: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
3: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
5: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन।
6: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
3: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में

0: वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित 11वीं 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK, targets doubling bilateral trade by 2030. Centre urges states and union territories to ensure prominent display of rate lists by clinical establishments. Government to set up high-level committee to address sugarcane farmers' grievances in Maharashtra and Karnataka. Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues. American economists Robert E. Hall and Michael Woodford to get this year's Nobel Prize in Economics. An IMD forecasts a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab and Chhattisgarh till tomorrow. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed the country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
2: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने बरतानिया के साथ इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने के अज़्म का एयादा किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करने का हदफ रखा है। मरकज ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर जोर दिया है कि वो तिब्बी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात और सहूलतों के इवज शरहों को नुमाया तौर पर जाहिर करने को यकीनी बनाएं। हुकूमत महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना किसानों की शिकायत के इजाले की खातिर एक आला सतही कमेटी कायम करेगी। नई दिल्ली में जंतर मंतर अब एहतजाज का मकाम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज और मुजाहिरों के लिए 3 नए मकामात नामजद किए हैं। अमरीकी इक्तिसादी माहिरीन रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इक्तिसादियात के शोबे में 2026 का नोबेल इनाम दिया गया है। और भारतीय महकमा मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने साल 2030 तक भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तिजारत के हजम को दोगुना करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में भारत बरतानिया मुश्तरका माशी और तिजारती कमेटी JETCO के 16वें इजलास के तहत मुनक्कदा मुकम्मल JETCO कारोबारी इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने ये बात कही। उन्होंने पायदार मसरूफियात, मजबूत इदाराजाती मैकेनिज्म और इश्तराक में इजाफे के जरिए भारत बरतानिया इक्तिसादी तआवुन को वसअत देने के तई भारत के अज़्म की तौसीख की।

0: पीयूष गोयल ने कहा कि ये दोनों मुल्कों के लिए कारोबार के नए इम्कानात पैदा करेगा। जनाब गोयल ने भारत और बरतानिया दोनों मुल्कों के कारोबारियों से भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती समझौते CETA के जरिए पैदा होने वाले इम्कानात को तिजारत, सरमायाकारी, शराकतदारी और मुलाजमतें पैदा करने तक वसअत देने को कहा। मौजूदा तिजारती तकमीलात को नुमाया करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत स्मार्टफोन्स, फार्मास्यूटिकल मसनूआत, जेवरात, चावल और मखसूस जरई पैदावार का बड़ा बरामदकार रहा है। दूसरी जानिब जनाब गोयल ने पेट्रोलियम वैल्यू चेन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आलात के शोबों में, टेक्नोलॉजी मसनूआत, अद्वियात और मोटर कार मसनूआत के शोबे में बरतानिया की तस्लीम शुदा सलाहियत को भी नुमाया किया। मरकज ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से इस बात को यकीनी बनाने को कहा है कि तिब्बी मराकज की जानिब से खिदमात और दवाओं के बदले ली जाने वाली रकम को जली हरूफ में नुमाया किया जाए। इस अमल का मकसद मरीजों को आगाही पर मबनी फैसला साजी के काबिल बनाना, बिलिंग से मुतालिक तनाजियात से बचना और सेहत देखभाल खिदमात के शोबे में एतमाद को तकवीत देना है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने इस बारे में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखा। सेहत देखभाल के शोबे में कीमतों से मुतालिक शफाफियत पर जोर देते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि कीमतों के नुमाया किए जाने से मरीजों और उनके अफराद खानदान को इलाज के मुमकिन खर्च को समझने में मदद मिलेगी। आगाही पर मबनी सेहत फैसला साजी और तिब्बी अखराज को तरतीब देना मुमकिन हो सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने अपने खत में काबिल इतलाक इंजिबाती तरीक़ेकार और मुनासिब इकदामात के जरिए इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि सेहत देखभाल खिदमात से मुतालिक ली जाने वाली रकूम और मालूमात वाज़े तौर पर नजर आएं और मरीजों और उनके रिश्तेदारों की इन तक आसान रसाई हो सके। सेहत सेक्रेटरी ने इससे मुतालिक तामील के जायजे की बात भी कही। रियासतों से कहा गया है कि वो तिब्बी और आयुष वीजों पर भारत का दौरा कर रहे बैनुल अक्वामी मरीजों के लिए पैकेज की कीमतों को शफाफ तौर पर नुमाया करें। इस कदम से बैनुल अक्वामी मरीजों को बाखबर मुतबादिल चुनने और कीमतों और बिलिंग से मुतालिक शिकायतों से निमटने में मदद मिलेगी। साथ ही तिब्बी और आयुष देखभाल के लिए भारत को काबिल एतमाद मुकाम बनाने में मजीद मदद मिलेगी। ये कदम सेहत देखभाल खिदमात की फराहमी को मरीजों के लिए ज्यादा शफाफ, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने के तई मरकजी हुकूमत के अज़्म को भी तकवीत देता है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: मरकज ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना उगाने वाले किसानों की शिकायतों के इजाले के लिए एक हफ्ते के अंदर आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निजामे तकसीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी के साथ आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना उगाने वाले किसानों के वफूद की मीटिंग में यह फैसला किया गया। ये कमेटी मरकजी हुकूमत और महाराष्ट्र और कर्नाटक की रियासती हुकूमतों, किसान तंजीमों और चीनी मिलों के नुमाइंदों के साथ साथ माहरीन पर मुश्तमिल साइंसदानों पर मबनी होगी। मरकज ने आज सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दी है कि उसने कैंसर के इलाज की दवाओं के तिजारती मुनाफे की हद को ज्यादा से ज्यादा कीमत MRP के 30% तक मुकर्रर करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच को बताया कि मरकज कैंसर के दवाओं की फहरिस्त जारी करेगा जिन पर मुनाफे की ज्यादा से ज्यादा हद नाफिज होगी। जनाब मेहता ने यह भी बताया कि इस फहरिस्त को मुकर्रर वक्त के बाद अपडेट भी किया जाएगा ताकि बाजार की सूरत हाल और सेहत आमों से मुतालिक मामलात को मलहूज खातिर रखते हुए इजाफी कैंसर मुखालिफ दवाओं को इस फहरिस्त में शामिल और महंगी दवाओं को फहरिस्त से हजफ किया जा सके। रिटेलर्स को सप्लाई की जाने वाली दवाओं की कीमत और उन दवाओं पर शाया की जाने वाली MRP के दरमियान पाए जाने वाले फर्क से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार बार सवाल पूछे जाने के बाद ये पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली समाअत के लिए 27 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी, तनाज़ियात और बढ़ती गैर यकीनी का मुशाहदा कर रही है, सकाफत बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने, اعتماد پیدا کرنے اور عالمی

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आवाज है जो दिल की गहराइयों को छू जाती है, दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाती। इस आवाज में शोखी है तो दर्द भी, संजीदगी भी। आवाज ऐसी जो सीधा दिलों पर असर करती, शायद ही कोई इस आवाज के असर से बचा हो। इस आवाज की कशिश सुनने वालों के दिलों की गहराइयों में कुछ यूं उतरी कि सुनने वालों के दिल मचल उठे। अपनी गायकी के बेमिसाल अंदाज के साथ आवाज के इस जादूगर ने करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। गजल सम्राट जगजीत सिंह हैं आज के फनकार।

फरवरी सन 1941 राजस्थान के गंगानगर में जन्मे अपनी दिलकश आवाज और गायकी के लाजवाब अंदाज के दम पर करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों को जीतने वाले गजल की दुनिया के बेताज बादशाह जगजीत सिंह, जिनकी आवाज में नज्म हो या गीत व गजल, लोग सुनने को बेकरार हो उठते।

जन्म के समय उनका नाम जगमोहन रखा गया, लेकिन उनके पिता ने अपने गुरु की सलाह पर उनका नाम जगजीत कर दिया और फिर हर कोई प्यार से उन्हें जीत कहकर पुकारने लगा। वैसे तो जगजीत सिंह का परिवार मूलतः पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। चूंकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ, इसलिए शुरुआती शिक्षा गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो जालंधर आ गए, जहां के डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास जैसे विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साथियों, यहां दिलचस्प बात यह है कि संगीत के प्रति जगजीत सिंह की रुचि पढ़ाई के दौरान ही बढ़ती गई और धीरे धीरे संगीत का ये शौक जुनून बन गया। उनके भीतर एक गायक बनने की तमन्ना जाग उठी।

जगजीत सिंह ने पंडित छगनलाल शर्मा के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की और फिर आगे चलकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखकर साल 1965 में गायकी के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए, जहां से शुरू हुआ उनके संघर्ष का दौर।

जगजीत सिंह माया नगरी में तो आ गए थे, लेकिन संघर्ष का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तलत महमूद, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, किशोर कुमार जैसे महान गायकों के दौर में प्लेबैक सिंगिंग का चांस मिल पाना दूर तक संभव न था। मुंबई जैसे शहर में अपनी रोजी रोटी के लिए वो कभी विज्ञापनों के जिंगल्स गाते, कभी कॉलेज तो कभी हाई प्रोफाइल लोगों की पार्टियों में अपनी पेशकश दिया करते। कहते हैं कि जीवन के संघर्ष इंसान को खट्टे मीठे अनुभवों से भर देते हैं, और संघर्ष के बाद मिली सफलता ताउम्र साथ रहती है। ऐसे ही अपने संघर्ष के दिनों में जगजीत सिंह की मुलाकात हुई चित्रा जी से। फिर साल 1969 में दोनों ने विवाह कर लिया और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनका पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल देखते ही देखते हिट हो गया। जगजीत चित्रा की गजलें शोहरत की बुलंदियां छूने लगी।

एक लंबे संघर्ष के बाद जगजीत सिंह ने अपनी बेमिसाल गायकी के दम पर अपनी पहचान बनाई 70 के दशक में, जब गजल के आसमां पर नूरजहां, मल्लिका पुखराज, बेगम अख्तर, तलत महमूद, मेहदी हसन जैसी आवाजों का बोलबाला हुआ करता था। करोड़ों संगीत प्रेमियों को अपनी अद्भुत गायकी से दीवाना बनाने वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह ने मीर, गालिब, फैज, फिराक, गुलजार, निदा फाजली, जावेद अख्तर, राजेश रेड्डी जैसे हर दौर के शायर की गजलों को अपनी आवाज दी।

गायकी को एक नया लिबास पहनाया जगजीत सिंह ने। उनका मानना था संगीत प्रेरणा की वस्तु है, प्रतियोगिता की नहीं। जगजीत सिंह ने अपनी गायकी में नित नए प्रयोग किए, फिर चाहे वो साज हो या आवाज। कुछ गजल

साथियों, जगजीत सिंह के फिल्मी सफरनामे पर नजर डालें तो साल 1981 की फिल्म प्रेम गीत, 1982 की फिल्म अर्थ और साथ साथ कभी भुलाई नहीं जा सकती।

जगजीत सिंह ने अनेकों म्यूजिक कंपनीज के साथ काम किया। पंजाबी एल्बम्स के साथ साथ जगजीत सिंह के भक्ति एल्बम्स को भी लोगों की सराहना मिली। उनके इस अंदाज ने भी संगीत प्रेमियों को मोहित

साल 2003 में भारत सरकार ने जगजीत सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया और आगे चलकर इनके सम्मान में डाक टिकटें भी जारी की गईं। गजल, शास्त्रीय, भक्ति, लोकगीत जैसी तमाम शैलियों में अपनी लाजवाब गायकी से लोगों का दिल जीतने वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह ने साल 2011 में 10 अक्टूबर के दिन अपनी अंतिम सांसें ली।

शोध आलेख स्वर शिफाली कपूर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं श्रोताओं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आर डी बर्मन के संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के बोल तीसरी कसम। और अब आइए सुनते हैं अगली फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा के तहत।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होते हैं प्रोग्राम आज के फनकार एक रंग कार्यक्रम के तहत।

अभी आपने सुना जवान मोहब्बत किस गाने को आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत।

ओपी नैयर के संगीत मजरू सुल्तानपुरी के बोल, फिल्म का नाम आपने सुना तुमसा नहीं देखा, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आज के फनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: जा
1: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म लाड साहब के इस गाने को। शंकर जयकिशन के संगीत और शैलेंद्र के बोल थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार। और अब आइए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम लेकर हाजिर हैं। फिल्म आज़ाद के इस गाने को आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के संगीत और हसरत जयपुरी के बोल, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार यहीं समाप्त होता है।

0: रात्रि 11 बजे हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।
1: हुआ है ये आज का सफर, लो खत्म हुआ है ये आज का सफर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।